विधि के विधान के अनुसार श्री राम तथा जानकी का विवाह शिव के धनुष के अधीन था, जो उसके टूटते ही संपन्न हो गया। किंतु लोकाचार का अपना ही महत्व होता है। प्रत्येक कुल की अपनी मर्यादा तथा परंपरा होती है, जिसका परिपालन ऐसे शुभ अवसरों पर ही होता है। अतः वेदों में वर्णित तथा राज पुरोहितों द्वारा अनुशंसित आचार के लिए राजा जनक ने महाराज दशरथ के पास शुभ संदेश लेकर अपने दूत भेजे। संदेशवाहक पत्र लेकर श्रीराम की पवित्र नगरी अयोध्या

संख्या पहुंची। पाती बांचते हुए महाराज दशरथ का हृदय पुलकित हुआ और नैनों में आनंद के आंसू छलक आए। जनकपुरी से आए दूतों का समाचार सुन मित्र मंडली के साथ खेलते हुए भरत तथा शत्रुघ्न दौड़े आए। अपने प्राणों से भी प्रिय भाइयों श्री राम तथा लक्ष्मण का कुशल क्षेम जानने के लिए। जब से ऋषि विश्वामित्र के साथ राजा दशरथ के दो पुत्र ऋषि मुनियों की यज्ञ रक्षा के लिए गए थे, तब से आज पहली बार उन दो किशोरों के कुशल क्षेम का समाचार मिला था। दूतों ने धनुष यज्ञ में श्री राम के पराक्रम की कथा सुनाई, जिसे सुनकर सभी गदगद हो गए।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम रामचरित मानस, आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 800 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब हमारा समय कार्यक्रम का हुआ है समाचारों का, तो थोड़ी सी देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: इयम् आकाशवाणी, सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तस्य जापानस्य समकक्षीया साने ताकाइची इत्येषा पाकिस्तानात् सीमापारे आतंकवादं समेत्य सर्वेषु रूपेषु अभिव्यक्तिषु आतंकवादस्य हिंसक उग्रवादस्य च निन्दां कृतवन्तौ। भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलनस्य संयुक्त वक्तव्ये द्वौ नेतारौ गतवर्षे अप्रैल मासस्य 22 दिनांके जम्मू कश्मीरस्य पहलगाम इत्यत्र जातम् आतंक्याक्रमणं कट्वा लोचितवन्तौ। उभौ प्रधानमन्त्रिणौ हिन्द प्रशांत क्षेत्रस्य उभयोः देशयोः मध्ये सहयोगं विस्तारयितुं प्रतिबद्धतां पुनरुद्घाटितवन्तौ।
2: आज भारत और जापान दोनों ही विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से हैं। एक फ्री प्रॉस्परस और रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक हमारी साझा प्राथमिकता है। क्षेत्र की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक और मार्केट इकोनॉमीज के रूप में आज हमने कई महत्वपूर्ण पहल की है। इनसे हम मिलकर पूरे क्षेत्र में शांति, स्थिरता और प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेंगे।
1: भारत जापान विशेष सामरिक वैश्विक सहभागित्वस्य आधारस्तंभेषु अन्यतमार्थिक सुरक्षा प्रधानतायाः विषये भारत जापान देशौ परस्परं प्रतिबद्धतां पुनः दृढीकृतवन्तौ। आर्थिक सुरक्षा सहकार विषये भारत जापान संयुक्त घोषणापत्रे अवदतां यत् आर्थिक सुरक्षा सहभागित्वं परस्पर विश्वासस्य सहभागी मूल्यानां संबद्ध हितानां च आधारेण वर्तते। उभयोः पक्षयोः समृद्धिः, सुरक्षा, आर्थिक भविष्यञ्च सुदृढतया परस्परं संबद्धमस्ति इति मान्यता अस्ति। अद्यतनीकृतस्य मुक्तस्य च इंडो पैसिफिक इत्यस्य तथा च म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट इन द रीजन्स महासागर इति उपक्रमस्य समन्वयः उभयोः पक्षयोः कृते आर्थिक सुरक्षा सहकारं वर्धयितुम् आवश्यकं प्रोत्साहनं प्रददाति इति घोषिता अस्ति। लोकसभाध्यक्षः ओम बिरला अद्य कोलकातायां पश्चिम बंगाल विधानसभायाः नवनिर्वाचित सदस्येभ्यः द्विदिवसीय अभिविन्यास कार्यक्रमस्य उद्घाटनं करिष्यति। अस्य कार्यक्रमस्य उद्देश्यं नवनिर्वाचितेभ्यः सदस्येभ्यः समिति व्यवस्था, वित्तीय निरीक्षणं, संसदीय विशेषाधिकाराः, विधायकेषु उदयोन्मुख आंकिकीयोपक्रमाः इत्यादीनां संसदीय विधायी कार्याणां विविधपक्षेभ्यः परिचय प्रदानं वर्तते। पंचायती राज मंत्रालयः षोडश वित्तायोगस्य अनुशंसानां विषये विचारार्थम् अद्य नवदिल्ल्यां राज्यस्य पंचायती राज मंत्रिणां एकां राष्ट्रिय कार्यशालाम् आयोजयति। कार्यशालायाः अध्यक्षतां केन्द्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंहः, केन्द्रीय राज्य मंत्रिणः प्रोफेसर एसपी सिंह बघेलस्य उपस्थितौ करिष्यति। कार्यशालावधौ चर्चा वित्त मंत्रालयस्य व्यय विभाग द्वारा प्रख्यापितस्य षोडश वित्तायोग ग्रामीण स्थानीय निकायानुदानस्य कार्यान्वयनाय परिचालन दिग्निर्देशेषु केन्द्रता भविष्यति। वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा अद्य जम्मू कश्मीरस्य पहलगाम बालटाल मार्गयोः आरभ्यते। 57 दिवसीयायां तीर्थयात्रायां सम्पूर्णे भारतदेशात् लक्षोपलक्षाः भक्ताः अमरनाथ गुहातीर्थं प्रति पवित्रयात्रां करिष्यन्ति इत्यपेक्षा अस्ति। तीर्थयात्रिणः भगवतः शिवस्य आशीर्वादं प्राप्तुं, प्राकृतिकरूपेण निर्मितं हिमशिवलिङ्गं द्रष्टुं च प्रायः 88.3 सहस्र मीटर परिमितेषु ऊर्ध्वतायां स्थित पवित्र अमरनाथ गुहायां गच्छन्ति। आईसीसी महिला विंशति प्रतिविंशति विश्व चषक क्रिकेट प्रतिस्पर्धायां इंग्लैंड दलेन साउथ अफ्रीका दलं चत्वारिंशत् धावनांकैः पराजितम् इति वार्ताः।

ससुरा यगु इंस्ट्रूमेंटा योजना तड़ी सोडा दा पंजगार कमी सदिकन कमेंटार यंग बजुडुई इंजा मनाद गेतकन दाउद उयंग नाम बजस दिबु का पजदयम सपयुता हुन दंगन कमिटमेंट फिनांसे सबसद दयापन मिया जयार इकुते या कमेंटार इंजा जन उन्हें दो पसुरा मन्यता करने जागी कमिटमेंट मरे काम तो मंपत कुआत कर जा समा दयम दाउद उयंग कपर यंग बद कर जन जुतन कदुआ बजा पियाग मन्यता कन कई यकीन नतस कमजवन यंग दीचा पै दयम मुद्दा कन मासुक ने फसजितास दाउद उयंग कपर यंग जा कदयम चकुपन पदातुदन दाउद उयंग कपर उन्हें दो पा अतो USAID इंडिया मनाद कनंतुक मन दाउद उयंग हम्पे नाम बजा सदीबु कपल दरम सतु जकड़े यंग मन दतं तन नगद इतु सुडा मंग उमुम कन कमिटमेंट पंदनान सबसद दयापन मिया दयात उन्तुक मंडुकुं पतुमान सेक्टर पर पंबुआतन जन दाउद उयंग कपल उजार मंत्री पर कपयन सर्बनन सनवाय पढ़ाधी दाबू दयम डिस्कुसी डियंतरा मंतरी पर्यावरण पर कपयन जन जयुद आईद सर्बानंद सनवर जन कमिशनर एरपांतु को यिंकुंगन कतानन आईद जन एकोनमी सिरकुयात यं कंपी तितिप जेसिका दो स्वाय को दुआ बजा पियाग मनि जो प्रोसेस ऑडिट जन को पतुवन यंग सातिनी बजंग सुंग बगी कर गयंगन दाउद उयंग कपयन जा यंग बदुपयो मंदपत कन पंगा कुंजी बवा कदंग कार्य गुजासी उन्हीं दपा

0: Para pemirsa yang terhormat, kami melayani Anda sekalian melalui siaran ini bukan hanya supaya bahasa Indonesia tetap jaya di udara saja, dan para pendengar kami agar tetap update dengan berbagai macam perkembangan yang terjadi di sekeliling dunia termasuk India. Akan tetapi, juga supaya hubungan dayat antara kedua negara agar tetap terjalin. Mohon agar para pendengar kami kirimkan laporan mereka tentang daya penangkapan siaran kami di daerah Anda masing-masing, lebih baik pakai kode SINPO, serta saran-saran Anda berkait siaran kami ini supaya kami dapat meningkatkan mutu siaran kami untuk melayani Anda sekalian sebaik-baiknya. Anda bisa mengirimkan laporan dan saran Anda melalui postel atau email. Harap dicatat email kami sebagai berikut. air.indonesia313@gmail.com. Kami ulangi lagi. air.indonesia313@gmail.com. Laporan Anda tetap ditunggu di meja tugas kami di studio di sini. Terima kasih.
1: Hadap pandai sudah menikmati jagu-jagu tadi. Dengan demikian saja acara kami untuk pagi hari ini. Acara kami untuk besok adanya sebagai berikut sesudah berita-berita jagu instrumental jagu.
2: नमस्कार आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा। जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा शुरू। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई सुरक्षा कारणों से अपने पिता अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे। पुर्तगाल और स्पेन ने फीफा विश्व कप के अंतिम 16 में जगह बनाई और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका के खिलाफ भारत के दो मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। इनमें पाकिस्तान से संचालित सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। नई दिल्ली में कल भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। एक रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने पिछले वर्ष 10 नवंबर को दिल्ली में हुई आतंकी घटना की भी कड़ी निंदा की। दोनों देशों ने इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजकों और वित्त पोषकों को बिना किसी देरी के सजा दिलाने का आह्वान किया। श्री मोदी और सुश्री ताकाइची ने अलकायदा, जैश ए मोहम्मद सहित संयुक्त राष्ट्र में सूचीबद्ध सभी आतंकी समूहों तथा संस्थाओं के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सुगम और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दोहराया। दोनों नेताओं ने

0: क्वाड ढांचे के अंतर्गत व्यावहारिक सहयोग बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता भी व्यक्त की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय सुगमता मजबूत करने के लिए आसियान सदस्य देशों के साथ सहयोग के महत्व का भी उल्लेख किया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत और जापान ने भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के रूप में आर्थिक सुरक्षा के महत्व का उल्लेख किया है। आर्थिक सुरक्षा सहयोग पर भारत जापान संयुक्त घोषणा पत्र में कहा गया है कि आर्थिक सुरक्षा साझेदारी आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और आपसी हितों पर आधारित है। दोनों देश 5 प्रमुख क्षेत्रों, सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा तथा औषधि में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करेंगे। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में उनके परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा है। आयोग ने कहा है कि उसने संबंध में दोनों गुटों के दावों और प्रतिदावों पर ममता बनर्जी और पार्टी नेता ऋणव्रत बनर्जी को अलग अलग पत्र लिखे हैं। आयोग ने यह भी कहा कि दोनों पक्षों को सोमवार शाम 5:30 बजे तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। यह घटनाक्रम तृणमूल कांग्रेस के अंदर पार्टी के संगठन की संरचना और पार्टी की ओर से कार्य करने के अधिकार को लेकर चल रहे विवाद के बीच आया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के संसदीय और विधायी कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। इनमें समिति प्रणाली, वित्तीय निगरानी, संसदीय विशेषाधिकार और विधानसभाओं में उभरती डिजिटल पहल शामिल है। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, केंद्रीय संसदीय कार्यमंत्री रिजिजू और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा, जिसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर चर्चा की जाएगी। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह करेंगे और केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। कार्यशाला के दौरान वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी 16वें वित्त आयोग के ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदानों को लागू करने के दिशा निर्देशों पर चर्चा होगी। विचार विमर्श से केंद्र राज्य सहयोग को सुदृढ़ करने और 2047 तक विकसित भारत बनाने की परिकल्पना के अनुरूप पंचायतों को बेहतर शासन, बुनियादी सुविधाओं, सार्वजनिक सेवाओं और समावेशी ग्रामीण विकास प्रदान करने के लिए सशक्त बनाने का मजबूत ढांचा विकसित करने में सहायता मिलने की उम्मीद है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर का दर्शन करेंगे। ये यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी।
4: बम बम बोले और हर हर महादेव के जयकारों के बीच अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था आज सुबह पवित्र गुफा की तरफ रवाना हो गया। अगले 57 दिनों की इस यात्रा के दौरान लाखों श्रद्धालु नुनवन, पहलगाम और बालतर रास्तों से होते हुए बाबा बर्फानी के यहां अपनी हाजिरी देंगे। दोनों रास्तों पर अधिकारियों ने मेडिकल कैंप, आराम करने की जगहें, लंगर, पीने के पानी की सुविधा और मौसम की पल पल की जानकारी रखने जैसे व्यापक इंतजाम किए हैं। यात्रा को सुरक्षित रूप से पूरा करने के लिए सुरक्षा कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस बीच यात्रियों का दूसरा जत्था आज सुबह जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से निकल

0: लेकर घाटी की तरफ रवाना हो गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
1: ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई अपने पिता और पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार में सुरक्षा कारणों से शामिल नहीं होंगे। भारत में ईरान के प्रतिनिधि आयतुल्ला हकीम इलाही ने बताया कि धमकियों और निगरानी जोखिमों के कारण मुज्तबा खामनेई का सार्वजनिक रूप से सामने आना सुरक्षित नहीं है। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम 4 से 9 जुलाई तक ईरान और इराक में होगा। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। इस पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि समारोह में इन दोनों भारतीय प्रतिनिधियों की उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यता से जुड़े संबंधों के महत्व का परिचायक है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में 27 लोग मारे गए और 90 लोग घायल हो गए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि बुधवार रात को हुई ये बमबारी यूक्रेन की ओर से रूस में नागरिक ठिकानों पर किए गए लंबी दूरी के हमलों के जवाब में थी। रूस पर किए जा रहे लगातार हमलों को यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमिर ज़ेलेंस्की ने 40 दिनों का ताबड़तोड़ हमला बताया है। सीरिया में कल राजधानी दमिश्क के एक कैफे में हुए विस्फोट में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई। सीरिया के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इस घटना में 20 लोग घायल हुए हैं। फिलहाल किसी भी गुट ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। सुरक्षा बलों ने हमले की जांच के लिए इलाके की घेराबंदी कर दी है। दमिश्क के गवर्नर माहिर मारवान इदलिबी ने कहा है कि दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार।
2: स्पेन और पुर्तगाल फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। पुर्तगाल ने आज क्रोएशिया को 2-1 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। इससे पहले स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की की। मंगलवार को डलास में प्री क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना पुर्तगाल से होगा। इससे पहले फ्रांस, नॉर्वे, कनाडा, मोरक्को, ब्राजील, पैराग्वे, बेल्जियम, अमरीका और इंग्लैंड भी अंतिम 16 में पहुंच चुके हैं। प्री क्वार्टर फाइनल में सोमवार को इंग्लैंड का सामना मैक्सिको से होगा। अमरीका मंगलवार को बेल्जियम के साथ खेलेगा। इस बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका और भारत के बीच 2 मैच की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। ये श्रृंखला 15 से 27 अगस्त तक खेली जाएगी। पहला टेस्ट 15 अगस्त से गोल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट 23 अगस्त से कोलंबो में खेला जाएगा। ये श्रृंखला ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है। उधर इंग्लैंड ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। लंदन में कल दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 40 रन से हरा दिया। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने पहले सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर खिताबी मुकाबले में जगह बनाई। रविवार को लंदन के लॉर्ड्स में फाइनल में इंग्लैंड का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: और खेल खबरों के बाद एक दुखद घटना। आंध्र प्रदेश के मरकापुरम जिले में आज सुबह कंभम के पास एक सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हो गई और 8 अन्य घायल हो गए। ये दुर्घटना खाद से लदे एक ट्रक के ऑटो रिक्शा को टक्कर मारने से हुई। घायलों को गिदलूर और कुंभम के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। बात मौसम की। उत्तराखंड में मॉनसून पूर्ण रूप से सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने आज कई जिलों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। नैनीताल और बागेश्वर जिलों में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, चमोली, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग में भी कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की संभावना है। विभाग ने संवेदनशील क्षेत्रों को लोगों को सतर्क रहने और यात्रा करते समय सावधानी बरतने की सलाह दी है। दक्षिण पश्चिम मानसून दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ चुका है। मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, केरल, माहे, उत्तराखंड और विदर्भ में मूसलाधार बारिश हो सकती है। दिल्ली में दिन में बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश की संभावना है। राजधानी में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास से रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: धन्यवाद फरहत। भारत और जापान के बीच कई महत्वपूर्ण

0: समझौते होने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित किया है। जनसत्ता लिखता है, भारत और जापान मिलकर बनाएंगे सैन्य साजो सामान, मोदी और तकाईची में शिखर वार्ता। अमर उजाला ने जापान के प्रधानमंत्री के संतूर पर हाथ आजमाने का चित्र दिया है। पत्र लिखता है, संतूर बजाकर चौंकाया, पीएम मोदी समेत कई लोग हैरान। सुप्रीम कोर्ट द्वारा एआई से बने फर्जी फैसलों की कानूनी मिसालें देने पर सख्त रुख अपनाने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने दिया है। दैनिक जागरण लिखता है, एआई से लिखे गए फर्जी फैसले जहरीली गैस जैसे, अदालत ने कहा फैसलों के प्रति जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। नीट जेईई में निर्णायक हो सकते हैं 12वीं के अंक, नीट पुनर्परीक्षा के नतीजे 20 जुलाई को, हिन्दुस्तान की सुर्खी है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में फिर राम मंदिर परिसर पहुंची एसआईटी, रडार पर हैं 100 लोग, ट्रस्टी से पूछताछ, नवभारत टाइम्स की खबर है। शेयर बाजार में निवेशकों पर 3,00,000 करोड़ की बारिश, सेंसेक्स में 579 अंकों का उछाल, लोकसत्य की खबर है। अमीर युवाओं की पसंद बदली, 40% से ज्यादा भारतीय छुट्टियां मनाने के लिए अब कोरिया, मिस्र, जापान, मालदीव जैसे नए देश जा रहे, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। पत्र लिखता है, ट्रेवल इंश्योरेंस लेने वाले हर साल 10% बढ़ रहे। खामेनेई के अंतिम संस्कार यात्रा से पहले हवाई निगरानी हुई कड़ी, कई राष्ट्राध्यक्षों के साथ 2 करोड़ लोग जुड़ सकते हैं, राजस्थान पत्रिका की खबर है। कई समाचार पत्रों ने देश भर के कई राज्यों में हो रही बारिश का चित्र दिया है। देश बंधु की सुर्खी है, दिल्ली में मानसून ने दी दस्तक, लोगों को तेज धूप और गर्मी से मिली राहत, राजस्थान पत्रिका के शब्द हैं, राजस्थान और दिल्ली पहुंचा मानसून, 2 दिन अति बारिश का अलर्ट। हिंदुस्तान ने संपादकीय पन्ने पर भारत जापान के सभ्यतागत संबंध पर लेख प्रकाशित किया है, शीर्षक है भारत जापान रिश्तों में नई गर्मजोशी।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाईची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा। जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा शुरू। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई सुरक्षा कारणों से अपने पिता अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे। पुर्तगाल और स्पेन ने फीफा विश्व कप के अंतिम 16 में जगह बनाई। और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका के खिलाफ भारत के 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड हिज जापानीज काउंटरपार्ट सनाए तकाईची स्ट्रांगली कंडेम टेररिज्म एंड वायलेंट एक्सट्रीमिज्म इन ऑल हिज फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशंस। Election Commission seeks responses from rival factions of Trinamool Congress regarding competing claims about party's organizational elections and authorized signatories. Annual Sri Amarnath Yatra begins from both Pehelgam and Baltal routes in Jammu and Kashmir. Iran's Supreme Leader Mojtaba Khamenei to skip father Ali Khamenei's funeral over security fears. Spain beat Austria 3-0 to enter round of 16 at FIFA World Cup. And BCCI announces schedule for India's 2-match test series against Sri Lanka to be played from the 15th to the 27th of next month. Prime Minister Narendra Modi and his Japanese counterpart Sanae Takaichi have unequivocally and strongly condemned terrorism and violent extremism in all its forms and manifestations, including cross-border terrorism from Pakistan. The 16th India-Japan Annual Summit joint statement said both leaders condemned in the strongest terms the terrorist attack in Pehelgam, Jammu and Kashmir on the 22nd of April last year. The leaders also took note of the United Nations Security Council monitoring team report of 29 July 2025 mentioning the resistance front. We have a report.
3: Prime Minister Narendra Modi and Japanese Prime Minister Sanae Takaichi also strongly condemned the terrorist attack in Delhi on November last year. The two leaders called for the perpetrators, organizers and financiers of the reprehensible act to be brought to justice.

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और जापान की उनकी हमनसब सनाए तकाईची ने हर तरह की दहशतगर्दी और पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की सख्त मजम्मत की है। इंतखाबी कमीशन ने तृणमूल कांग्रेस के तंजीमी इंतखाबात और दस्तखत करने के मजाज ओहदेदारों के बारे में पार्टी के हरीफ ग्रुपों के दावों के सिलसिले में दोनों ग्रुपों से जवाब तलब किए हैं। सालाना श्री अमरनाथ यात्रा जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से शुरू हो गई है। ईरान के रहबर आला मुश्तबा खामनाई सिक्योरिटी खदशात की वजह से अपने वालिद आयतुल्ला अली खामनाई की आखिरी रसूम में शिरकत नहीं करेंगे। स्पेन ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है और बीसीसीआई ने अगले महीने श्रीलंका के खिलाफ होने वाली दो टेस्ट मैचों की सीरीज की तारीखों का ऐलान कर दिया है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और जापान की उनकी हम मनसब सनाए तकाईची ने पाकिस्तान से फैलाई जाने वाली सरहद पार की दहशतगर्दी समेत हर तरह की दहशतगर्दी और पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की सख्त मजम्मत की है। 16वीं भारत जापान सालाना सरबराह मीटिंग के मुश्तरका बयान में कहा गया है कि दोनों रहनुमाओं ने पिछले साल 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में दहशतगर्दाना हमले की भी सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। दोनों लीडरों ने पिछले साल 29 जुलाई की अक्वाह मुत्तहदा सलामती कौंसिल की निगरानी टीम की रिपोर्ट का भी नोटिस लिया है जिसमें रेजिस्टेंस फ्रंट नाम के ग्रुप का तस्करा किया गया है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: दोनों वज़राए आज़म ने पिछले साल 10 नवंबर को दिल्ली में दहशतगर्दाना हमले की भी सख्त अल्फाज में मजम्मत की। दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर जोर दिया कि इस काबिल मजम्मत हरकत के लिए जिम्मेदार इसकी साजिश रचने वालों और सरमाया फराहम करने वालों को बिला ताखिर कानून की गिरफ्त में लिया जाए। उन्होंने अलकायदा, दाइश, लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद और उनकी जेली तंजीमों समेत उन सभी दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जरूरत पर जोर दिया जो अक्वाम मुत्तहदा की फहरिस्त में शामिल हैं। दोनों वज़राए आज़म ने दहशतगर्दों की महफूज पनागाहों के खात्मे, दहशतगर्दी के लिए सरमाया फराहम करने के नेटवर्क को खत्म करने और दीगर मुल्कों में जराइम के साथ उनकी साजबाज

0: आएगा, जबकि दूसरा टेस्ट मैच आइंदा माह की 23 तारीख से कोलंबो के सिन्हालीस स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा। यह सीरीज आईसीसी आलमी टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 का एक हिस्सा है। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं असदुल्ला।
1: शुक्रिया अर्जुमन। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब समेत आज के सभी अखबारों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के भारत जापान मुश्तरका इक्तसादी फोरम से खिताब करने को सफे अव्वल पर शाये करते हुए लिखा है कि भारत और जापान ने इक्तसादी तहफ़ मसनू जहानत एआई दिफा और सेहत से मुतालिक शोबों में दस्तखत किए हैं। भारत अपनी रिफाइनरी की सलाहियत में तेजी के साथ तोसी कर रहा है। अगले साल भारत में रिफाइनरी की सलाहियत 300 मिलियन मैट्रिक टन तक बढ़ने का इम्कान है। पेट्रोलियम और कुदरती गैस के मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी के इस बयान को आज के अखबारात ने नुमाया किया है। शहरी हवाबाजी की वजारत ने मुल्क भर के बैन अल-अक़वामी हवाई अड्डों पर एबोला वायरस की जांच के लिए AIR सुविधा पोर्टल 2.0 का किया आगाज। इस खबर को आज के सभी अखबारों ने खसूसियत के साथ जगह दी है।
0: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और जापान की उनकी हम मनसब सनाए तकाईची ने हर तरह की दहशतगर्दी और पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की सख्त मजम्मत की है। इंतखाबी कमीशन ने तृणमूल कांग्रेस के तंजीमी इंतखाबात और दस्तखत करने के मजाज ओहदेदारों के बारे में पार्टी के हरीफ ग्रुपों के दावों के सिलसिले में दोनों ग्रुपों से जवाब तलब किए हैं। सालाना श्री अमरनाथ यात्रा जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से शुरू हो गई है। ईरान के रहबर आला मुश्तबा खामनाई सिक्योरिटी खदशात की वजह से अपने वालिद आयतुल्ला अली खामनाई की आखिरी रसूम में शिरकत नहीं करेंगे। और स्पेन ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।
2: आकाशवाणी दिल्ली का यह इंटरप्रेस चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत का स्वर गंगा। गायन कलाकार हैं अपूर्वा तिवारी और राग है मियां की तोड़ी। तो आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वरगंगा। गायन कलाकार थी अपूर्वा तिवारी और राग था मियां की तोड़ी।

0: आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम गांधी चर्चा।
1: ये आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है, प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम गांधी चर्चा।

0: गांधी चर्चा कार्यक्रम के इस अंक में आज की वार्ता का विषय है ग्रामीण विकास और औद्योगिक क्षेत्र में प्रगति के बारे में गांधी जी के विचार। आलेख एवं स्वर SZ मलिक।
1: गांधी जी दूरदर्शी थे। उन्होंने आज से दशकों पहले भांप लिया था कि भारत की आत्मा कहाँ बसती है। उनका एक प्रसिद्ध कथन है जो उन्होंने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज 1909 में भी रेखांकित किया था। भारत का कल्याण उनके गांव में है, अगर गांव नष्ट हो गए तो भारत भी नष्ट हो जाएगा। गांधी जी का ग्रामीण विकास का मॉडल केवल आर्थिक नहीं था बल्कि वह नैतिक, सामाजिक और राजनीतिक भी था। उन्होंने इसे ग्राम स्वराज का नाम दिया था। गांधी जी का मानना था कि हर गांव को अपने आप में एक स्वतंत्र इकाई होना चाहिए। उनके ग्राम स्वराज का अर्थ था कि गांव अपनी बुनियादी जरूरतों जैसे भोजन, कपड़ा और आवास के लिए किसी दूसरों का सहारा न ले, दूसरों पर निर्भर ना हो। गांधी जी चाहते थे कि हर गांव अपने आप में एक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर इकाई हो। सफाई और स्वास्थ्य, गांधी जी के अनुसार विकास की पहली सीढ़ी सफाई है। वे चाहते थे कि गांव की गलियां साफ हों और हर घर में स्वच्छता का वास हो। वहीं उन्होंने पंचायती राज को भी बढ़ावा दिया। वे चाहते थे कि गांव के फैसले गांव के ही लोग लें, न कि दूर बैठे किसी दफ्तर के बाबू। ग्राम स्वराज में एक सबसे बड़ी योजना गांधी जी की औद्योगिक प्रगति, मशीनें बनाम मनुष्य। अक्सर लोग सोचते हैं कि गांधी जी मशीनों के खिलाफ थे, लेकिन यह सच नहीं है। वे केवल उन मशीनों के खिलाफ थे जो इंसान का काम छीनकर उसे बेरोजगार बना देती थी। बापू की मुख्य योजना ग्राम स्वराज और ग्रामीण स्वयं रोजगार हो, इसलिए बापू का कुटीर उद्योग पर अधिक बल था। कुटीर उद्योग, कॉर्डेट इंडस्ट्रीज। गांधी जी का कहना था कि हमें ढेर सारा उत्पादन नहीं बल्कि जनता द्वारा उत्पादन चाहिए।

चाहिए, यानी कुटीर उद्योग द्वारा ग्रामीणों को श्रम रोजगार बनाया जा सके। इस योजना के तहत गांधी जी ने ग्रामीणों को जागरूक करने के लिए स्वयं एक चरखा बनवाकर खुद ही उसका इस्तेमाल शुरू किया, जिसका प्रभाव ग्रामीणों में जबरदस्त देखने को मिला। चरखा केवल एक लकड़ी का ढांचा नहीं था, वह स्वावलंबन का प्रतीक था। वे चाहते थे कि किसान खेती के खाली समय में कताई बुनाई करें ताकि उनकी आय बढ़े। जिस युग में गांधी जी ने कुटीर उद्योग का विचार ग्राम स्वराज में रखा, उस समय कपास की खेती को बढ़ावा देने के लिए बापू ने चरखा का आविष्कार कर ग्रामीणों को स्वयं रोजगार के लिए जागरूक करने की एक प्रतिभाशाली योजना तैयार की, ताकि किसान को घर बैठे घर में ही आय का स्रोत पैदा हो और किसान ग्रामीण खुशहाल बने व किसी पर आश्रित न रहें। इसका प्रमाण हमें 26 जुलाई 1942 के एक पत्रिका के अंक में मिलता है, जिसमें उन्होंने लिखा है, ग्राम स्वराज की मेरी कल्पना यह है कि वह एक ऐसा पूर्ण प्रजातंत्र हो जो अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए अपने पड़ोसियों पर निर्भर न रहे, बल्कि उसमें परस्पर सहयोग की भावना हो। हर गांव की पहली जरूरत होगी अपने खाने के लिए फसलें, आमदनी के लिए कपास का उगाना। कपास जो हमारे भारत का सबसे बेहतरीन खेती मानी जाती है, क्योंकि गांधी जी ने कपास को तरजीह दी थी और शुरुआत ही कपास से धागा बनाने का काम किया और फिर वो चरखा पर सूत काटने लगे। गांधी जी के ग्रामीण विकास के मुख्य स्तंभ ये तीन बातों पर टिके थे। पहला, आत्मनिर्भर भारत। गांव अपनी जरूरतों का सामान जैसे अनाज, कपड़ा और बुनियादी चीजें खुद पैदा करे। दूसरा, मजदूर का सम्मान। हर व्यक्ति शारीरिक मेहनत करे, जिसे गांधी जी ब्रेड लेबर, रोटी के लिए मेहनतकश, परिश्रमिक कहते थे। और तीसरा, विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन। सत्ता और संसाधनों का केंद्र दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या बेंगलोर जैसे बड़े शहर, महानगर न हों, बल्कि पंचायत हों। ये गांधी जी का मूल मंत्र था। ग्राम स्वराज को अस्तित्व मिलाने के बाद गांधी जी का मानना था कि जब तक गांव का विकास नहीं होगा, तब तक प्रगति खोखली रहेगी। आज जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, तो असल में हम गांधी जी के इसी ग्राम स्वराज के सपने को ही आगे बढ़ा रहे होते हैं। औद्योगिकीकरण और मशीनों पर गांधी जी के विचार। गांधी जी मशीनों के विरोधी नहीं थे, बल्कि वे मशीनवाद के विरोधी थे। वे उस व्यवस्था के खिलाफ थे जहां मशीनें चंद पूंजीपतियों की तिजोरियां भरती हैं और लाखों मजदूर को सड़कों पर लाकर खड़ा कर देती है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण 27 अक्टूबर 1924 के नवजीवन अखबार में मिलता है, जब उनसे पूछा गया कि क्या वे सभी मशीनों के खिलाफ हैं, तो गांधी जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा था, मैं मशीनों का नहीं बल्कि मशीनों के प्रति इस पागलपन का विरोधी हूँ। आज जो मशीनीकरण चल रहा है, वो मेहनत की बचत के नाम पर हो रहा है। लोग मजदूर की बचत तब तक करते रहेंगे जब तक हजारों लोग बिना काम के भूखे ना मरने लगे। मैं समय और मेहनत की बचत मानव जाति के एक हिस्से के लिए नहीं, बल्कि सभी के लिए चाहता हूँ। उसी बातचीत में उन्होंने आगे ये कहा था, मैं तो उस मशीन का स्वागत करूंगा जो इंसान के काम को आसान बनाए, जैसे सिलाई मशीन, किसानों के लिए क्रेशर मशीन और धान मिल, कपड़ा बुनने के लिए पावर लूम, सूत काटने के लिए जो मशीनों का उपयोग किया गया, वो बेहतरीन आविष्कार हैं। गांधी जी का सीधा सिद्धांत था, बड़े पैमाने पर उत्पादन नहीं बल्कि जनता द्वारा उत्पादन होना चाहिए। वे चाहते थे कि उत्पादन के साधन आम लोग के हाथों में हो। गांधी जी ने ग्रामीण विकास और औद्योगिक संतुलन को साधने के लिए दो अभूतपूर्व उपकरण दिए हैं, पहला खादी व कुटीर उद्योग और दूसरा न्यासिता का सिद्धांत। गांधी जी के लिए चरखा सिर्फ एक लकड़ी का ढांचा नहीं था, बल्कि वह भारत के आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक था। यंग इंडिया पत्रिका 1921 में उन्होंने लिखा था कि चरखा भारत के गरीबी का अचूक इलाज है। कुटीर उद्योग यानी छोटे छोटे घरेलू उद्योग के जरिए वे गांव के हर हाथ को काम देना चाहते थे।

0: या संरक्षक हैं। उन्होंने उद्योगपतियों से कहा था, आप अपनी जरूरत भर धन का उपयोग करें, लेकिन जो अतिरिक्त धन या संपत्ति है उसे समाज की धरोहर समझें और उसका उपयोग जन कल्याण के लिए करें। यह विचार आज के कॉरपोरेट जगत में CSR कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहलाता है। कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के रूप में दिखाई देता है।
1: गांधी चर्चा कार्यक्रम के इस अंक में अभी आप सुन रहे थे ये वार्ता, जिसका विषय था ग्रामीण विकास और औद्योगिक क्षेत्र में प्रगति के बारे में गांधी जी के विचार। आलेख एवं स्वर SZ मलिक।

इसी के साथ गांधी चर्चा कार्यक्रम का ये अंक अब संपन्न होता है। प्रस्तुति सहयोग श्रीनाथ दीक्षित और प्रस्तुतकर्ता थे वी के तोमर।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम गांधी चर्चा।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर।

الرحمن على العرش استوى.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत और फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। पेरिस में भारत फ्रांस व्यापार गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देश तकनीक, नवाचार, ऊर्जा और डिजिटल विकास के क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। श्रीमती सीतारामन ने फ्रांस की कंपनियों और निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि भारत और फ्रांस एआई के क्षेत्र में भरोसेमंद साझेदार हैं। वित्त मंत्री ने बताया कि पिछले 10 वर्ष में भारत और फ्रांस के बीच व्यापार दोगुना हो गया है। उन्होंने आधार, यूपीआई, डिजी लॉकर और इंडस्टैक जैसी डिजिटल सेवाओं का भी उल्लेख किया और कहा कि दुनिया के लगभग आधे रियल टाइम डिजिटल भुगतान भारत में होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकायचे ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। इनमें पाकिस्तान से संचालित सीमापार आतंकवाद भी शामिल है। नई दिल्ली में कल भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा की।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकायची ने पिछले वर्ष 10 नवंबर को दिल्ली में हुई आतंकी घटना की भी कड़ी निंदा की। दोनों देशों ने इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजकों और वित्त पोषकों को बिना किसी देरी के सजा दिलाने का आह्वान किया। श्री मोदी और सुश्री ताकायची ने अलकायदा, जैश ए मोहम्मद सहित संयुक्त राष्ट्र में सूचीबद्ध सभी आतंकी समूहों तथा संस्थाओं के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सुगम और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दोहराया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत मानवीय और चिकित्सा सहायता को और तेज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर राहत कार्यों की तस्वीरें साझा करते हुए बताया कि भारतीय सेना का फील्ड अस्पताल वहां प्रभावित लोगों को लगातार आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं दे रहा है। वेनेजुएला स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि दक्षिण अमरीकी देश में भारत के मानवीय राहत प्रयासों को जनता से इसकी सेवा की गुणवत्ता के लिए व्यापक प्रशंसा मिली है। भारत ने वेनेजुएला के अधिकारियों से नाविक राकेश चौहान के शव के साथ छेड़छाड़ और अंग निकाले जाने की घटना की गहन जांच की मांग की है। कारागार में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि घटना के सामने आने के बाद से ही दूतावास संबंधित स्थानीय अधिकारियों के सामने इस मामले को उठा रहा है। युवा मामलों के विभाग ने आज नई दिल्ली में माय भारत के उद्योग संघ सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उद्योग जगत के हितधारकों को माय भारत के इकोसिस्टम से परिचित कराना और उद्योग संघों, कॉरपोरेट और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को इस पहल में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना था। इस अवसर पर युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने में देश के युवाओं की प्रमुख भूमिका है। केरलम के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने स्पष्ट किया है कि विजिंगम बंदरगाह में हिस्सेदारी में कोई भी बदलाव सरकार की अनुमति के बिना संभव नहीं है। श्री सतीशन ने यह भी बताया कि एक विदेशी कंपनी द्वारा 49% हिस्सेदारी के निवेश की घोषणा राज्य सरकार को सूचित किए बिना की गई थी। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिन की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर के दर्शन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। एक पत्र में श्री मोदी ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में एक सनातन अध्याय बताया। फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। मंगलवार को उसका मुकाबला कोलंबिया या घाना से होगा। घरेलू शेयर बाजार में दोपहर के सत्र में 0.5% की बढ़ोतरी हुई। सेंसेक्स 511 अंक बढ़कर 78,013 पर, जबकि निफ्टी लगभग 160 अंक की वृद्धि के साथ 24,336 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi and his Japanese counterpart Sanae Takaichi have unequivocally and strongly condemned terrorism and violent extremism in all its forms and manifestations, including cross-border terrorism from Pakistan. The 16th India-Japan Annual Summit joint statement said both leaders condemned in the strongest terms the terrorist attack in Pahalgam, Jammu and Kashmir on the 22nd of April last year. The leaders also took note of the United Nations Security Council Monitoring Team report of the 29th of July 2025, mentioning the resistance front. The two leaders called for the perpetrators, organizers and financiers of the reprehensible act to be brought to justice without delay. They also called for concerted action against all UN-listed terrorist groups and entities, including Al-Qaeda, ISIS, Daesh, Lashkar-e-Taiba, Jaish-e-Mohammed and their proxies. Finance Minister Nirmala Sitharaman has said the India-France strategic partnership is well placed to drive the next phase of sustainable, resilient and innovation-led growth. Addressing the India-France Business Roundtable in Paris, she said the global economy is undergoing rapid transformation due to technological advances, supply chain diversification, energy transition and geopolitical developments. The finance minister invited French businesses and investors to partner with India in its journey towards Vikasit Bharat 2047. She called for strengthening the India-France strategic partnership to achieve shared prosperity. She said India and France are trusted partners in shaping the global AI ecosystem. She noted that this partnership offers new opportunities in trusted AI, digital infrastructure and next-generation technologies. India has stepped up its humanitarian assistance to earthquake-hit Venezuela under Operation Amistad. Sharing pictures of the ongoing medical relief efforts on social media, the Ministry of External Affairs said the Army Field Hospital continues to provide medical care to affected communities in Venezuela. While the Indian Embassy in Venezuela has said that India's humanitarian relief efforts in the South American nation have received widespread acclaim from the public for its professionalism and quality of service. The Department of Youth Affairs today organized an industry association conclave of My Bharat in New Delhi. Leading industry bodies including ASSOCHAM, FICCI, CAIT and CII participated in the conclave. The event aimed to introduce the My Bharat ecosystem to industry stakeholders and invite industry associations, corporates and public sector undertakings to join the initiative. The conclave also focused on exploring frameworks for future collaboration on youth development and aligning national youth goals with industry-led initiatives. Speaking on the occasion, Union Minister for Youth Affairs and Sports, Dr. Mansukh Mandavia, said the youth of the country are the key drivers in realizing the vision of a Vikasit Bharat by 2047. The annual Sri Amarnath Yatra began this morning from both Pahalgam and Baltal routes in Jammu and Kashmir. Lakhs of devotees from across India are expected to undertake the sacred journey to the Amarnath Cave Shrine during the 57-day-long pilgrimage. Pilgrims travel to the holy Amarnath Cave located

चक स्वीकार करें मेरा नमस्कार। आज है 3 जुलाई, आज मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस यानी इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे। ये हर साल 3 जुलाई को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य सिंगल उपयोग यानी एक बार उपयोग होने वाले प्लास्टिक बैग के नुकसान के बारे में लोगों को जागरूक करना है और पर्यावरण को बचाना है। प्लास्टिक बैग को गलने में करीब 100 से 500 साल तक का समय लगता है, इसलिए हमें पर्यावरण को बचाने के लिए जो भी अपनी तरफ से हम कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए, क्योंकि जमीन और समुद्र के जानवर इसे भोजन समझकर खा जाते हैं, इससे उनकी जान भी जा सकती है। नालियों को जाम करता है, हवा और पानी को जहरीला बनाता है ये प्लास्टिक। तो हम क्या कर सकते हैं? यहाँ बाजार जाते समय हमेशा कपड़े या जूट के थैले को साथ लेकर जाएं। एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक बैग को लेने से मना कर दीजिए। और जब भी आप मार्केट जाएं ना, हमेशा घर से कपड़े का या जूट का बैग साथ लेकर निकलें। जैसे पहले होता था, अपने साथ एक थैला लेकर जाते थे, वो लेकर जाइए और अपने पास रखिए। प्लास्टिक लेने से मना कर दीजिए। फल और सब्जियां अलग अलग रखने के लिए प्लास्टिक की थैलियों के बजाय सूती की छोटी छोटी थैलियां बना लीजिए। जो पैकेज दालें और अनाज बाजार में खुला लिया जाता है सामान, उसमें प्लास्टिक की पैकिंग जो होती है वो ना ले, बल्कि खुला सामान लेने को प्रेफरेंस दे। किचन में मसाले, दालें और राशन जो आप प्लास्टिक के कंटेनर्स में रखते हैं ना, उसी लिया कांच के जार का इस्तेमाल करें। तो बहुत छोटे छोटे उपयोग हैं जिनसे हम पर्यावरण को बचा सकते हैं, प्लास्टिक को नो कह सकते हैं, नो यूज टू प्लास्टिक। जो हम ये स्ट्रॉ लेते हैं ना प्लास्टिक के, उसकी जगह भी पेपर स्ट्रॉ इस्तेमाल कर सकते हैं। और सफर के दौरान जो हम प्लास्टिक की पानी की बोतलें बार बार खरीद लेते हैं ना, ये भी ठीक नहीं है। एक स्टील की बोतल आप अपने साथ रखिए। इसलिए कोशिश कीजिए कि छोटी छोटी जो दिन भर की आपकी जरूरतें हैं, आपकी आदतें हैं, उन्हें बदलने की कोशिश कीजिए। और आज का हमारा घर आंगन कार्यक्रम का जो प्रश्न है वो इसी से जुड़ा हुआ है कि जब आप बाजार जाते हैं तो क्या प्लास्टिक बैग लेकर जाते हैं, और नहीं जाते तो प्लास्टिक बैग के अलावा कौन सा वो ऑप्शन है जो पर्यावरण के अनुकूल है और आप इस्तेमाल करते हैं, हमें बताइए। हमारा ईमेल आईडी है fmgoldga@gmail.com। एक बार फिर से पूछ लेती हूँ कि बाजार आप जाते हैं तो किस तरह का बैग आप लेकर जाते हैं जो पर्यावरण के अनुकूल होता है, प्लास्टिक के ऑप्शन के रूप में आप क्या इस्तेमाल करते हैं। हमारा ईमेल आईडी है fmgoldga@gmail.com। हमें मेल्स भेजिए, हम आपकी मेल्स को शामिल करेंगे आज के कार्यक्रम में। सुनते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत।

ये गीत आप सुन रहे हैं शमशाद बेगम उषा मंगेशकर की आवाजें ब्लफ मास्टर फिल्म से। और हमने एक प्रश्न कार्यक्रम के शुरू में ही पूछ लिया है कि प्लास्टिक की थैली के बजाय आप बाजार जाते हैं तो क्या लेकर जाते हैं। तो हमें ईमेल्स आने शुरू हो गए हैं, मैसेज मिलने शुरू हो गए हैं। तो जो सबसे पहली ईमेल आई है वो मैं पढ़ देती हूँ। नवीन भाटिया मोतीनगर से लिखते हैं कि हम कपड़े का थैला लेकर जाते हैं। और रोहिणी से लिखते हैं, डॉक्टर विनोद, पुनीत रावत, संजय, प्रवीण कुमार और प्रदीप, ये लिखते हैं कि जूट का बैग लेके जाते हैं जो सबसे मजबूत और टिकाऊ विकल्प है। इसमें आप भारी राशन और सब्जियां भी आसानी से ला सकते हैं। बहुत बढ़िया बात। इस तरह से आप हमें ईमेल भेजते रहिए क्योंकि हम पूछ लिया है हमने आपसे एक प्रश्न। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। और आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम बात करेंगे उन लोगों की जिनके अनुभव, संस्कार और स्नेह से हमारे परिवार और समाज की नींव मजबूत होती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अपने वरिष्ठ नागरिकों की। वरिष्ठ नागरिक हमारे परिवार और समाज की अमूल्य धरोहर हैं। उनका सम्मान करना, उनकी बातों को सुनना, उनके अनुभवों से सीखना, ये सब हम सबकी जिम्मेदारी है। हम बुजुर्गों को सम्मान, स्नेह और सहयोग देकर उनके जीवन को अधिक सुखद और सार्थक बना सकते हैं। और अक्सर ये माना जाता है कि सपनों को पूरा करने की एक उम्र होती है, जबकि ऐसा हर बार नहीं होता। कुछ सपने घर की जिम्मेदारियों को पूरा करने में कहीं पीछे छूट जाते हैं। अक्सर ये माना जाता है कि अब तो उम्र हो गई है, अब क्या करेंगे सपने पूरे करके, लेकिन वास्तविकता इससे बहुत अलग है। जीवन के किसी भी पड़ाव पर एक नई शुरुआत की जा सकती है। अनेक वरिष्ठ नागरिक सेवानिवृत्ति के बाद नई शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, कलाएं सीख रहे हैं, व्यवसाय शुरू कर रहे हैं, समाज सेवा में योगदान दे रहे हैं। उम्र तो केवल एक नंबर है। यदि मन में उत्साह और आत्मविश्वास हो तो हर सपना साकार किया जा सकता है। ऐसे कई उदाहरण देखने को मिलते हैं जहां जीवन के दूसरे दौर में नई शुरुआत करके सफलता हासिल की है। तो निकालिए उन रुचियों को, उन सपनों को जो कभी यादों के पिटारों में दब गए हैं। पहन लीजिए उन यादों के संदूकों को, निकालिए, एक लिस्ट बनाइए, सपनों को फिर से खोजिए। और अब समय है उन्हें पूरा करने का। चाहे शिक्षा प्राप्त करनी हो, कोई आर्ट सीखनी हो, कोई बिजनेस शुरू करना हो, इसमें उम्र बाधा नहीं होनी चाहिए। और परिवार का दायित्व है कि उनका साथ दें, उनको प्रोत्साहित करें।

ये खूबसूरत गीत आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज में काला बाजार फिल्म से। और हमें ईमेल्स और आ गई हैं कि लोग प्लास्टिक बैग को लेकर कितने सचेत हैं कि बाजार जाते हैं तो प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल नहीं करते। अब रश्मि कपूरिया, गौरी शंकर, पुल्क की तक्षरा, प्रीति और मिली वैशाली गाजियाबाद से लिखती हैं कि वो तो डेनिम बैग लेकर जाती हैं। पुराने जीन्स को काट कर घर पर ही बहुत मजबूत और फैशनेबल थैला बनाती हैं और वही बाजार लेके जाती हैं और उनके पतिदेव भी यही लेकर जाते हैं और बच्चों के लिए भी उन्होंने कागज के बैग बना रखे हैं ताकि हल्के सामान को बच्चे ले जा सकें और बाजार से ला सकें। बहुत अच्छी बात है कि बच्चे अगर बाजार से सामान लेने जाते हैं तो अपने कागज के बना रखे हैं, यानी जो लिफाफे पहले बना करते थे वो बना रखे हैं। बहुत ही खूबसूरत बात है ये कि सामान का इस्तेमाल भी हो गया, पुरानी जीन्स को काट कर डेनिम बैग बन गया और आप लेके जाते हैं और खूबसूरत भी लगता है। तो देखिए ना कितने अच्छे अच्छे सुझाव हमारे श्रोता दे रहे हैं। तो आप भी भेजिए ऐसा सुझाव कि आप क्या करते हैं अगर बाजार जाते हैं तो कौन सा बैग लेके जाते हैं, क्योंकि आज है इंटरनेशनल प्लास्टिक फ्री डे। और हमारा ईमेल आईडी फिर से बता देते हैं fmgoldga@gmail.com। और आज फ्राइडे है, शुक्रवार है, तो हम बुजुर्ग के लोगों की बात तो जरूर करेंगे और उसी पर तो हमारा कार्यक्रम आज आधारित है। बुजुर्ग जो है वो समाज की अमूल्य धरोहर है या कहिए जड़ है। उनके अनुभव, उनके संघर्ष, उनकी सफलताएं, उनके जीवन से मिली सीख नई पीढ़ी के लिए मार्गदर्शन का कार्य करती है। आज जब युवा तेजी से बदलती दुनिया में अनेक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं तो बुजुर्गों की सलाह और सुझाव उन्हें सही दिशा दिखा सकती है। उनके अनुभवों की विरासत नई पीढ़ी को मजबूत और जिम्मेदार नागरिक बनने में मदद करती है। बुजुर्ग समाज की अमूल्य धरोहर है, इसलिए हमारे बड़े जो घर में होते हैं उनके अनुभव, उनके संघर्ष, उनकी सफलताएं जो हमारी नई पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ी और हम है, हमारे लिए मार्गदर्शक का कार्य करती है, हमें मार्गदर्शन देती है। तेजी से बदलती दुनिया में जीवन, उनके जो जीवन अनुभव हैं हमें और युवाओं को सही दिशा दिखाते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि अनुभवों की विरासत हैं हमारे बुजुर्ग।

कार्यक्रम चल रहा है घर आंगन एफएम गोल्ड एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। हमने अपना ईमेल आईडी आपको बताया क्योंकि जो बातचीत हमारी आपसे हो रही है वो एक तरफा नहीं रहनी चाहिए, दो तरफा रहनी चाहिए। हम कुछ बोले आप जवाब दीजिए। fmgoldgmail.com पर आप बताइए कि आप जब बाजार जाते हैं तो कैसा बैग लेकर जाते हैं, प्लास्टिक मुक्त अगर देश को करना है, पर्यावरण को अच्छा करना है तो क्या करते हैं। हमें बहुत सारे मैसेज मिल रहे हैं। अब एक और मैसेज मिला है बहादुरगढ़ से प्रीति गर्ग, सत्यकाम गर्ग और स्वस्तिका का। ये लिखते हैं कि इन्होंने फल और सब्जियां खरीदने के लिए पारंपरिक बांस की टोकरियों का उपयोग करना शुरू कर दिया है और ये बांस की टोकरियां जब ये पहाड़ों पर गए थे तो वहां से लेकर आए थे। ये भी बहुत अच्छी बात है कि आप बांस की टोकरियां लेकर आए। सब लोग ऐसा कर सकते हैं कि कहीं जाएं तो ऐसा पर्यावरण अनुकूल आइटम लेकर आए घर में ताकि प्लास्टिक बैग की जगह इस्तेमाल किया जा सके। और अब बात करें हैं फिर से अपने बुजुर्गों की। विकास और आधुनिकता बहुत जरूरी है लेकिन अपनी संस्कृति अपने मूल्यों को भूल जाना उचित नहीं है। नई तकनीक और नए विचारों को अपनाने के साथ साथ हमें अपने बुजुर्गों के अनुभव और पारंपरिक ज्ञान का भी सम्मान करना चाहिए। यही संतुलन तो समाज को आगे बढ़ाता है। प्रगति और विकास के लिए नए विचारों और तकनीकों को अपनाना आवश्यक है लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम अपने पुराने मूल्य अनुभव और बुजुर्गों को त्याग दें। पुराना और नया एक दूसरे का पूरक हो सकता है लेकिन इन दोनों को ही एक दूसरे की जरूरत होती है। आधुनिक तकनीक हमें सुविधा देती है जबकि पुरानी संस्कृति हमें जीवन जीने की दिशा देती है। यदि हम केवल नए के पीछे भागेंगे तो अपनी जड़ों को भूल जाएंगे तो हमारी सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक संतुलन कमजोर भी पड़ सकता है।

मुकेश और लता मंगेशकर की आवाजों में ये गीत फिल्म ओपेरा हाउस से था। और जो हम आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं उसके जवाब ईमेल द्वारा आने शुरू हो गए हैं। अब देखिए ना, राजू अग्रवाल, केशव, विनोद, ममता चौधरी जिला हिसार हरियाणा से लिखते हैं कि हमने वो जमाना भी देखा है कि विवाह शादियों में खाना खाने जाते थे, दुकान में सामान लेने जाते थे, बर्तन घर से लेकर जाते थे। जी हाँ, पहले प्लास्टिक के लिफाफे नहीं थे, साफ सुथरा वातावरण था। आज भी मैं अपनी साइकिल पर कपड़े का बैग हमेशा साथ रखता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर विचार है। हमें और ईमेल मिली है चरण दास जी की, और ये मेल भी मैं पढ़ देती हूँ। ये लिखिए रामेश्वर राव जी ने, लिखिए शकरपुर से, लिखते हैं कि मैं हमेशा अपनी गाड़ी में चाय पीने के लिए एक कांच का ग्लास रखता हूँ ताकि पेपर ग्लास को हम अवॉइड कर सकें। और लिखते हैं कि हमारी फैमिली फंक्शंस के लिए हम सब फैमिली मेंबर्स ने मिलकर 100 ग्लास खरीदे हुए हैं, प्लेट्स खरीदी हुई हैं छोटी और बड़ी, ताकि हम एनवायरमेंट को, पर्यावरण को सुरक्षित कर सकें। इस तरह से ईमेल हमें भेजती रही है। देखिए ना, खतों का सिलसिला चला करता था पहले। पहले लोग खत लिखते थे, पहुंचता था, अब तो कितनी जल्दी है, ईमेल आप टाइप करेंगे और हम तक पहुंच जाएगी। फिर क्यों सोच रहे हैं आप,

कच्चे धागे फिल्म में आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को। और अब जो पर्यावरण की बातें चल ही रही हैं, तो एक ईमेल और हमें मिल गया है। सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी शांतिनगर सोनीपत से लिखते हैं कि हम जब भी मार्केट जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, तो हम लेकर जाते हैं कॉटन का बैग। देखिए कितने अच्छे अच्छे सलाह, मशवरे और सुझाव हमें मिल रहे हैं, और हमारे जो श्रोता हैं वो सुन रहे हैं कि आगे पर्यावरण को बचाने के लिए वो क्या कर सकते हैं। अब हमारे बुजुर्ग जो हैं वो ये चीज बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आप बुजुर्गों से पूछेंगे ना, तो पहले यही होता था, प्लास्टिक के बैग्स नहीं होते थे, वो प्लास्टिक के बैग्स की बजाय एक कॉटन का, या जैसे घर में पुराने कपड़े टी शर्ट्स बच जाती थी, उन टी शर्ट्स को भी काट कर सिया जाता था, सील लिया जाता था, एक बैग बनाया जाता था। हर घर में ऐसा ही होता था। जी हाँ बिल्कुल, और आप पूछेंगे तो वो बताएंगे कि प्लास्टिक की थैलियां नहीं हुआ करती थी, एक थैला बनाया जाता था पुराने कपड़ों से, नए कपड़ों से अगर सुंदर सुंदर है वो भी बनाए जाते थे, सिलाई मशीन पे उनको सील कर बैग या थैला बना लेते थे अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर, और बाजार जा रहे हैं तो लेकर जाते थे। अब यही तो पुरानी परंपराएं हैं जो आगे ले जाने का कार्य करते हैं हमारे बुजुर्ग। हमारी संस्कृति, रीति रिवाज, त्योहार और लोक परंपराएं पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे बुजुर्गों के माध्यम से ही तो आगे बढ़ती हैं। वो हमें बताते हैं कि हमारी जड़ें कितनी मजबूत हैं, हमारी सांस्कृतिक पहचान कितनी समृद्ध है। उनके मार्गदर्शन से नई पीढ़ी अपनी परंपराओं को समझती भी है और अपनाती भी है। भारत की समृद्ध संस्कृति, परंपराएं और लोकाचार पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते रहते हैं। इसी प्रक्रिया में हमारे बुजुर्गों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। वे त्योहार, रीति रिवाज, लोक कथाएं, पारिवारिक मूल्य, सांस्कृतिक विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाते हैं। आधुनिकता के दौर में जहां परंपराएं विलुप्त होने की कगार पर हैं, वहीं वरिष्ठ नागरिक उन्हें जीवित रखने का कार्य कर रहे हैं। उनकी बदौलत हमारी सांस्कृतिक पहचान सुरक्षित रहती है, समाज अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है, और वरिष्ठ नागरिक न केवल परंपराओं के संरक्षक हैं बल्कि आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण सेतु का कार्य भी करते हैं हमारे बुजुर्ग।

ये गीत आप सुन रहे थे गोरा और काला फिल्म से उषा मंगेशकर और मोहम्मद रफी की थी आवाजें। आप हमें ईमेल प्राप्त हुई है रेखा देवी, निर्मला देवी, प्रीति चौधरी की हिसार हरियाणा से। वो लिखते हैं कि हम प्लास्टिक बैग का जो लिफाफा है वो फट जाता है, इसलिए हम कपड़े का बैग जरूर साथ रखते हैं ताकि सामान बिखर नहीं पाए। और बाजार में लोग आप पर हंसे ना, इसलिए आपको जरूरत है कि आप कपड़े का बैग ही साथ रखें। जी हाँ, ज्यादातर लोग यही कह रहे हैं कपड़े का बैग। और एक मेल हमें, एक मैसेज और मिला है हमें फरीदाबाद से नरबीर, त्रिलोक और मोहित का। ये भी यही लिखते हैं कि आप कपड़े का बैग लेके जाएं, इन्हें मोड़कर जेब या गाड़ी में रखना आसान होता है और गंदा होने पर इन्हें धोकर बार बार इस्तेमाल भी किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक, यानी हमें बहुत सारे सुझाव और आइडियाज मिल रहे हैं आज मेल पर कि पर्यावरण अनुकूल हम क्या काम कर सकते हैं कि प्लास्टिक बैग्स को हम नो कह दें, क्योंकि आज है अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस और हमें पर्यावरण को खुश रखना है। पर्यावरण खुश रहेगा तभी तो हम भी खुश रहेंगे।

जी हाँ, कार्यक्रम चल रहा है घर आंगन, और ये गीत हमने लिया था पारस मणि फिल्म से। लता मंगेशकर और कमल बड़ौत की थी आवाजें। बातें चल रही थी बुजुर्गों की, अब बुजुर्गों की बात चली है। और देखिए, बुजुर्गों की बात है हमारे घर में, जो हमारे बड़े रहते हैं, दादी नानी हैं, उनके किस्से कहानियां कैसे भूले जा सकते हैं। दादी नानी की कहानियां केवल मनोरंजन का साधन नहीं होती, बल्कि उनमें जीवन के महत्वपूर्ण संदेश छिपे होते हैं। इन कहानियों के माध्यम से बच्चों को नैतिकता, ईमानदारी, साहस और संस्कारों की सीख मिलती है। ये कहानियां बच्चों को अपनी संस्कृति और परंपराओं से भी जोड़ती हैं। नानी माँ की कहानियां, दादी माँ की कहानियां भारतीय संस्कृति और लोक कथाओं का एक अनमोल खजाना है। दादी नानी की ये जो कहानियां होती हैं ना, इससे बच्चों का सिर्फ मनोरंजन नहीं होता, बल्कि बच्चों को जीवन के गहरे नैतिक मूल्य और समझदारी और साहस भी मिलता है। ये कहानियां हमें सही गलत का फर्क सिखाती हैं। ये पीढ़ियों के बीच एक मजबूत पुल का काम करती हैं। जब हम दादी या नानी या नाना या दादा की गोद में सिर रखकर इन कहानियों को सुनते हैं, तो हम अपने परिवार और संस्कारों से गहरा जुड़ाव महसूस करते हैं। और ये जो दादी पोते का रिश्ता है, दादा पोते का रिश्ता है, बेहद गहरा भावनात्मक और प्यार से भरा होता है। ये कहानियां हमें परंपराओं से जोड़ती हैं। जो दादी नानी दादा नाना प्यार करते हैं, वो बिना किसी शर्त के ढेर सारा प्यार होता है। एक मजबूत भावनात्मक आधार होता है जिंदगी जीने का। कई परिवार जो होते हैं, उसमें नानी दादी बच्चों की सबसे अच्छी दोस्त होती हैं, बड़ी मार्गदर्शक होती हैं, जिनसे बच्चे खुलकर अपनी बातें कह सकते हैं।

ये गीत आप सुन रहे हैं घर घर की कहानी फिल्म से शब्बीर कुमार, चंद्रानी मुखर्जी और साथियों की आवाजें। और देखिए कार्यक्रम का समय अब सिमट गया है, इसलिए कार्यक्रम घर आंगन संपन्न करने की राधा पाठक को दे इजाजत। आप सुनते रहिए ये गीत।

0: आंगन।
1: आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा आपका घर आंगन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत और फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। पेरिस में भारत फ्रांस व्यापार गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देश तकनीक, नवाचार, ऊर्जा और डिजिटल विकास के क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। श्रीमती सीतारामन ने फ्रांस की कंपनियों और निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि भारत और फ्रांस न्यायिक क्षेत्र में भरोसेमंद साझेदार हैं। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत मानवीय और चिकित्सा सहायता को और तेज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर राहत कार्यों की तस्वीरें साझा करते हुए बताया कि भारतीय सेना का फील्ड अस्पताल वहां प्रभावित लोगों को लगातार आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं दे रहा है। वेनेजुएला स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि दक्षिण अमरीकी देश में भारत के मानवीय राहत प्रयासों को जनता से इसकी सेवा की गुणवत्ता के लिए व्यापक प्रशंसा मिली है। वेनेजुएला में हाल ही में आए भीषण भूकंप में मृतकों की संख्या बढ़कर 2,595 हो गई है। इस आपदा में 12,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं, जबकि 189 इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई हैं। स्थिति को देखते हुए कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्से रोड्रिगेज ने देश में 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। भारत ने वेनेजुएला के अधिकारियों से नाविक राकेश चौहान के शव के साथ छेड़छाड़ और अंग निकाले जाने की घटना की गहन जांच की मांग की है। कराकस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि घटना के सामने आने के बाद से ही दूतावास संबंधित स्थानीय अधिकारियों के सामने इस मामले को उठा रहा है। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची भारत की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट गई हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस यात्रा से भारत और जापान के बीच महत्वपूर्ण साझेदारी और मजबूत हुई है। दोनों देशों ने साझा विकास, समृद्धि तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सहयोग बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। जापान के कई समाचार पत्रों और मीडिया संस्थानों ने नई दिल्ली में आयोजित 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन को सकारात्मकता से प्रकाशित किया है। इनमें दोनों देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक सहित कई क्षेत्रों में बेहतर होते संबंधों को रेखांकित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची द्वारा शिखर सम्मेलन में द्विपक्षीय सहयोग के सभी क्षेत्रों की समीक्षा के बाद इन्हें मजबूत करने के लिए किए गए समझौतों के बाद जापान के मीडिया ने इन्हें प्रकाशित किया है। युवा मामलों के विभाग ने आज नई दिल्ली में माय भारत के उद्योग संघ सम्मेलन का आयोजन किया। इस अवसर पर युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने में देश के युवाओं की प्रमुख भूमिका है। युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने कहा कि सरकार युवाओं के लिए चल रहे कार्यक्रमों को और प्रभावी बनाने पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान और गुजरात दौरे पर रहेंगे। राजस्थान में वे जोधपुर हवाई अड्डे की नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना को सालाना 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। प्रधानमंत्री राजस्थान के बालोतरा में 1,06,000 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। इनमें पेट्रोकेमिकल, रेलवे, सड़क, ऊर्जा और शहरी परिवहन से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिन की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर में दर्शन करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि अमरनाथ यात्रा देश की आध्यात्मिक विरासत और उसकी आस्था को रेखांकित करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में एक सनातन अध्याय बताया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने पूरे मार्ग पर उच्च स्तरीय व्यवस्थाएं की हैं। फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। 7 जुलाई मंगलवार को उसका मुकाबला कोलंबिया या घाना से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना मनपसंद कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और आज मैं आपके साथ हूँ आपकी दोस्त शिल्पा गोस्वामी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
1: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ, वाह दिन बन गया।
2: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज का कार्यक्रम इस गीत के साथ।

दोस्तों, ये गाना फिल्म के सबसे बड़े हिट गीतों में शामिल है। साथियों, इस गीत को अपनी आवाज दी थी अलका याग्निक और उदित नारायण ने। तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम किस फिल्म के बारे में बात करने जा रहे हैं। जी हाँ साथियों, आज की महफिल सजी है 1995 की सुपरहिट रोमांटिक फिल्म राजा के नाम। दोस्तों, इस फिल्म ने ना सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर शानदार सफलता हासिल की थी, बल्कि इसके गाने आज भी लोगों की जुबान पर हैं। तो आइए शुरू करते हैं फिल्म राजा का यह खूबसूरत सफर।

जी हाँ दोस्तों, राजा फिल्म 1995 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन और सह निर्माण इंद्र कुमार ने किया था। दोस्तों इसमें माधुरी दीक्षित और संजय कपूर मुख्य भूमिकाओं में हैं, जबकि परेश रावल, मुकेश खन्ना, दिलीप ताहिल, रीता भादुरी और हिमानी शिवपुरी सहायक भूमिकाओं में नजर आते हैं। साथियों, यह फिल्म 2 जून 1995 को रिलीज हुई और व्यावसायिक रूप से ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी।

युवक है। उसकी मुलाकात होती है अमीर परिवार की लड़की मधु से। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, लेकिन मधु का परिवार इस रिश्ते के खिलाफ होता है। दोस्तों, दोनों शादी तो कर लेते हैं, लेकिन इसके बाद शुरू होता है संघर्ष, गलतफहमियों और साजिशों का सिलसिला। लेकिन राजा अपने प्यार को बचाने के लिए हर मुश्किल का सामना करता है, और अंत में हम सभी जानते हैं कि सच्चे प्रेम की जीत होती है।

साथियों, फिल्म की शूटिंग भारत के कई खूबसूरत स्थानों पर की गई थी। फिल्म के रोमांस और संगीत ने इसे पारिवारिक दर्शकों के बीच बेहद लोकप्रिय बना दिया था। दोस्तों, राजा सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं बल्कि विश्वास, त्याग और सच्चे प्यार की कहानी है। इसकी मधुर धुनें, शानदार अभिनय और भावनात्मक कहानी आज भी इसे यादगार बनाती है।

साथियों, इसी गीत के साथ हमें दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे एक और सुनहरी फिल्म की कहानी, उसके यादगार गीतों और अनसुने किस्सों के साथ।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही फिल्म से। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। और लीजिए, आप सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरां दे नाल मैं सरबजीत कौर, पहला इस बुलेटिन दियां खास खबरां। खजाना मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि भारत फ्रांस रणनीतिक भाईवाली निरंतर रहनयोग विकास नूं अगे वधाउण लई चंगी तरह तैयार है। भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद तहत भूचाल प्रभावित वेनेजुएला लई अपनी मानवतावादी सहायता वधा दित्ती है। सलाना श्री अमरनाथ यात्रा जम्मू कश्मीर के पहलगाम ते बालटा दोवां रूटा तो शुरू हो गई है।

0: उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री ते गृह मंत्री ने शुभकामनावां दित्तियां ने। भारत दी विलक्खण पछाण अथॉरिटी UIDAI ने 1 जुलाई तो 6 महीनिया की म्याद लई आधार ऐप राही सीधा आधार विच मुफ्त ईमेल अपडेट नूं समर्थ बनाया है। चंडीगढ़ सहित मौसम विभाग ने 5 तों 8 जून तक पंजाब ते हरियाणा के ज्यादातर हिस्सों के नाल नाल केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ विच गरज चमक नाल भारी मीह दा येलो अलर्ट जारी किया है। खजाना मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि भारत फ्रांस रणनीतिक भाईवाली निरंतर रहनयोग लचकीले ते नवीनता की अगवाई वाले विकास के अगले पड़ा अगे वधाउण लई चंगी तरह तैयार है। पैरिस विच भारत फ्रांस व्यापार कोलमेज नूं संबोधन करदिआं उन्हां कहा कि तकनीकी तरक्की सप्लाई लड़ी वनसवंता ऊर्जा तब्दीली ते भूसियासी गतिविधियां कारण विश्व आर्थिकता तेजी नाल तब्दीली विचों गुजर रही है। खजाना मंत्री ने फ्रांसीसी कारोबारां ते निवेशकां नूं विकसित भारत 2047 वल भारत की यात्रा विच भाईवाली करन दा सद्दा दित्ता। उन्हां सांझी खुशहाली प्राप्त करन लई भारत फ्रांस रणनीतिक भाईवाली नूं मजबूत करन लई भी कहा। उन्हें कहा कि भारत ते फ्रांस आलमी AI इकोसिस्टम नूं नुहार देण विच भरोसेयोग भाईवाल ने। ए भाईवाली भरोसेयोग AI डिजिटल बुनियादी ढांचे अते अगली पीढ़ी दीआं तकनालोजियां विच नवे मौके प्रदान करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ते उन्हां दे जापानी हमरुतबा सनाए ताकाइशी ने पाकिस्तान तो सरहद पार दहशतगर्दी समेत सारी रूपां ते प्रगटाव्यां विच दहशतगर्दी अते हिंसक कट्टरवाद की स्पष्ट अते सख्त निखेधी कीती है। 16वें भारत जापान सालाना सिखर सम्मेलन दे सांझे बयान विच कहा गया कि दोवां नेतावां ने पिछले साल 22 अप्रैल नूं जम्मू कश्मीर दे पहलगाम विच होए दहशतगर्द हमले दी सख्त शब्दां विच निखेधी कीती। दोवां नेतावां ने 29 जुलाई 2025 दी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद निगरानी टीम रिपोर्ट नूं भी ध्यान च लिया जिस विच विरोध मोर्चे दा जिक्र कीता गया है। दोवां नेतावां ने इस निंदणयोग कारवाई दे दोषियां इस दी योजना बनाउण वालियां अते इस लई रकमां जुटाउण वालियां नूं बिना देरी दे न्याय दे कटहरे च लियाउण दी मंग कीती। उन्हां ने अलकायदा ISIS दाइश लश्कर ए तैयबा जैश ए मुहम्मद अते संयुक्त राष्ट्र वल्लों सूचीबद्ध होरना सारे दहशतगर्द धड़ियां ते संस्थावां विरुद्ध ठोस कारवाई करन दी भी मांग कीती। भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद तहत भूचाल प्रभावित वेनेसुएला लई अपनी मानवतावादी सहायता वधा दित्ती है। सोशल मीडिया ते चल रहे डॉक्टरी राहत यत्नां दीआं तस्वीरां सांझियां करदे होए विदेश मंत्रालय ने कहा है कि आर्मी फील्ड अस्पताल वेनेसुएला विच प्रभावित भाईचारियां नूं डॉक्टरी देखभाल प्रदान कर रहा है, जदों कि वेनेसुएला विच भारतीय दूतघर ने कहा कि दक्षणी अमरीकी राष्ट्र विच भारत दे मानवतावादी राहत यत्नां नूं जनता वल्लों व्यापक शलाघा मिली है। इस दौरान वेनेसुएला विच 24 जून नूं देश विच आए तबाहकुन भूचालों विच मरण वालियां दी गिणती 2595 हो गई है ते 12,000 तों वध लोग जख्मी होए ने। 199 इमारतां भी तबाह हो गईआं ने। वेनेसुएला दे कार्यकारी राष्ट्रपति डेलसी रोड्रिगेस ने 7 दिनां दे राष्ट्रीय सोग दा ऐलान कीता है। अधिकारियों ने कहा कि हजारां लोग लापता ने, बचाव ते राहत कार्ज जारी ने। बिहार के राजपाल सेवा मुक्त लेफ्टिनेंट जनरल सईद अता हसनैन ते विदेश राजमंत्री पवित्र मार्गरीटा ईरान के सर्वोच्च नेता ग्रैंड यातुल्ला सईद अली खमनेई ते अंतम संस्कार विच शामिल हो रहे ने। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस मौके इन्हां दो भारतीय नुमाइंदियां दी उच्च पदरी मौजूदगी दोवां देशां विचकार सभ्याचारक संबंधां दी महत्ता नूं दर्शाउंदी है। इह राजनीति अते आर्थिक संबंधां लई इक मजबूत बुनियाद प्रदान करदा है। ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ @AIRRNU ਜਲੰਧਰ, ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਏ RNU-AIR ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਏ @AIR ਜਲੰਧਰ। सलाना श्री अमरनाथ जी यात्रा अज सवेरे जम्मू कश्मीर के पहलगाम ते बालटाल दोवां रूटा तो शुरू हुई। 57 दिनां की यात्रा दौरान भारत भर तो लखां श्रद्धालुआं ने अमरनाथ जी की गुफा से पवित्र यात्रा करन दी उम्मीद है। श्रद्धालु भगवान शिव दा आशीर्वाद लैण अते कुदरती तौर ते बने बर्फ दे शिवलिंग दे दर्शन करन लई करीब 3,888 मीटर दी उचाई ते स्थित पवित्र अमरनाथ जी गुफा दी यात्रा करदे ने। इह यात्रा 28 अगस्त नूं रखड़ी दे त्योहार दे नाल संपूर्ण होएगी। श्रद्धालुआं दा पहला जत्था सवेरे नूनवान अते बालटाल बेस कैंपा तों अमरनाथ जी दी गुफा लई रवाना होया। पेश ए इक रिपोर्ट।
1: ਬੰਬ ਬੰਬ ਬੋਲੇ ਅਤੇ ਹਰ ਹਰ ਮਹਾਦੇਵ ਦੇ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 3,880 ਮੀਟਰ ਉੱਚੇ ਗੁਫਾ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪਰ ਅਧਿਆਤਮਕ ਸਕੂਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। 57 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਅਨੰਤਨਾਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨੁਨਵਾਨ ਪਹਿਲਗਾਮ ਤੋਂ 48 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਅਤੇ ਗਾਂਦਰਬਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਾਲਟਲ ਤੋਂ 14 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਪਰ ਉੱਚੇ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਰੂਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ, ਆਰਾਮ ਸਥਾਨ, ਲੰਗਰ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਮੇਤ

आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं असलम बेग। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अमरनाथ यात्रा को मुल्क की रूहानी रिवायत और सकाफती इत्तेहाद को एक लाफानी बाब करार दिया है। उन्होंने अकीदतमंदों को मुबारकबाद दी है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने फ्रांस के ताजिरों और सरमायाकारों को मदऊ किया है कि वो विकसित भारत 2047 की जानिब भारत के सफर में शरीक हों। उन्होंने भारत फ्रांस दिफाई शराकतदारी को मुस्तहकम बनाने के लिए कहा है।

0: अनंतनाग जिले में ननवान पहलगाम से 48 किलोमीटर का रास्ता है और गांदरबल जिले में बालतल से 14 किलोमीटर का रास्ता है। दोनों ही रास्तों पर हुक्काम ने भरपूर सहूलियात मुहैया की हैं, जिनमें मेडिकल कैंप, कयाम की जगहें, लंगर, पीने के पानी और मौसम पर बरवक्त नजर रखने के इंतजाम शामिल हैं। हिफाजती इंतजाम भी भरपूर तरीके से किए गए ताकि यात्रा को महफूज बनाया जा सके। इसी दौरान यात्रियों का दूसरा जत्था आज सुबह जम्मू से रवाना हुआ। उम्मीद है कि यह आज बाद दोपहर वादी पहुंच जाएगा। श्रीनगर से अशफाक शाह की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फैसल खान।
1: वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल राजस्थान और गुजरात का दौरा करेंगे। राजस्थान के दौरे में वजीर आजम जोधपुर हवाई अड्डे की नई टर्मिनल इमारत का इफ्तिताह करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत से तामीरशुदा इस इमारत में सालाना 20 लाख मुसाफिरों को संभालने की गुंजाइश है। जनाब मोदी जोधपुर में नजरसानीशुदा उड़ान स्कीम का भी आगाज करेंगे। इस स्कीम का मकसद हवाबाजी के शोबे की क्यादत में तरक्की के अगले मरहले को तेज करना है। ये प्रोजेक्ट जामे और पायदार फजाई रबते को यकीनी बनाने के लिए कई अहम इकदाम पर मुश्तमिल है। वजीर आजम राजस्थान के बलोतरा में तकरीबन 1.06 लाख करोड़ रुपए मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे और कई प्रोजेक्टों का इफ्तिताह भी करेंगे। ये प्रोजेक्ट पेट्रोकेमिकल, शहरी नकलो हमल, रेलवे, सड़कों, काबिल तजदीद तवानाई और बिजली की तरसील समेत कई शोबों से वाबस्ता है। बाद में शाम को वजीर आजम गुजरात जाएंगे, जहां वो सनंद में बाहर से मंगाए गए CG सेमीकंडक्टर्स के कल पुर्जों की तरतीब और तजर्बाती मरकज का इफ्तिताह करेंगे। ये प्रोजेक्ट इंडिया सेमी कंडक्टर मिशन के तहत मंजूर शुदा इब्तदाई 4 प्रोजेक्टों में शामिल है, जिस पर 7,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की सरमायाकारी की गई है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा है कि भारत फ्रांस स्ट्रेटेजिक साझेदारी पायदार, मजबूत और इख्तिरा पर मबनी तरक्की के अगले मरहले को आगे बढ़ाने के लिए बेहतरीन बुनियाद फराहम करती है। पेरिस में भारत फ्रांस कारोबारी गोलमेज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मोहतरमा सीतारमन ने कहा कि आलमी मईशत तेजी से बदल रही है, जिसकी अहम वजूहात तकनीकी तरक्की, सप्लाई चेन में तनवो, तवानाई की मुंतकली और जोग्राफियाई और सियासी तब्दीलियां हैं। वजीर खजाना ने फ्रांस के सनतकारों और सरमायाकारों को विकसित भारत 2047 के सफर में भारत का शराकतदार बनने के लिए मदु किया। उन्होंने मुश्तरका खुशहाली के हुसूल के लिए भारत फ्रांस स्ट्रेटेजिक साझेदारी को मजीद मजबूत बनाने पर जोर दिया। मोहतरमा सीतारमन ने कहा कि भारत और फ्रांस आलमी मसनूई जहानत इको निज़ाम की तश्कील में एक दूसरे के काबिल एतमाद शराकतदार हैं। उन्होंने कहा कि यह शराकतदारी काबिल एतमाद मसनूई जहानत, डिजिटल बुनियादी ढांचे और अगले सिलसिले की जदीद टेक्नोलॉजीज के शोबों में नई सरमायाकारी और तआवुन के वसी मौके फराहम करती है। दोनों मुल्कों के दरमियान बढ़ते हुए इक्तसादी ताल्लुकात का जिक्र करते हुए वजीर खजाना ने कहा कि पिछली एक दहाई में भारत और फ्रांस के दरमियान दोतरफा तजारत दोगुना हो गई है। उन्होंने मजीद कहा कि इस वक्त भारत में तकरीबन 1,000 फ्रांसीसी कंपनियां काम कर रही हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मगरबी बंगाल कानून साज असेंबली के 9 मुंतखबा अरकान के लिए एक 2 रोजा तारुफी प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है। इसका इफ्तिताह लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने आज कोलकाता में न्यू टाउन कन्वेंशन मरकज में किया। मगरबी बंगाल के वजीर आला स्वयंदु अधिकारी, पार्लियामानी उमूर के मरकजी वजीर किरण रिजिजू और दीगर रियासती कानून साज असेंबलियों के अरकान और बहुत सी दीगर शख्सियतें इस तकरीब में शिरकत कर रही हैं। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने अपने खिताब में कहा कि कानून साज अरकान के लिए कानून साजी के अमल और निज़ाम की मुकम्मल जानकारी के साथ साथ ये लाजमी है कि वो नई टेक्नोलॉजीज, इख्तिरा, मसनूई जहानत, AI और डिजिटल टेक्नोलॉजी का मुअस्सर तरीके से इस्तेमाल करें।
2: ये समय डिजिटल का समय है, डिजिटल के नवाचार का समय है और AI टेक्नोलॉजी का भी समय है। आप देश और दुनिया की विधानसभाएं, पार्लियामेंट, उनकी डिबेट, उनकी चर्चाएं, उनके अच्छे अनुभव, उनके विचार, जनता के अच्छे कल्याण, नीतियां, कानून, ये सब आज एक प्लेटफॉर्म पर आप देख सकते हैं। आप दुनिया के बजट देख सकते हैं, देश के अलग राज्यों के बजट देख सकते हैं। हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के आग्रह पर एक प्लेटफॉर्म पर सारी देश की विधायी संस्थाओं को ला दिया है। इसलिए डिजिटल संसद में आपको संपूर्ण देश की चर्चा, डिबेट आपको वहां पर मिलेगी।
1: भारत ने ऑपरेशन एमस्तात के तहत जिलजिले से मुतासरा वेनेजुएला के लिए इंसानी हमदर्दी की इमदाद तेज कर दी है। वजारत खजाना ने तिब्बी राहत की मौजूदा कोशिशों की तस्वीरें शेयर करते हुए कहा है कि आर्मी फील्ड अस्पताल वेनेजुएला

में मुतासिरा लोगों को तिब्बी देखभाल की सहूलत फराहम कर रहा है। वेनेजुएला के कारगुजार सदर डेल्सी रेड्रिग्स ने मुल्क में 7 रोज के कौमी शोक का ऐलान किया। वेनेजुएला में 24 जून को आए शदीद जलजिले में हलाकतों की तादाद बढ़कर तकरीबन 2600 हो गई है। इसके अलावा 12,000 से ज्यादा अफराद जख्मी भी हुए हैं। 189 इमारतें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई हैं। नौजवानों के उमूर के महकमे ने आज नई दिल्ली में माई भारत की सनती तंजीमों के कॉन्क्लेव का इनेकाद किया। इस कॉन्क्लेव में एसओचेम, फिक्की, सीएआईटी और सीआईआई समेत सरकर्दा सनती तंजीमों ने शिरकत की। इस प्रोग्राम का मकसद सनती इदारों को माई भारत के निजाम से मुतारिफ कराना और सनती अंजुमनों, कॉरपोरेट इदारों और सरकारी सेक्टर की कंपनियों को इस मुहिम में शामिल होने के लिए मदऊ करना है। भारत के महकमा मौसमियात ने गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और मगरबी मध्य प्रदेश में कल तक के लिए शदीद से बहुत शदीद बारिश के पेश नज़र रेड अलर्ट जारी किया है। ये पेशगोई भी की गई है कि छत्तीसगढ़, मशरकी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में गुजरात गरज चमक के साथ छींटा पड़ेगा। स्विट्जरलैंड अल्जीरिया को 2-0 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। ये मैच कनाडा के वैंकूवर में खेला गया। और आखिर में खास खास खबरों का खुलासा एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अमरनाथ यात्रा को मुल्क की रूहानी रिवायत और सकाफती इत्तेहाद में एक लाफानी बाब करार दिया है। उन्होंने अकीदतमंदों को मुबारकबाद दी है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने फ्रांस के ताजिरों और सरमायाकारों को मदऊ किया है कि वो विकसित भारत 2047 की जानिब भारत के सफर में शरीक हों। मगरबी बंगाल में कानून साज असेंबली के 9 मुंतखब अरकान के लिए एक 2 रोजा तारुफी प्रोग्राम शुरू किया गया है। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: Water levels in major rivers have risen and the Jagburi River in Kher Taluka in Ratnagiri district has reached 4.9 meters, close to its warning level of 5 meters. Authorities are monitoring the situation. Meanwhile, as a precaution during the active monsoon season, the 5 battalion of the National Disaster Response Force has pre-positioned rescue teams across vulnerable districts in Maharashtra and Goa. Teams equipped with flood rescue equipment and trained personnel have been deployed to ensure a quick response to any rain-related emergencies. With Nivedita's report, Anuja Kumar, AIR News.
1: In the FIFA World Cup, Switzerland defeated Algeria 2-0 to reach the round of 16 in Vancouver, Canada. Switzerland will face either Colombia or Ghana on Tuesday at the same venue, aiming to reach the quarterfinals for the fourth time in their history. In another match, Spain defeated Austria 3-0 in the round of 32 at Los Angeles Stadium in Inglewood, California, to book a place in the round of 16. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi describes Amarnath Yatra as eternal chapter in spiritual tradition and cultural unity of the country, extends greetings to devotees. Finance Minister Nirmala Sitharaman invites French investors to partner with India's journey towards Vikasit Bharat 2047, calls for strengthening India-France strategic partnership. Two-day orientation program for newly elected members of Legislative Assembly begins in West Bengal. India steps up humanitarian assistance to earthquake-hit Venezuela under Operation Amistad. Nearly 2,600 people died, thousands still missing. IMD issues red alert for heavy to very heavy rainfall over Gujarat, Goa, Madhya Maharashtra, Odisha and parts of Madhya Pradesh till tomorrow. And with that, we end the midday news.
2: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री अमरनाथ जी यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में शाश्वत अध्याय बताया, श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने फ्रांस के निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। भारत फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी को मजबूत करने का आह्वान किया। पश्चिम बंगाल में विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए दो दिन का ओरिएंटेशन कार्यक्रम शुरू। भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला को मानवीय सहायता तेज की। भूकंप से लगभग 2,600 लोगों की मौत, हजारों लोग अब भी लापता। गुजरात, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिन की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे।
3: हजारों की तादाद में यात्री इस समय धार्मिक उत्साह के साथ पवित्र गुफा में भगवान शिव के आशीर्वाद लेने और शिवलिंग के दर्शन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यात्रा के दोनों रास्तों पर यात्रियों को पानी, भोजन और विश्राम स्थल उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि इस कठिन यात्रा के दौरान उनकी सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। उत्साहित यात्रियों ने सुविधाओं और व्यवस्थाओं की सकारात्मक प्रशंसा की है।
4: बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, यहाँ पे आ सकते हैं, सभी आ सकते हैं।
5: जो प्रशासन ने इंतजाम किया है बखूबी, बहुत अच्छा।
3: इस बीच आज सुबह जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक एडवाइजरी जारी करके यात्रियों से निवेदन किया है कि वो केवल अपनी पंजीकृत तिथियों पर ही यात्रा का आरंभ करें। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं रेश बाक्षा।
2: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि अमरनाथ यात्रा सबसे प्राचीन तीर्थ यात्राओं में से एक है। ये देश की आध्यात्मिक विरासत और उसकी आस्था को रेखांकित करती है। तीर्थयात्रियों को लिखे एक पत्र में श्री मोदी ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में एक शाश्वत अध्याय बताया। प्रधानमंत्री ने श्रद्धालुओं से यात्रा के दौरान 5 संकल्प लेने का भी आग्रह किया। इनमें पूरी यात्रा के

0: दौरान स्वच्छता बनाए रखना, सभी सुरक्षा और प्रशासनिक दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करना, वोकल फॉर लोकल पहल के तहत अपने यात्रा खर्च का कम से कम 10% स्थानीय उत्पादों पर खर्च करके स्थानीय अर्थव्यवस्था का समर्थन करने, एक पेड़ माँ के नाम अभियान को बढ़ावा देने के लिए रक्षाबंधन पर भाई बहन को एक पौधा उपहार में देना, ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन और विकसित भारत के दृष्टिकोण में योगदान देकर राष्ट्र प्रथम की भावना को आगे बढ़ाना शामिल है। गृहमंत्री अमित शाह ने बताया कि केंद्र सरकार ने पूरे मार्ग पर उच्च स्तरीय व्यवस्था की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत और फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। पेरिस में भारत फ्रांस व्यापार गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देश तकनीक, नवाचार, ऊर्जा और डिजिटल विकास के क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
1: श्रीमती सीतारमन ने फ्रांस की कंपनियों और निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि भारत और फ्रांस एआई के क्षेत्र में भरोसेमंद साझेदार हैं। उन्होंने आधार, यूपीआई, डिजीलॉकर और इंडिया स्टॉक जैसे डिजिटल सेवाओं का भी उल्लेख किया और कहा कि दुनिया के लगभग आधे रियल टाइम डिजिटल भुगतान भारत में होते हैं। उन्होंने कहा कि स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत का इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर वैश्विक वित्तीय केंद्र के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है और इसमें निवेश तथा वित्तीय सेवाओं के नए अवसर उपलब्ध हैं। समाचार कक्ष से अमीशा।
0: भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत मानवीय और चिकित्सा सहायता को और तेज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर राहत कार्यों की तस्वीरें साझा करते हुए बताया कि भारतीय सेना का फील्ड अस्पताल वहां प्रभावित लोगों को लगातार आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं दे रहा है। वेनेजुएला स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि दक्षिण अमरीकी देश में भारत के मानवीय राहत प्रयासों को जनता से इसकी सेवा की गुणवत्ता के लिए व्यापक प्रशंसा मिली है। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति जेल्सी रोड्रिगेज ने 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। 24 जून को देश में आए जबरदस्त भूकंप में मरने वालों की संख्या लगभग 2595 हो गई है, जबकि 12,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और 189 इमारतें नष्ट हो गई हैं। पिछले सप्ताह कैराकस के उत्तर में 7.5 और 7.2 तीव्रता के दो जबरदस्त भूकंप आए जिनसे भारी तबाही हुई। अधिकारियों ने बताया कि हजारों लोग लापता हैं और बचाव तथा राहत कार्य जारी है। भारत ने वेनेजुएला के अधिकारियों से नाविक राकेश चौहान के शव के साथ छेड़छाड़ और अंग निकाले जाने की घटना की गहन जांच की मांग की है। कैराकस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि घटना के सामने आने के बाद से ही दूतावास संबंधित स्थानीय अधिकारियों के सामने इस मामले को उठा रहा है। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाईची भारत की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट गई हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस यात्रा से भारत और जापान के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत हुई है। दोनों देशों ने साझा विकास, समृद्धि तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सहयोग बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। जापान कैबिनेट के जनसंपर्क अधिकारी ने आज भारतीय पारंपरिक अभिवादन नमस्ते के महत्व का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाईची ने भारत यात्रा के दौरान हाथ जोड़कर एक दूसरे का अभिवादन किया। सोशल मीडिया पोस्ट में जापान के अधिकारी ने बताया कि दोनों हथेलियों को जोड़कर किया जाने वाला ये अभिवादन अंजलि मुद्रा कहलाता है और यह सम्मान, विनम्रता तथा आदर का प्रतीक है। जापान के कई समाचार पत्रों और मीडिया संस्थानों ने नई दिल्ली में आयोजित 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन को प्रकाशित किया है। इनमें दोनों देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक सहित कई क्षेत्रों में बेहतर होते संबंधों को रेखांकित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाईची द्वारा शिखर सम्मेलन में द्विपक्षीय सहयोग के सभी क्षेत्रों की समीक्षा के बाद इन्हें मजबूत करने के लिए किए गए समझौतों के बाद जापान के मीडिया ने इन्हें प्रकाशित किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज कोलकाता के न्यू टाउन कन्वेंशन सेंटर में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए दो दिन के संसदीय और विधायी कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री बिरला ने कहा कि

0: बंगाल को वर्ष 2047 तक विकसित बनाने के लिए काम किया जा रहा है।
1: बंगाल की विरासत जो गौरवपूर्ण है, उस विरासत को भी पुनर्जीवित करते हुए आधुनिकता के समय नए युग की तरह 2047 तक विकसित भारत के सपनों को साकार करने के लिए बंगाल को विकसित बनाने का, बंगाल को सांस्कृतिक पुनर्जागरण, बंगाल को उद्योग व्यापार की दृष्टि से बेहतर बनाना, समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन को बदलने के लिए आप सब मिलकर काम करेंगे।
0: श्री बिरला को उद्घाटन समारोह से पहले गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1947 में बंगाल की तत्कालीन विधान परिषद में वर्तमान पश्चिम बंगाल को भारत में शामिल करने के प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। युवा मामलों के विभाग ने आज नई दिल्ली में माय भारत के उद्योग संघ सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उद्योग जगत के हितधारकों को माय भारत के इकोसिस्टम से परिचित कराना और उद्योग संघों, कॉरपोरेट तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को इस पहल में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना था। इस अवसर पर युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने में देश के युवाओं की प्रमुख भूमिका है। युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने कहा कि सरकार युवाओं के लिए चल रहे कार्यक्रमों को और प्रभावी बनाने पर काम कर रही है।
2: इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के साथ माय भारत पोर्टल के और यूथ मिनिस्ट्री के बारे में यहाँ पे मीटिंग आज हमने आयोजित की है। माय भारत प्लेटफॉर्म के साथ कैसे अलाइन कर पाए कि जिसके माध्यम से और विजिबिलिटी हमारी बढ़े और ज्यादा से ज्यादा हम डिस्ट्रिक्ट तक, विलेजेस तक ये सभी प्रोग्राम इनको लेके जाए कि जिसका ज्यादा से ज्यादा फायदा हमारे देश के युवाओं को होगा और एक अच्छा आउटपुट उसके माध्यम से हमें मिलेगा और नेशन बिल्डिंग के लिए ये हमारे यूथ आगे बढ़ के काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान और गुजरात दौरे पर रहेंगे। राजस्थान में वे जोधपुर हवाई अड्डे की नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना को सालाना 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। प्रधानमंत्री राजस्थान के बालोतरा में 1,06,000 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में 3 अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। नियुक्त किए गए अतिरिक्त न्यायाधीशों में सुनीता गंधम, अल्लापति गिरिधर और पुरुषोत्तम कुमार चिंतालापुडी शामिल हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार ऐप के माध्यम से आधार में ईमेल सीधे अपडेट करने की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई है। ये सुविधा 1 जुलाई से 6 महीने की अवधि के लिए लागू है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल एक्स

0: किया है। विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आंधी तूफान और बिजली गिरने की भी संभावना व्यक्त की है। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में आज भी तेज बारिश जारी रही। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बृहन्मुंबई नगर निगम ने अपनी आपातकालीन टीमों को अलर्ट पर रखा है।
1: सक्रिय मानसून को देखते हुए राष्ट्रीय आपदा मोचन दल NDRF की 5वीं बटालियन ने महाराष्ट्र और गोवा के संवेदनशील जिलों में राहत एवं बचाव दलों की अग्रिम तैनात की है। बाढ़ बचाव उपकरणों और प्रशिक्षित कर्मियों से बनी ये टीमें मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर, सांगली, सतारा, धाराशिव, नागपुर तथा अन्य संवेदनशील स्थानों पर तैनात की गई है, ताकि वर्षा से जुड़ी किसी भी आपत्ति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: पंजाब और हरियाणा के अधिकांश हिस्सों के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में 5 से 8 जुलाई तक तेज बारिश, बिजली और गरज के साथ तूफान की संभावना है। इसे देखते हुए चंडीगढ़ स्थित मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं सरफिरोजी।
2: फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। एक अन्य मैच में कैलिफोर्निया लॉस एंजेलिस स्टेडियम में खेले गए राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। आज अर्लिंगटन में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। मैच भारतीय समय अनुसार रात 11:30 बजे से खेला जाएगा। बेल्जियम, अमरीका और इंग्लैंड भी कल राउंड ऑफ 16 में पहुंच गए। इस बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका और भारत के बीच क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के मैचों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। ये श्रृंखला 15 से 27 अगस्त तक खेली जाएगी। पहला टेस्ट 15 अगस्त से गाल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट मैच 23 अगस्त से कोलंबो में होगा। ये श्रृंखला ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है।
0: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.4% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 291 अंक बढ़कर 77,793 पर, जबकि निफ्टी 105 अंक की वृद्धि के साथ 24,281 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री अमरनाथ जी यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में शाश्वत अध्याय बताया। श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने फ्रांस के निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। भारत फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी को मजबूत करने का आह्वान किया। पश्चिम बंगाल में विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन का ओरिएंटेशन कार्यक्रम शुरू। भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए मानवीय सहायता तेज की। भूकंप से लगभग 2,600 लोगों की मौत, हजारों लोग अब भी लापता। गुजरात, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर दिन के 2:30 हो रहे हैं और ये वक्त है कार्यक्रम एक ही कलाकार का। तो सभी श्रोताओं को आपकी दोस्त राखी का प्यार भरा नमस्कार और स्वागत है आप सबका आज के इस कार्यक्रम में। श्रोताओं, आज हम सुरों की जादुई दुनिया में उस फनकार की बात करेंगे जिसकी आवाज़ दिल के तारों को छू लेती है और उन और रूह को खुश कर देती है। इनके गीतों में जीवन के हर रंग, हर भावना और हर ख्वाब दिखाई देते हैं। इनके मधुर गानों की गूंज मन को एक अलग ही सुकून देती है। इनके खून में ही गीत संगीत बसा हुआ है।

जी हाँ श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं अमित कुमार जी की। पिता किशोर कुमार की तरह ही अमित कुमार का नाम भी भारतीय संगीत जगत में एक खास स्थान रखता है। अपनी मधुर आवाज और शानदार गानों के माध्यम से इन्होंने करोड़ों दिलों पर राज किया है। इनके जीवन और करियर की यात्रा बेहद इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग है। अमित कुमार जी के बारे में हम आपसे ढेर सारी बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं इनके फिल्म का एक प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार, और जो आज के हमारे कलाकार हैं वो हैं अमित कुमार। और अभी आप सुन रहे थे इन्हीं की फिल्म से ये गीत, ये फिल्म थी लवर्स। श्रोताओं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं।

कि आज जो हमारे ये कलाकार हैं अमित कुमार जी के बारे में हम बात कर रहे हैं, इनका जन्म आज ही के दिन 3 जुलाई 1952 को कोलकाता में किशोर कुमार और रूमा गुहा के घर अमित कुमार जी का जन्म हुआ। पिता की तरह अमित कुमार जी की माँ भी एक बंगाली सिंगर और एक्ट्रेस थी, यानी अमित कुमार को गायकी विरासत में मिली थी। अपने पिता की तरह अमित ने भी कम उम्र से ही गाना शुरू कर दिया था और वो कोलकाता में दुर्गा पूजा समारोह में गाती थी। बाद में पिता किशोर कुमार इन्हें मुंबई ले आए। किशोर कुमार ने अपने द्वारा प्रोड्यूस की गई 2 फिल्में अमित कुमार को एज ए बाल कलाकार के रूप में लिया था। पहली फिल्म थी दूर गगन के छाँव में और दूसरी फिल्म दूर का राही के लिए। एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट उन्होंने इसमें काम किया। अमित कुमार ने मैं एक पंछी मतवाला गाया, इसमें गाना गाया। इस तरह से अमित कुमार जी के करियर की शुरुआत हुई। आगे आपको इनके और भी सिंगिंग स्टोरी सुनाएंगे, लेकिन फिलहाल आप सुनिए इनके फिल्म तेरी कसम का ये हिट गीत।

श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार, और आज के जो हमारे कलाकार हैं वो हैं अमित कुमार जी। आगे हम चलते हैं और बात करते हैं 1970 का जो दशक था वो अमित कुमार के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इस साल इन्होंने बॉक्स ऑफिस को कई हिट गाने दिए। 1976 की फिल्म बालिका वधु में इन्होंने संगीतकार आरडी बर्मन का गीत बड़े अच्छे लगते हैं गाया, जिसके बाद इन्हें नेशनल फेम मिला। अमित कुमार ने आरडी बर्मन के साथ करीब 170 हिंदी गाने रिकॉर्ड किए। 1978 में इन्होंने फिल्म कस्मे वादे में आती रहेंगी बहारें गाया। इस गाने में पिता पुत्र की जोड़ी हिट रही। इसके बाद इन्होंने फिल्म चोर के घर, चोर ढोंगी, आंधी, आपके दीवाने, खट्टा मीठा, गोलमाल और बातों बातों में जैसी फिल्मों में गाना गाया। उस समय के दिग्गज सिंगर्स के बीच अमित कुमार ने अपनी आवाज़ से एक अलग पहचान बनाई। तो चलिए आपको सुनाते हैं इनकी फिल्म बातों बातों में का ये मेलोडियस सॉन्ग।

जी हाँ श्रोताओं, न बोले तुम न मैंने कुछ कहा, लेकिन आपने बहुत कुछ कहा है और आपके ढेर सारे मेल हमारे पास आ चुकी हैं, लेकिन हम आपका मेल पढ़ेंगे इस सेगमेंट के बाद। श्रोताओं, 70 के दशक के बाद 1980 का दशक जो आया था, जहां फिर अमित कुमार ने अपनी सिंगिंग द्वारा कई हिट गाने दिए। फिल्म कुर्बानी के लिए लैला ओ लैला गाना गाया, जो उस समय बहुत फेमस हुआ। इस दौर में अमित कुमार ने लता मंगेशकर, आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी जैसे दिग्गजों के साथ गाना गाया। 1981 की फिल्म लव स्टोरी के सभी गाने अमित कुमार ने गाए और लता मंगेशकर के साथ जो गीत था याद आ रही है, तेरी याद आ रही है के लिए फिल्म फेयर का पुरस्कार भी जीता। इस सफलता के बाद अमित कुमार ने राजेश खन्ना की फिल्म 50-50 और आखिर क्यों के लिए गाना गाए। अमित कुमार ने 1980 के दशक में लगभग सभी म्यूजिक डायरेक्टर्स और एक्टर्स के लिए गाना गाया। इस दौर में वो अपने पिता किशोर कुमार के बाद हिंदी फिल्मों में दूसरे सबसे पसंदीदा मेल बैक सिंगर थे। इतना ही नहीं, 1980 के दशक में के अंत में अमित कुमार ने दूरदर्शन के टीवी सीरियल जैसे चुनौती और कैंपस में भी अपनी आवाज दी। आगे आपको अमित कुमार जी के बारे में और भी रोचक जानकारियां देंगे, लेकिन फिलहाल सुनिए फिल्म लव स्टोरी का ये सुपरहिट सॉन्ग।

आकाशवाणी दिल्ली के इन द प्रेस चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार, और आज के जो हमारे कलाकार हैं वो हैं अमित कुमार जी, और मैं आपके साथ हूँ आपकी दोस्त राखी बैनर्जी। तो श्रोताओं, हम भी आपको याद कर रहे हैं और आप भी वेट कर रहे होंगे अपने मेल्स का कि हम पढ़ें उसको। तो देखिए, मेल्स में पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। ये हैं संदीप मक्कर जी, ज्योति मक्कर, और भारत कमल, पिंगावाला चौक, जालंधर, पंजाब से। और ये हैं मारहरा दरवाज़ा एटा, नबी हसन अब्बासी जी। और आगे चलते हैं ठाकुरावाला से, स्वर्ण सिंह, दलजीत सिंह, राजदीप, गुरनूर, गुलदार, अविराज सिंह। और ये हैं पीटीआई संसद मार्ग से, अनिल मोहन जी। और ये लिखते हैं कि नमस्कार राखी जी, आपके द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम बेहद पसंद आ रहा है, बधाई स्वीकार करें शानदार प्रस्तुतिकरण के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से जुड़े हुए हैं। एमएलबी रेडियो ग्वालियर से सुरेश खुराना, किरण खुराना, लव्या आरव, और एसपी, और ये है रघुनाथ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना, हर्षिता और खुशी गोस्वामी, वीरमगांव गुजरात से अजीत कुमार भावसार, प्रमिला। और ये हैं अनिल मोहन जी, और ये लिखते हैं शानदार प्रस्तुति, पहाड़गंज मुल्तानी ढांढा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक जी, नाभा जिला पटियाला पंजाब से शोमदत्त, कैरव, ज्योति रानी, गुरुमंत और गौर मनु। और ये हैं नलवेर महाराष्ट्र से पीएस नहावकर, निर्मला, विशाल, नारायण सोपान और आशीष जी। तो श्रोताओं, कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं, एक और मेल लेते हैं। ये हैं गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाद्रा दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राजा, चैतन्य मस्किन, मेघा, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना और केशु खुराना जी का। तो हम बात कर रहे थे अमित कुमार जी की। श्रोताओं, अमित कुमार जी 90 के दशक में भी बहुत सारे गानों में अपनी आवाज़ दी। 1990 में आई फिल्म बागी का गाना कैसा लगता है जबरदस्त हिट हुआ। फिर 1991 में आई फिल्म हम का गाना सनम मेरे सनम भी काफ़ी लोकप्रिय हुआ। 90 के दशक में अमित कुमार ने फिल्म घायल, सैलाब, पुलिस पब्लिक, आज का अर्जुन, 100 डेज जैसी फिल्मों के गानों में अपनी शानदार आवाज़ दी। अमित कुमार ने 90 के दशक के करीब सभी म्यूज़िक डायरेक्टर जैसे जतिन ललित और अनु मलिक जैसे टैलेंटेड लोगों के साथ काम किया। 1994 में आरडी बर्मन की मृत्यु के बाद अमित कुमार ने खुद को फिल्म इंडस्ट्री से धीरे धीरे दूर करना शुरू कर दिया। दरअसल आरडी बर्मन जी के साथ उनका बहुत ही करीबी दिल का रिश्ता था, जिसके बाद

उन्होंने लाइव स्टेज परफॉर्मेंस देना शुरू कर दिया। इस दौरान अमित कुमार ने संगीत एल्बम भी बनाए। अमित कुमार ने सिंगिंग के साथ एक्टिंग में भी हाथ आजमाया। अपने पिता किशोर कुमार के डायरेक्शन में बनी बहुत सी फिल्मों में इन्होंने काम किया। अमित कुमार ने फिल्म दूर गगन की छाव में, दूर कराही, बढ़ती का नाम दाढ़ी, चलती का नाम जिंदगी और ममता की छाव जैसी फिल्मों में एक्टिंग की। फिर 1987 में अपने पिता की मृत्यु के बाद अमित कुमार ने डायरेक्शन का काम संभाला और एक्टिंग को अलविदा कह दिया। कुल मिलाकर अमित कुमार ने अपने करियर को के हर फील्ड में काम किया। अमित कुमार जी की अगर पर्सनल लाइफ की बात करें तो इनकी वाइफ रीमा गांगुली एक क्लासिकल सिंगर हैं और आज भी अमित कुमार जी आज भी रियलिटी शो के जरिए अपनी संगीत के फील्ड्स में एक्टिव हैं। तो श्रोताओं, बढ़ते हैं कार्यक्रम के आखिरी गीत की ओर और सुनते हैं यह खूबसूरत सा गीत अमित कुमार की आवाज़ में।

हमारे कुछ श्रोताओं के और भी मेल आ गए हैं, उन्हें भी हम पढ़ लेते। मेरठ से दिग्दर्शन और कविता का, और ये है एवरग्रीन रेडियो ग्रुप बिहारी कॉलोनी से तुलसी मस्किन जी का। आपने पहले भी हमें मेल किया है, और ये हैं हमारे साथ भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा और पूजा परिहार, और ये हैं हमारे साथ साहाजी बोखरे, श्रीमती नंदा हनुमान, उत्तम जी हिंगोली महाराष्ट्र से।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ एक ही कलाकार कार्यक्रम यही समाप्त होता है। अपनी दोस्त राखी बैनर्जी को अनुमति दीजिए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि 3 बजे हम फिर हाजिर होंगे आपके मेलोडी मैटनीज के कार्यक्रम के साथ।

0: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर दिन के 3 बज रहे हैं और वक्त हो चला है आपके पसंदीदा कार्यक्रम मैटिनी मेलोडीज का। स्वीकार कीजिए अपनी दोस्त राखी बैनर्जी का प्यार भरा नमस्कार।
1: और आज मैं आपके साथ हूँ शिल्पा गोस्वामी
0: और हम दोनों आप सभी का स्वागत करते हैं आज के इस कार्यक्रम में।
1: जी बिल्कुल
0: दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारतीय सिनेमा की शुरुआत आज से लगभग 113 साल पहले 3 मई 1913 को हुई थी। तब से लेकर आज तक हमारी फिल्म इंडस्ट्री ने एक ऐसा सफर तय किया जिसने उसे दुनिया में के सबसे बड़े प्रभावशाली फिल्म उद्योगों में शामिल कर दिया। आज बॉलीवुड की चमक सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है बल्कि दुनिया के कोने कोने में इसके चाहने वाले मौजूद हैं। लेकिन इस लंबे सफर में एक दौर ऐसा भी आया जिसे भारतीय सिनेमा का गोल्डन इरा कहा जाता है। ये वो समय था जब देश ने नई नई आजादी का स्वाद चखा था और सिनेमा केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं था बल्कि समाज का आईना हुआ करता था। उस दौर की फिल्मों में देश की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियों की झलक साफ दिखाई देती थी। यही वजह है कि उस समय की फिल्में और उनके गीत आज भी लोगों के दिलों में उसी तरह से बसे हुए हैं। पिछले कई दशकों के भारतीय सिनेमा ने हमें अनगिनत यादगार कलाकार दिए। कुछ आज भी हमारे बीच हैं और कुछ अपनी कला की अमिट छाप छोड़कर यादों का हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन आज मैटिनी मेलोडीज में हम सिर्फ उन चेहरों की बात नहीं करेंगे जिन्हें आप पर्दे पर देखा करते हैं बल्कि उन अनदेखे और अनसुने सीक्रेट्स की बात करेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे रहकर इस सुनहरे दौर का को अमर कर दिया। शिल्पा, अब ये बताओ कि वो क्या था सीक्रेट?
1: तो दोस्तों, सफर के पहले पड़ाव पर हमारी पहली सीक्रेट फाइल खुलती है। राखी जी, जैसा कि एक ऐसी सच्चाई के साथ जो आज के दौर में सोचना भी मुश्किल है, आज अगर कोई नया गाना आता है तो हमें तुरंत पता चल जाता है कि इसे किसने गाया है। जी राखी जी, सही है ना?
0: बिल्कुल।
1: पर क्या आपको पता है कि गोल्डन एरा की शुरुआत में यानी 1940 के दशक में आखिरी सालों तक प्लेबैक सिंगर्स का नाम फिल्मों के ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स पर छपता ही नहीं था?
0: बिल्कुल सही बात। और वो शुरुआत हुई थी हमारी कि
1: जैसा कि आप जो बताना चाह रही हैं हमारे श्रोताओं को, उन्हें कोई क्रेडिट ही नहीं मिलता था राखी जी, क्योंकि रिकॉर्ड्स पर सिंगर के नाम की जगह उस मूवी के कैरेक्टर का नाम लिख दिया जाता था।
0: बिल्कुल सही बात।
1: और सोचो, आप गाना सुन रहे हैं पर आपको पता ही नहीं कि इसे गाया किसने है। फिर साल 1949 में एक फिल्म आई, महल, पता है आपको राखी जी?
0: बिल्कुल। और तुम्हें पता है इस फिल्म में एक गाना था, आएगा आने वाला।
1: हाँ, वही मैं आपको बताना चाह रही हूँ। जब वह गाना रेडियो पर बजा तो देश भर में हंगामा हो गया। रेडियो स्टेशन पर हजारों चिट्ठियां आने लगी कि जी यह तो जो मधुवाला पर्दे पर गाना गा रही हैं उसके पीछे असली आवाज किस खूबसूरत लड़की की है। और आप जानती हैं, पब्लिक का ऐसा क्रेज देखकर पहली बार HMV कंपनी को झुकना पड़ा।
0: और तुम्हें पता है, और उन रिकॉर्डों पर सिंगर का नाम छपा जी उस समय से। और वो नाम, पहला जो नाम था वो नाम था लता मंगेशकर का। वहीं से हमारे देश को उनकी स्वर कोकिला मिली। तो आइए सुनते हैं वही इतिहास रचने वाला सॉन्ग।
1: जी

0: सुन रहे हैं कार्यक्रम मैटिनी मेलोडीज और हमारे साथ हैं आकाशवाणी दिल्ली इंद्रप्रस्थ चैनल के साथ जुड़े हुए हैं और हम आपके साथ हैं राखी बैनर्जी
1: और मैं हूं आपके साथ शिल्पा गोस्वामी।
0: बिल्कुल, तो दोस्तों आप इस समय सुन रहे हैं गोल्डन मैटिनी मेलोडीज, आपकी दोस्त राखी बैनर्जी आपके साथ है, शिल्पा आपके साथ है और हम बात कर रहे हैं हमारी सीक्रेट फाइल की। तो अब बात करते हैं सीक्रेट फाइल की नंबर दो की। आजकल स्टूडियो में अगर बारिश की आवाज़ चाहिए या घोड़े के भागने का साउंड चाहिए तो कीबोर्ड पर एक बटन दबाओ और साउंड हाजिर। पर गोल्डन एरा में ऐसा नहीं था, तब चलता था असली दिमाग और जुगाड़। क्या आपको पता है कि उस दौर में अगर फिल्म में घोड़े के भागने का साउंड चाहिए होता था तो हमारे साउंड आर्टिस्ट दो सूखे नारियल को आपस में एक खास रिदम में टकराते थे। अगर ट्रेन की छुक छुक चाहिए होती थी तो दो रेगमाल, जो कि सैंड पेपर कहते हैं, उनको आपस में रगड़ा जाता था।
1: और राखी जी, हद तो तब हो गई जब आर डी बर्मन यानी हमारे पंचम दा ने फिल्म यादों की बारात के एक गाने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं बल्कि एक चम्मच को कांच के ग्लास पर अलग अलग तरीके से मारकर एक ऐसी धुन बनाई जो आज भी हर कोई गुनगुनाता है। सोचो, असली टैलेंट इसे कहते हैं जहां बर्तन भी संगीत बन जाते हैं।
0: बिल्कुल सही बात। और तो चलिए सुनते हैं इसी आइकॉनिक गाने को और ध्यान से सुनिएगा वो शुरुआत की टिंग टिंग वाली आवाज
1: जी।

0: आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मैटरनी मेलोडीज और मैं आपके साथ हूं आपकी दोस्त राखी बैनर्जी
1: और मैं हूं शिल्पा गोस्वामी। तो राखी, क्या बात है, ये गाना सुनकर मेरा तो मूड एकदम फ्रेश हो गया। और आपका?
0: मेरा तो बिल्कुल फ्रेश हो गया और हमारे श्रोताओं का भी हो गया होगा।
1: बिल्कुल। और देखो, अब सफर के तीसरे सीक्रेट फाइल की बात करते हैं जो जुड़ी है हमारे डांस स्टाइल से। 1950 के दौर में हमारी फिल्मों में सिर्फ क्लासिकल डांस होता था, क्यों, मानती हो ना?
0: बिल्कुल।
1: और साड़ी पहनकर बिल्कुल शर्मीले अंदाज में
0: बिल्कुल,
1: जैसे वहीदा रहमान जी थी, वैजंती माला थी, वो करती थी। और पर्दा बिल्कुल शरीफ था।
0: हाँ, पर्दा बिल्कुल शरीफ था का मतलब ये हुआ कि उस समय पर्दे में इतनी शराफत से और इतने शालीनता से डांस नंबर्स किए जाते थे। लेकिन 1960 और 70 आते आते बॉलीवुड में एक ऐसी लड़की आई जिसने स्क्रीन पर आग लगा दी। उसका नाम था हेलेन। हेलेन ने बॉलीवुड में कैबरे और रॉक एंड रोल डांस का नया ट्रेंड शुरू किया। साड़ी की जगह ग्लैमरस वेस्टर्न फ्रिंज ड्रेसेस ने ले ली थी। म्यूजिक डायरेक्शन जैसे ओपी नैयर और आरडी बर्मन ने उनके लिए ऐसी फास्ट बीट्स वाले जैज म्यूजिक बनाया जिसे सुनकर लोग सिनेमा हॉल्स में ही अपनी सीटों पर खड़े होकर नाचने लगते। यह हमारे सिनेमा का वो रूप था जहां इंडियन क्लासिकल और वेस्टर्न पॉप का एक ऐसा धमाकेदार मिक्स हुआ जो पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। तो चलिए थोड़ा झूम लेते हैं हेलेन के सुपरहिट ट्रैक पर। वो ट्रैक कौन सा है ये बता?
1: तीसरी मंजिल।
0: और हम चाहेंगे कि आप भी अपने अपने घर में इस गाने पे जरूर झूमिएगा।
1: और राखी, यहाँ पर हम दोनों झूमते हैं।
0: बिल्कुल।

0: श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं मैटिनी मेलोडीज।
1: राखी, फुल एनर्जी के इस डांस नंबर के बाद चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक ऐसी पहचान की जो हमारे सामने तो थी पर हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया उस पर। हम सब ने अमिताभ बच्चन का वो मशहूर गाना तो सुना ही है, माय नेम इज एंथनी गोल्ड सर्विस, ठीक है, बट हम सबको लगता है कि यह बस एक मजाकिया गाना है और राखी एंथनी एक इमेजिनरी कैरेक्टर है, पर दोस्तों सच इससे बिल्कुल अलग है।
0: बिल्कुल सही बात शिल्पा, एंथनी गोंजाल्विस कोई फिल्म का कैरेक्टर नहीं था बल्कि गोल्डन एरा के एक बहुत बड़े रियल लाइफ संगीतकार और वायलिनिस्ट थे। उन्हें म्यूजिक अरेंजर भी कहा जाता था, यानी आम भाषा में समझे तो म्यूजिक डायरेक्टर धुन बनाता है, पर उस धुन में कौन सा इंस्ट्रूमेंट कब बजेगा, वायलिन कब बजेगा, गिटार कब रुकेगा, ये सब अरेंजर तैयार करता है।

0: आए जब चाहे चली आए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज,
0: माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस।
2: रियली?
0: राइट राइट।

0: तो दोस्तों, हमारा जो सुनहरा दौर था सिर्फ हमारा नहीं था, पूरी दुनिया उसकी दीवानी थी और आज भी है। इसी के साथ ही अपनी दोस्त राखी बैनर्जी को अनुमति दीजिए और हमारे
1: और शिल्पा गोस्वामी को भी अनुमति दीजिए।
0: धन्यवाद।
2: Such extenuating circumstances coerce me to preclude you from such extravagance.
3: What?

0: गोली नंबर 420.
1: एक्सक्यूज मी प्लीज.
0: माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस.
2: ओह माय.
0: राइट. मैं दुनिया पे अकेला हूँ.
1: यू सी द कोएफिशिएंट ऑफ द लीनिया इज जक्सटापोजिशन्ड by the hemoglobin of the atmospheric pressure in the country.

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मैटिनी मेलोडीज, यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। दिन के 3:30 हो रहे हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम उर्दू मजलिश।

인투텔리 광보电台 听众朋友们, 现在我们播送 Justin 唱的 Cassie 民间歌曲, 请收听。

产。印度的里广播电台听众朋友们，现在我们播送印度著名的女士歌手苏尼迪·乔汉唱的歌曲，请各位欣赏。

0: खेल खिलाड़ी खेलों का आईना।
1: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खेल खिलाड़ी कार्यक्रम में। आज मैं हूं आपके साथ दीपिका जसवाल और मेरे साथ हैं
2: अभिनव कुमार झा। नमस्कार श्रोताओं,
1: और खेल खिलाड़ी में जानेंगे आज क्या है खास। रोज की तरह शुरुआत होगी फीफा वर्ल्ड कप के रोमांचक मुकाबलों से, और इसके अलावा आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल्स भी खेले जा चुके हैं, उस पर रिपोर्ट देंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले दूसरे टी20 मैच का पूर्वावलोकन भी आप इस कार्यक्रम के दौरान सुनेंगे। साथ ही साथ कैनेडा ओपन, विंबलडन और बास्केटबॉल स्मैश और स्क्वैश के अलावा बैडमिंटन में घरेलू टूर्नामेंट्स के लिए पॉइंट सिस्टम्स में जो बदलाव किए गए हैं उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फीफा वर्ल्ड कप से।

0: जैसा कि आप लोगों ने धुन से अंदाजा लगा ही लिया होगा, हम बात करेंगे फीफा विश्व कप 2026 की, जहां बीते दिन राउंड ऑफ 32 के तीन बड़े मुकाबले खेले गए। पहला मुकाबला स्पेन और ऑस्ट्रिया के बीच खेला गया, जिसमें यूरोपीय चैंपियन स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में अपनी जगह पक्की कर ली। लॉस एंजलस स्टेडियम में खेले गए इस एक तरफा मैच में स्पेनिश टीम की ओर से फॉरवर्ड मिकेल ओयारजाबाल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दो बेहतरीन गोल दागे, एक 36वें मिनट में और एक 89वें मिनट में। वहीं मैच का दूसरा गोल 66वें मिनट में पेड्रो पोरो ने एलेक्स बाइना के पास पर हेडर के जरिए किया, जो उनका पहला सीनियर अंतरराष्ट्रीय गोल भी था।
1: Position for Porro on the six-yard line, heading down past Schlager. Easiest of goals, similar to the first. They make it two. That is what Spain is all about.
0: मुख्य कोच लुइस डे ला फुएंते के मार्गदर्शन में स्पेन ने पूरे मैच में अपना दबदबा बनाए रखा और ऑस्ट्रियाई टीम को वापसी का कोई मौका नहीं दिया। इस ऐतिहासिक जीत के साथ स्पेन ने अपने नॉकआउट के सूखे को खत्म कर दिया। बात करते हैं राउंड ऑफ 32 के एक और मुकाबले की, जो पुर्तगाल और क्रोएशिया के बीच खेला गया। बेहद रोमांचक और ऐतिहासिक मुकाबले में पुर्तगाल ने क्रोएशिया को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में अपनी जगह पक्की कर ली। टोरंटो स्टेडियम में खेले गए इस मैच के पहले हाफ में दोनों टीमें कोई गोल नहीं कर सकीं, लेकिन दूसरे हाफ के 53वें मिनट में इवान पेरिच ने शानदार गोल कर क्रोएशिया को 1-0 की बढ़त दिला दी।
2: Back post, Stanisic for the cross, it's going to come to Perisic.

0: scored! Delivering a big, big moment for this Croatia team.
1: इसके बाद पुर्तगाल ने वापसी के लिए दबाव बनाया और 68वें मिनट में कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने पेनल्टी को गोल में बदलकर स्कोर 1-1 से बराबर कर दिया। इस गोल के साथ रोनाल्डो विश्व कप नॉकआउट इतिहास में गोल करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए। मैच के आखिरी पलों में दोनों टीमों के बीच जबरदस्त संघर्ष देखने को मिला और 94वें मिनट में सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी गोंसालो रामोस ने राफेल लियाओ के क्रॉस पर बेहतरीन हेडर के जरिए गोल दागकर पुर्तगाल को 2-1 से आगे कर दिया। मैच के बिल्कुल अंतिम क्षणों में क्रोएशिया के जोस्को ग्वार्डियोल ने गेंद को नेट में डाल दिया था और ऐसा लगा कि मैच एक्स्ट्रा टाइम में जाएगा, लेकिन बेहद करीबी VAR रिव्यू के बाद उसे ऑफसाइड करार दिया गया। इस हार के साथ क्रोएशिया दिग्गज लुका मॉड्रिच के अंतिम विश्व कप का सफर समाप्त हो गया, जबकि पुर्तगाल अब प्री क्वार्टर फाइनल में स्पेन से भिड़ेगा। अब बात करते हैं राउंड ऑफ 32 के एक और मुकाबले की, जो भारतीय समय अनुसार आज सुबह खेला गया। ये मुकाबला स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया के बीच में हुआ। स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। वैंकूवर के बीसी प्लेस स्टेडियम में खेले गए इस रोमांचक नॉकआउट मैच में स्विट्जरलैंड ने शुरुआत से ही अपनी पकड़ मजबूत रखी। मैच के 10वें मिनट में ही युवा खिलाड़ी जोहान मंजाबी के शानदार पास पर ब्रिल एम्बेलो ने गोल कर स्विट्जरलैंड को 1-0 की शुरुआती बढ़त दिला दी। इसके बाद दूसरे हाफ की शुरुआत होते ही 46वें मिनट में डेन एंडॉय ने दूसरा गोल दाग कर अल्जीरिया की वापसी की उम्मीदों को पूरी तरह खत्म कर दिया। अल्जीरिया के कप्तान रियाद महरेज और उनकी टीम ने वापसी के कुछ प्रयास जरूर किए, लेकिन वे स्विस टीम के मजबूत रक्षात्मक घेरे को भेदने में नाकाम रहे। इस ऐतिहासिक जीत के साथ स्विट्जरलैंड ने विश्व कप इतिहास में साल 1938 के बाद अपनी पहली नॉकआउट जीत दर्ज की है, जिससे उनका 88 साल का लंबा इंतजार खत्म हो गया। अब बात राउंड ऑफ 32 में आज खेले जाने वाले मुकाबलों की। भारतीय समय अनुसार आज देर रात 11:30 बजे ऑस्ट्रेलिया बनाम मिस्र का मुकाबला होगा। ईरान के साथ ड्रॉ के बाद मिस्र ने ग्रुप जी में रनर अप के तौर पर लास्ट 32 में अपनी जगह पक्की कर ली। इससे पहले उन्होंने न्यूजीलैंड को हराया था और बेल्जियम के साथ पहला मैच ड्रॉ खेला था। इस मैच से पहले ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए सलाह का शानदार टैलेंट और उनकी पहचान चर्चा का मुख्य विषय रही। ऑस्ट्रेलियाई नॉकआउट राउंड में पहली बार जीत हासिल करने की कोशिश कर रहा है। ऑस्ट्रेलियाई टीम अपने इतिहास में तीसरी बार और लगातार दूसरे वर्ल्ड कप में ग्रुप स्टेज से आगे बढ़ी है। इससे पहले 2022 में कतर में हुए वर्ल्ड कप में पूर्व कोच ग्राम अर्नॉल्ड की देखरेख में टीम लास्ट 16 में अर्जेंटीना से हार कर बाहर हो गई थी, जो बाद में चैंपियन बनी। अगला मुकाबला भारतीय समय अनुसार रात 3:30 पे अर्जेंटीना और कैप वर्दे का होगा। लियोनेल मेसी पर एक बार फिर अर्जेंटीना की उम्मीदों का दारोमदार होगा। शानदार फॉर्म में चल रहे 39 वर्षीय मेसी विश्व कप में अब तक 6 गोल दाग चुके हैं। उनके मैजिक से अर्जेंटीनी टीम जीत की हैट्रिक के साथ नॉकआउट में पहुंची है। अब राउंड ऑफ 32 में गत चैंपियन के सामने करीब 5.5 लाख की आबादी वाले कैप वर्दे की टीम होगी। उसके 40 वर्षीय गोलकीपर वोजीना के अभेद्य दीवार को भेदना अर्जेंटीना के लिए बड़ी चुनौती होगी। पहली बार विश्व कप में खेल रहा कैप वर्दे नॉकआउट में जगह बनाने वाला सबसे छोटा देश है। टीम के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, वे बिना किसी दबाव के मैदान में उतरेगी और इस बड़ी चुनौती का पूरा आनंद लेगी। राउंड ऑफ 32 में घाना का सामना करते हुए कोलंबिया अपने अब तक के सबसे मजबूत ग्रुप स्टेज प्रदर्शन को और बेहतर बनाने की कोशिश करेगी, लेकिन उनके रास्ते में एक जाना पहचाना चेहरा खड़ा है, उनके पूर्व कोच कार्लोस क्विवरोज़।

पुर्तगाली कोच क्विरोज ने 2019 से 20 तक कोलंबिया को कोचिंग दी थी, लेकिन उरुग्वे और इक्वाडोर से वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग मैचों में बुरी तरह हारने के बाद उन्होंने टीम छोड़ दी थी। अब वह घाना को टूर्नामेंट की सबसे अच्छी तीसरे स्थान वाली टीमों में से एक के तौर पर नॉकआउट स्टेज में पहुंचाने के बाद अपनी पुरानी टीम का सामना करेंगे, जहां घाना ग्रुप एल से इंग्लैंड और क्रोएशिया के बाद 4 पॉइंट के साथ आगे आई है, वहीं कोलंबिया ग्रुप के में बिना कोई मैच हारे आगे बढ़ी। अपने आखिरी ग्रुप मैच में बिना किसी गोल के रोमांचक ड्रॉ के बाद वे पुर्तगाल से ऊपर रहे। नेस्टर लॉरेंजो की कोलंबियाई टीम ने चुपचाप टूर्नामेंट की सबसे प्रभावशाली टीमों में अपनी जगह बना ली है। उन्होंने मजबूत डिफेंस के साथ साथ ऐसे आक्रामक फुटबॉल का मेल बिठाया है जिसकी बदौलत वे उस ग्रुप में टॉप पर रहे जिसे कई लोग सबसे मुश्किल ग्रुप में से एक मानते थे। कोलंबिया और घाना का ये मुकाबला भारतीय समय अनुसार कल यानी शनिवार सुबह 7 बजे खेला जाएगा। इन 3 मुकाबलों के साथ ही फीफा विश्व कप में राउंड 32 के मुकाबलों का समापन हो जाएगा, जिसके बाद राउंड 16 के मुकाबले शुरू होंगे।

0: फीफा के बाद चलते हैं क्रिकेट के मैदान में और आईसीसी T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल्स दोनों हो चुके हैं और दूसरे सेमीफाइनल हुआ इंग्लैंड और अफ्रीका के बीच, जहां इंग्लैंड को जीत हासिल हुई। 20 ओवर में 169 रन बनाए और दक्षिण अफ्रीका ने 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 129 रन बनाए और परिणाम ये रहा कि इंग्लैंड 40 रन से विजयी होगी। दक्षिण अफ्रीका की कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। शुरुआत में यह निर्णय बिल्कुल सही साबित हुआ। इंग्लैंड की शुरुआत जो थी वो, इंग्लैंड की अगर बात करें हम बैटिंग की, तो पहली गेंद पर ही एमी जॉन्स आउट हो गई और डैनी वॉर्ड जी जल्दी पवेलियन लौट गई। एलिस कैप्सी भी ज्यादा देर नहीं टिक सकी। महज 23 रन पर 3 विकेट गिरने के बाद इंग्लैंड मुश्किल में था और तभी कप्तान नेट स्कीवर बर्न्ट और अनुभवी हीथर नाइट ने जिम्मेदारी संभाली। दोनों ने चौथे विकेट के लिए 133 रन की रिकॉर्ड साझेदारी की, जो महिला T20 विश्व कप के नॉकआउट मुकाबलों की सबसे बड़ी साझेदारी थी। और नेट स्कीवर बर्न्ट ने 75 रन बनाए 47 गेंदों में, जिसमें 11 चौके और एक छक्का शामिल था। और इनके साथ देने वाली हीथर नाइट ने 58 रन बनाए 37 गेंदों पर और ये इन दोनों की साझेदारी बनी 133 रनों की, जो कि इतिहास दर्ज हो गया इस साझेदारी से। और क्या कहते हैं नेट स्कीवर बर्न्ट अपने इस प्रदर्शन पर और साथ ही साथ प्लेयर ऑफ द मैच बनने पर। और दोनों की साझेदारी जो 133 रन की बनी थी, इंग्लैंड ने अंतिम ओवरों में विकेट गंवाए लेकिन चुनौतीपूर्ण 169 रन का स्कोर खड़ा कर दिया। अब दक्षिण अफ्रीका की गेंदबाजी पर अगर हम ध्यान दें तो शबनीम इस्माइल जिन्होंने 2 विकेट बनाए और नॉनकुलेको मलाबा जिन्होंने 2 विकेट लिए और उन्हीं के साथ मरीजन कैप ने भी 1 विकेट लिया। शबनीम इस्माइल ने इस मैच में महिला T20 विश्व कप इतिहास की 50 विकेट लेने वाली पहली गेंदबाज बनने का रिकॉर्ड हासिल किया। दक्षिण अफ्रीका की अगर बैटिंग पारी की बात करें तो 170 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने संभल कर शुरुआत की और लॉरा वॉल्वर्डर्ट और तस्मिन ब्रिट्स ने पहले विकेट के लिए 43 रन जोड़े, लेकिन कप्तान वॉल्वर्डर्ट के आउट होते ही इंग्लैंड ने मैच पर पकड़ मजबूत कर ली। इसके बाद लगातार विकेट गिरते रहे। तस्नीम ब्रिट्स ने 51 रन बनाए 45 गेंदों पर और लॉरा वॉल्वर्डर्ट काफी उपयोगी शुरुआत करी। अन्य बल्लेबाज बड़ी साझेदारी नहीं बना सके। ब्रिट्स ने अकेले संघर्ष किया लेकिन उनके आउट होते ही दक्षिण अफ्रीका की उम्मीदें भी खत्म हो गई। पूरी टीम 20 ओवर में 129 रन बनाकर आउट हो गई 8 विकेट के नुकसान पर। और इंग्लैंड की बल्लेबाजी पर अगर ध्यान दें, गेंदबाजी पर अगर ध्यान दें तो लॉरेन बेल 2 विकेट, चार्ली डीन 2 विकेट, लिंसी स्मिथ ने 1 विकेट और फ्रेया कैंप ने 1 विकेट लिया। सोफी एक्लिस्टन ने भी 1 विकेट लिया। इंग्लैंड ने शानदार फील्डिंग और अनुशासित गेंदबाजी से दक्षिण अफ्रीका को कभी मैच में लौटने का मौका नहीं दिया। तो क्या कहते हैं दक्षिण अफ्रीका की टीम के कोच, आइए सुनते हैं।
1: Not trying to take anything for granted. I think if you get to the semis, you must have done something right. And I think we did do something right. Maybe not to the best way in terms of how we wanted to do it. But at the end of the day, we want to get World Cup wins, and we did get that. But I think today, you got to give credit to England. I think they were really good. They're incredible. And to be fair, 2 of the best teams in the tournament are in the final.
0: ये थे साउथ अफ्रीका टीम के कोच मंडला मशीलाई। और इस मैच में जीत मिली इंग्लैंड को और शानदार पारी खेली इंग्लैंड की कैप्टन नेट स्कीवर बर्न्ट ने और साथ ही साथ इन्हें प्लेयर ऑफ द मैच भी घोषित किया गया। तो आइए अब सुनते हैं क्या कहते हैं कैप्टन।
2: What we've been able to do as a team. So, yeah, I suppose trying to live up to the 3 games that I missed. And, yeah, I suppose still have an impact as a leader and as a cricketer. So, yeah, managed to sort of put those thoughts to bed, you know, for the warm-up starting. And I suppose it's the sort of moment where you switch on to game mode and, yeah, get into the day. So I'm just so excited and proud of what I've been able to do today.
3: और अब क्रिकेट की बात को ही आगे बढ़ाते हैं श्रोताओं, और अब बात करते हैं भारत और इंग्लैंड के बीच पांच मैचों की जो T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला कल यानी शनिवार को 4 जुलाई को मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रेफर्ड मैदान पर शाम 7 बजे से खेला जाएगा। सीरीज का पहला मैच बारिश के कारण बेनतीजा रहा था, जिसमें

0: होता है, क्योंकि इस पे बहुत मेहनत और एक भाव वो जो बनाने वाला डालता है इतने प्यार से, उसके अंदर जो छोटी छोटी आँख कान नाक और उसके अंदर जो दर्शाते हैं ना, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो उसमें इतनी महत्वपूर्ण होती है, तो इसका कोई मोल नहीं है। बस आप, हम यही आशा करते हैं कि हम जो आज हमारे जो संस्कृति हमको मिला है, ये हमारी आने वाली भावी पीढ़ी को भी देखने को मिले, और ये हमारी संस्कृति की बहुत बड़ी देन है और इसका कोई मोल नहीं है। तो इस हस्तशिल्प को और लघु कला को हमेशा आगे बढ़ाने में हम सब भारतीयों का भागीदारी होनी चाहिए।
1: बिल्कुल। और अब सुनवाते हैं आपको होशियारी चौहान की आवाज़ में ये रागनी।

0: मेरे मत ना पकड़े केस पड़ जाएंगे भारी। अभी आप सुन रहे थे रागनी होशियारी चौहान की आवाज़ में, और इस रागनी में जो बात की गई थी, दो द्रौपदी कह रही है दुशासन और दुर्योधन से कि जो तुमने आज मेरे केस पकड़ के जो मुझे भरी सभा में लाया, ये तुम्हें बहुत भारी पड़ेंगे। क्योंकि द्रौपदी ने भी ये प्रतिज्ञा ली थी कि वो अपने अपमान का जब तक बदला नहीं लेगी तब तक वो अपने केस नहीं बांधेगी, और फिर इसी का अंजाम था कि महाभारत का युद्ध हुआ और कौरवों का नाश हुआ और तब द्रौपदी की प्रतिज्ञा पूरी हुई।
1: और प्रियंका बहन, इसी के साथ हम एक खास योजना के बारे में बताएंगे, क्योंकि हमारी सरकार निरंतर ये प्रयास करती रहती है कि हमारे भारतवासियों में कहीं ना कहीं कुछ उनको लाभप्रद ऐसी कोई योजनाएं उनकी लाइफ को सिक्योर कर सके। जैसे कि हमारी एक योजना है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जो कि इतनी फायदेमंद है, अगर इसका, क्योंकि एक टर्म प्लान कवरेज करती है और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि समाज के आर्थिक रूप से जितने भी पिछड़े वर्ग हैं उनको कहीं से भी न्यूनतम तरीके से भी अगर उनको ऐसी योजनाओं से फायदा मिल सकता है तो वो उन्हें मिलना चाहिए। और इसके बारे में जानकारी आपको पोर्टल से भी मिल सकती है और हमारे कार्यक्रम के माध्यम से भी मिलती रहती है। इसकी क्या क्या जो जरूरी रिक्वायरमेंट्स है, मतलब क्या क्या जरूरी है पत्राचार जो चाहिए उसके अंदर, पॉलिसी में प्रवेश लेने के लिए समय कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए, जबकि प्रवेश के समय ज्यादा से ज्यादा आयु 50 वर्ष की होती है जो सीमित रखी गई है खासकर, तो इसी को आगे, और भी यही कि पॉलिसी के लाइफ कवरेज आयु ज्यादा से ज्यादा 55 होती है। प्रधानमंत्री बीमा योजना का जो नया नवीनीकरण है उसमें हर वर्ष किया जा सकता है इसको, और ये पूरा कवरेज लेती है कि साल में एक ही बारी जो इस तरह का इस प्लान से आप जुड़ सकते हैं।
0: बिल्कुल, इसमें 1 जून से 31 मई तक का एक पूरे साल का आपका टर्म प्लान होता है। जैसे कि हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके लिए हम गाड़ी का बीमा कराते हैं, हम अपनी सेहत का भी बीमा कराते हैं हेल्थ इंश्योरेंस के रूप में, ऐसे ही हमारी लाइफ इंश्योरेंस के रूप में हम प्रधानमंत्री

जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ ले सकते हैं। इसमें जो भी नॉमिनी होता है, अगर जो पॉलिसी धारक है, अगर उसकी किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है तो नॉमिनी को 2 लाख तक का वित्तीय कवर इसमें दिया जाता है और इसमें प्रीमियम भी बहुत ही कम है। इसमें 500 रुपये प्रति वर्ष से भी कम का प्रीमियम आपको भरना होता है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि समाज के हर वर्ग को बीमा से जोड़ा जाए ताकि कोई भी इस तरीके की समस्या आने पर परिवार को संभलने का मौका मिले और आर्थिक रूप से उन्हें सहायता दी जा सके। तो अगर अभी तक आपने प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना का लाभ नहीं लिया है तो आप इस योजना से जरूर जुड़िए। इसे आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं या ऑफलाइन माध्यम से भी ले सकते हैं। इसके लिए आपके पास बैंक खाता होना चाहिए और आपका आधार कार्ड होना चाहिए और फिर बड़े ही आसान तरीके से आप अपने आप को पंजीकृत कराकर इस योजना का लाभ ले सकते हैं बहुत ही कम प्रीमियम दर पर। तो जरूर हम उम्मीद करते हैं कि आप सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इसका लाभ जरूर लेंगे। और अब आपको सुनवाते हैं राजेश कुमार अट्टा की आवाज में ये रागनी।

0: राम संसार कार्यक्रम अब यहीं समाप्त हुआ। कार्यक्रम सुनने वाले सभी भाई बहनों को
1: राम राम।
0: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पराशर और संयोजक थे शिवनंदन लाल।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम संसार, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। 7 बजने को है, अब सुनिए हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। भारत ने स्पष्ट किया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करेगा तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में ये जानकारी दी।
1: India's position on the Indus Waters Treaty.
2: सिंधु जल संधि पर भारत का रुख पहले की तरह स्पष्ट है। पाकिस्तान के लगातार सीमा पार आतंकवाद को मदद देने के जवाब में सिंधु जल संधि को रोक दिया गया था। पाकिस्तान को विश्वसनीय तरीके से सीमा पार आतंकवाद को मदद देना बंद करना पड़ेगा।
0: तीस्ता नदी के समग्र प्रबंधन और पुनरुद्धार परियोजना पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में भारत की विकास परियोजनाएं दोनों देशों के बीच तय सहमति के आधार पर चलती हैं और समय समय पर उनकी समीक्षा की जाती है। वेनेजुएला से भारत लाए गए एक भारतीय नाविक के शव से अंग निकाले जाने की खबरों पर उन्होंने कहा कि भारत ने इस मामले को वेनेजुएला सरकार के सामने उठाया है। भारत ने इस मामले की जल्द और निष्पक्ष जांच करने को कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया में रहेंगे। मेलबर्न में श्री मोदी भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। श्री मोदी न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों की क्षमता को बढ़ाने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को अपनी मंजूरी दी है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार सेना के लिए आकाश तरंग इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली, पैदल सेना के लिए टैंक रोधी मिसाइल प्रणाली, मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली, बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली, टैंकों के लिए सक्रिय सुरक्षा प्रणाली और जेट आधारित कामिकाजे ड्रोन प्रणाली की खरीद को मंजूरी दे दी गई है। नौसेना के लिए मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन, जहाज से संचालित मानव रहित हवाई प्रणाली और इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम के परीक्षण के लिए भूमि आधारित सुविधा स्थापित करने को भी स्वीकृति दी गई है। वायुसेना के लिए अधिक ऊंचाई पर लंबे समय तक उड़ान भरने वाले फिक्स्ड विंग प्लेटफॉर्म और अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद को भी मंजूरी दे दी गई है। पंचायती राज मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया गया। 16वें वित्त आयोग ने ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 4,35,236 करोड़ रुपए की अनुशंसा की है। ये 15वें वित्त आयोग की तुलना में लगभग 84% अधिक है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश में तोतापुरी आम उत्पादक किसानों की समस्याओं के आकलन के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति के गठन का निर्देश दिया है। श्री चौहान ने कहा कि तोतापुरी आम उत्पादकों की आय और उनकी आजीविका की रक्षा करना सरकार की प्राथमिकता है। बंबई शेयर

0: रडार का संवेदी सूचकांक आज 262 अंक बढ़कर 77,774 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 95 अंक की बढ़त के साथ 24,271 पर दर्ज हुआ। मौसम विभाग ने कल तक गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आंधी तूफान के साथ बिजली गिरने की आशंका है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में रात 11:30 बजे ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। एक अन्य मैच में तड़के 3:30 बजे अर्जेंटीना का मुकाबला केप वर्डे से होगा। इससे पहले स्पेन, पुर्तगाल और स्विट्जरलैंड ने अंतिम 16 में प्रवेश कर लिया है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। 7:05 हो चुके हैं। अब सुनिए कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को
1: राम राम।
0: देखिए, मौसम के अनुसार अपनी सेहत और अपने खान पान का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। और अभी देख रहे हैं हम कि ऐसा मौसम हो रहा है, कहाँ पे कहीं पे बारिश है, कहीं पे गर्मी है और पसीने नहीं रुक रहे हैं। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि तो हम ऐसे पेय पदार्थों को अपने खान पान में शामिल करें जिससे कि हमारी जो बॉडी है उसकी इम्यूनिटी बनी रहे और पानी की कमी शरीर में बिल्कुल भी ना हो। अगर हम ऐसी एक ड्रिंक की बात करें तो भाई सफ़ेद पेठा जो होता है ना, वो फाइबर से भरपूर होता है और उसको पीने के बाद आपको एनर्जी भी महसूस होगी, साथ साथ आपका पेट भी बहुत अच्छी तरह से साफ होगा। अगर सुबह खाली पेट आप इसका सेवन करते हैं तो इसके लाभ और भी अधिक आपको मिलेंगे। इसमें फाइबर की मात्रा तो होती ही है, साथ ही साथ इसे कहते हैं कि भाई ये आपकी बॉडी को डिटॉक्स कर देता है और हानिकारक जो टॉक्सिन होता है उसको शरीर से बाहर निकालता है और पाचन तंत्र को हमारे मजबूत बनाता है। इसके साथ साथ एसिडिटी और अल्सर की समस्या अगर आपको है तो उसमें भी इसके परिणाम बहुत ही बढ़िया देखे गए हैं। इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है और इसका सेवन करने से इसकी तासीर ठंडी होती है तो हमारे जो शरीर होता है उसमें पेट को हमारे ठंडक मिलती है। और हर तरीके से इसे कहते हैं भाई बहुत ही अच्छा इसको ड्रिंक बताया गया है, तो इसका सेवन आप ज़रूर कीजिए। इसमें 80% तक पानी ही होता है। इसके जूस का अगर आप सेवन करते हैं तो निश्चित तौर पे आपको अच्छे स्वास्थ्य लाभ मिलेंगे।
1: बिल्कुल सही कहा प्रियंका, क्योंकि जो वैज्ञानिकों के भी तथ्य हैं वो यह है कि स्वास्थ्य और भोजन के बीच अटूट रिश्ता होता है, लेकिन यह रिश्ता तभी तक ही कायम रह सकता है जब हमें ये पता हो कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, खास करके मौसम के अनुसार, क्योंकि मौसमी सब्जी फल जो भी चीज़ें होती हैं ये हमारे लिए कहीं ना कहीं प्रकृति से बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है कि मौसम के अनुसार अगर हम फल सब्जी खाते हैं तो हमारे बॉडी टेम्परेचर को भी बहुत संतुलित रखता है। हमारे जो छोटी मोटी चीज़ें जो हमारे शरीर के अंदर जो हमको पता नहीं होती है, हिडन जो गुप्त बीमारियां होती है उनसे लड़ने की शक्ति देता है। हरी सब्जियां हो गई या फल हो गए, उसका जूस लेना। अब जैसे मौसम थोड़ा मिक्स हो गया है, जैसे प्रियंका बहन ने भी बात करी कि अभी मौसम का थोड़ा सा मिला जुला सा है, कभी गर्मी लग रही है कभी बारिश का जैसा लग रहा है, तो ये तापमान जो है ना वो बहुत ही अच्छा नहीं है क्योंकि इससे हमारे बॉडी का जो सिस्टम होता है ना वो बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है।
0: और भाई गाँव की बात करें तो गाँव का तो देसी खाना होता है, दूध दही का खाना, और रात को गर्म दूध पीते हैं, सुबह लस्सी पीते हैं, तो ऐसा खान पान सादा खान पान होता है। तभी तो हमारे जो किसान भाई होते हैं वो इतनी एनर्जी के साथ अपने खेतों में काम करते हैं। और जिस तरह से हमें अपने खान पान का ध्यान रखना होता है वैसे ही जो हमारी फसल है उसमें पोषक तत्वों का प्रबंधन हम कैसे करें जिससे कि हमें अच्छा उत्पादन मिल सके और हमारी लागत भी कम आए, हम ज़रूरत के अनुसार ही अपने उर्वरकों का इस्तेमाल करें, इस जानकारी के लिए हम एक बातचीत आपके लिए लेकर आए हैं जिसका विषय है फसलों में एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन। इसमें जानकारी दे रहे हैं संजय कुलश्रेष्ठ और इनसे बातचीत कर रहे हैं पीएस भाटी। तो सुनते हैं ये बातचीत।
2: किसान बहनों भाइयों, अपनी जमीन से ज्यादा उत्पादन ले सकें इसके लिए आपको कई तरह के प्रबंधन करने पड़ेंगे। अभी खरीफ की फसल की शुरुआत हो चुकी है, कुछ किसान भाई बुआई कर रहे हैं, कुछ भाइयों ने बुआई कर दी है। फसलों में एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन कैसे करें, विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं श्री संजय कुलश्रेष्ठ जी, कार्यकारी निदेशक विपणन है इफ्को में। संजय जी, आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इफ्को किसानों की संस्था है और किसानों के हित में समय समय पर काम करती रहती है और किसानों को जागरूक भी करती है। तो किस तरह का आपका अभियान है जिससे के कम से कम रासायनिक खाद का प्रयोग किसान करें और ज्यादा से ज्यादा उत्पादन ले सके?
3: नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपको आज ये बताना चाहता हूं कि इफ्को जो हमारी किसानों की संस्था है, इसका मुख्य उद्देश्य हर रूप में किसानों की सेवा करना है। जो विश्व की अग्रणी रासायनिक खाद बनाने की संस्था है वो आज देश के सबसे अच्छे जैव उर्वरक बनाती है, जैव अपघटक बनाती है, नए नए तरह के जैव स्टिमुलेंट्स बनाती है, विदेशों की तकनीक लाकर नए नए प्रकार के आपको वाटर सोल्युबल फर्टिलाइजर्स दे रही है। और सबसे बड़ी बात, इफ्को ने आज हजारों करोड़ रुपया खर्च करके विश्व की नवीनतम टेक्नोलॉजी को लाया और अगली पीढ़ी के उर्वरक नैनो फर्टिलाइजर आपके लिए उपलब्ध कराए। इफ्को प्रतिवर्ष लगभग 100 करोड़ रुपया नई नई टेक्नोलॉजी और नई नई तकनीक को विकसित करने के लिए किसानों के लिए व्यय करती है। इस वर्ष लगभग अप्रैल माह से हमने देशव्यापी अभियान चला रखा है किसानों के लिए। गांव-गांव पर जाकर हमारी सॉयल टेस्टिंग वैन्स जाती हैं, हमारी स्टैटिक लैब्स हैं, हमारे फील्ड ऑफिसर्स, फील्ड हमारे सारे क्षेत्र अधिकारी इस विषय में कार्यरत हैं और अधिक से अधिक हमारे मृदा के सैंपल लाए जा रहे हैं और हम उनके आधार पर किसान को उसके जो जो पोषक तत्वों की उसकी भूमि में कमी है उसके आधार पर हम उसे सुझाव दे रहे हैं कि अगली फसल में वो कैसे आगे बढ़े। यहां मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे देश की जो आवश्यकता है वो न तो रासायनिक खादों से पूरी हो सकती है अकेले, न उनके बिना पूरी हो सकती है। यानी हमें अपने देश में हर रूप में ऐसे प्रबंधन की आवश्यकता है, किसान को इस तरह की समझ विकसित करने की आवश्यकता है कि वो कार्बनिक, अकार्बनिक, जैव और नैनो चारों प्रकार के जो हमारे उर्वरक हैं उनका सही मात्रा में सही समय पर इस प्रकार उपयोग करें कि जो जो पोषक तत्वों की उसकी भूमि में कमी है वो हम पूरी कर सकें।
2: जी,
3: अब जो एकीकृत जो हमने पोषक तत्व प्रबंधन की बात करी, इसका उद्देश्य यह है कि हम आवश्यकता के अनुरूप उत्पादन कर सकें, उपज पैदा कर सकें और हम अपनी भूमि के स्वास्थ्य को भी ऐसा बना के रख सकें कि आगे वाली पीढ़ी के लिए भी हम आवश्यक मात्रा में उत्पादन अपने अनाज का कर सकें। इसके लिए अब हमें करना क्या है, हमें वो सारे चीजों पर ध्यान देना है कि हमें कैसे अपने विगत वर्ष के फसल के अवशेष का हम कैसे प्रबंधन करें। इसके लिए इफको जैसी संस्थाएं जैव अपघटक बनाती हैं और जो बहुत छोटी सी शीशी है जिसमें आधा किलो बेसन, आधा किलो गुड़, 25 किलो पानी में मिला के आप रख दें 5 दिन और उसके बाद उसमें और 150 किलो पानी मिला के एक एकड़ में बिखेर दें, 20-25 दिन में पुरानी फसल का सारा अवशेष जो है हरी खाद में परिवर्तित हो जाएगा और उससे जमीन के भी लाभ होगा और उर्वरक की आवश्यकता भी हमारी कम होगी। इसी तरह से जो दूसरा लाभ है जो हम चाहते हैं कि किसान समझे कि जो हमारे बायो फर्टिलाइजर्स हैं, जो हमारे जैव उर्वरक हैं, उसमें एनपीके कंसोर्टिया जैसी चीजें हैं जो लगभग 200 रुपए की बोतलें होती हैं सारे संस्थानों की और उससे लगभग 25-25% तीनों तरह की खादें, यूरिया भी, डीएपी भी और पोटाश की खाद भी हमारी बचत होती है। यानी 1,500 की लगभग बचत होती है किसान की अगर वो उसका भूमि शोधन में और बीज शोधन में इसका उपयोग कर सके। इसके बाद बात आती है हमारे नैनो फर्टिलाइजर्स की, जो इफको ने नई जनरेशन के नैनो फर्टिलाइजर्स निकाले हैं। किसान भाइयों, इस पे आने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर हम देश के बारे में सोचें, हमारे देश ने इस वर्ष पहली बार 395 लाख टन से भी ज्यादा यूरिया का उपयोग किया और सरकार की जो उर्वरक पर सब्सिडी दी जा रही है वो 2.2 लाख करोड़ से भी ज्यादा हो गई, जिसमें से 1,05,000

0: 45,000 जैसी सब्सिडी केवल यूरिया पर गई।
1: जी
0: किसान भाई ये समझें कि अगर वो यूरिया का 100 किलो यूज करते हैं, उसमें से लगभग 30 किलो ही उनकी उपज बढ़ाने में काम में आता है, तो 70 किलो तो वो यूरिया है जिससे आने वाले वर्ष में और कम उत्पादकता होगी, क्योंकि उससे हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति और ज्यादा कम होगी। तो इस तरह से अगर 100 में से 70 किलो यूरिया हमारा खराब है जिसका
1: जी
0: लाभ नहीं मिला, तो देखा जाए 1,45,000 करोड़ में से
1: जी
0: लगभग 1,00,000 करोड़ रुपया उस यूरिया पर गया, सरकार का व्यय हुआ, जिसने हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति को और ज्यादा कम
1: जी
0: किया। और आने वाले वर्षों में ये होता रहेगा कि हम और ज्यादा यूरिया का उपयोग करना पड़ेगा हमें उतना ही उत्पादन लेने के लिए।
1: जी
0: तो पहली बात तो यह है कि हमें देश में हम पर कोई और तरीका ही नहीं है, हमें यूरिया का जो उपयोग है वो तो निश्चित रूप से कम करना पड़ेगा, क्योंकि 45 किलो का जो बोरा है उसमें से केवल 14-15 किलो किसान के लाभ का है, 30-31 किलो तो वो है जो हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति को हर आने वाले वर्ष में और कम कर रहा है। किसान को लग सकता है ऐसा कि वो तो 270 या 266 रुपए में मिलता है, पर असल बात तो यह है कि सरकार की सब्सिडी मिला लें तो केवल 700 रुपए का ही उसके लाभ का है, 1400 रुपए का तो वो व्यय है सरकार का उस बोरे पे
1: जो बेकार जाता
0: जो
1: है।
0: हमारी जमीन की उर्वरा शक्ति को खराब कर रहा है, हमारे भूजल की खराब करता है, हमारे वातावरण को प्रदूषित करता है, और तो और हमारे उत्पाद की ये हालत हो गई है कि तरह तरह की बीमारियां केवल ज्यादा नाइट्रोजन के उपयोग से, ज्यादा यूरिया के उपयोग से आ रही हैं, जिनको हम कभी भी खत्म नहीं कर पाएंगे।
1: जी
0: मैं ये बताना चाहता हूं कि जिस यूरिया के बैग में 20 किलो से भी ज्यादा नाइट्रोजन है, क्योंकि 40% इसमें नाइट्रोजन है, और अब मैं अगर नैनो फर्टिलाइजर की बातें इसके सामने लाऊं तो हमें यह समझना पड़ेगा कि ये देश के लिए एक नया तरह का सुपर फूड है।
1: जी
0: इस नैनो यूरिया की बोतल में अगर किसान भाई समझे तो केवल 100 ग्राम नाइट्रोजन है, पर तकनीक इतनी बड़ी है कि सतही जो इसके आयतन के मुकाबले वो इतना अधिक गुना बढ़ गया है, जो इसके अंदर जो कण है वो 30 नैनोमीटर के आसपास के साइज के हैं, उसमें जो प्रक्रिया में भाग लेने वाले एटम होते हैं 50% उसकी सरफेस पे होते हैं, जबकि 3000 जब हो जाता है साइज तो 0.5% भी सरफेस पर नहीं रहता। इतनी ज्यादा क्रियाशीलता होने के कारण ये 100 ग्राम नाइट्रोजन है वो 20 किलो से भी ज्यादा नाइट्रोजन जो बोरे में है उसका बराबरी करता है या उससे भी अधिक हमें फायदा देता है। अब आप समझे किसान भाई कि हम कहते हैं कि जब लगभग 85% लीफ हो जाए तब आप इसका स्प्रे करें, तो ये समझ लीजिए कि जो हम टिकाऊ खेती या सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात करते हैं, यूरिया जितना हम डाल रहे हैं या रासायनिक खाद जितना हम कम उपयोग कर पाएंगे तभी हम उस दिशा में बढ़ेंगे, क्योंकि हर आने वाले वर्ष में हम जितना यूरिया डाल रहे हैं उससे हम टिकाऊ खेती का एकदम विपरीत कर रहे हैं। और जितनी भी बोरियों को हम अपनी नैनो फर्टिलाइजर की बोतल से बदल पाएंगे या जैव उर्वरक और कार्बनिक खादों के उपयोग से जितना उनको कम कर पाएंगे उपयोग में, उतना ही हम अपनी टिकाऊ खेती की तरफ देश को लेके जाएंगे।
1: बिल्कुल संजय जी, आपने हमारे किसान भाइयों को बहुत अच्छी जानकारी इसलिए दी कि आपने उनको ये भी बता दिया कि भाई कितने बोरे में कितना डालें, कितना हमारा उपयोग है और कितना हमारा नुकसान जमीन के लिए हो रहा है।
0: अगर किसान भाई सोचे नए रूप में कि बहुत सारे हमारे ऐसे बुजुर्ग होंगे जिन्होंने खेतों में 20-25 HP के ट्रैक्टर चलते देखे होंगे अपने जमाने में
1: जी।
0: और आज हम 45-65 HP के ट्रैक्टर चलाते हैं, आप सोचें कि जब वो ट्रैक्टर खेत में चलता है तो हमारी जमीन कितनी दबती है, हमारी जमीन में केवल ऊपर ऊपर से ही हम पोषक तत्व ले पा रहे हैं
1: जी,
0: जमीन इतनी कठोर हो गई है इन रासायनिक खादों के उपयोग से। और सबसे बड़ी बात जो हमने नुकसान उठाया है कि इन सब के कारण जो जीवांश कार्बन है, जो सॉयल ऑर्गेनिक कार्बन बोलते हैं, जीवांश कार्बन है, उसकी मात्रा जो 1 से भी अधिक हुआ करती थी प्रतिशत में, वो अब हमारी 0.3 से भी कम रह गई।
1: अच्छा, इतना नीचे आ
0: गई। किसी प्रदेश में तो 0.1 से 0.2 के आसपास है, राजस्थान उसका उदाहरण है। अब आप सोचें कि जीवांश कार्बन नहीं, यानी जमीन में भुरभुरापन नहीं, जमीन के पानी रोकने की क्षमता कम, और उसके कारण क्योंकि उसमें हमारे छोटे छोटे जीवाश्म नहीं हैं, तो उससे हो ये रहा है कि जो पहले हम केंचुआ सुनते थे किसान भाई, उससे जो जमीन को लाभ होता था वो है ही नहीं, और उसकी वजह से आप कितना भी उर्वरक डालें हमारा उसका उतना लाभ नहीं मिलेगा। उसके बाद हम ये चाहते हैं कि किसान भाई पहला जो टॉप ड्रेसिंग करते हैं, पहली जो खाद डालते हैं, क्योंकि उस समय तक हमारी पत्तियों का आच्छादन उतना अधिक नहीं होता, तो हम ये चाहते हैं कि पहली जो टॉप ड्रेसिंग करें वो जिस मात्रा में जितनी भी यूरिया डालते हैं उतनी डालें, पर उसके बाद जब पत्तियों का अक्षादन 85% से अधिक हो जाए, बहुत सारी फसलें आप देखिए जिससे हमारी मक्का की फसल है, हमारी कॉटन की फसल है।

0: सब्जियां हैं, जितनी भी इस तरह की फसलें हैं जिनमें पत्तियां ज्यादा हैं, उनके लिए तो ये भरपूर लाभ वाली है। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात आज एक और मैं बता दूंगा आपको कि इसमें जब आप किसी भी नैनो यूरिया का उपयोग करेंगे या नैनो डीएपी को मिला के उसमें जब स्प्रे करेंगे तो आप नाइट्रोजन की एक्स्ट्रा जो मात्रा अधिक मात्रा डालते थे वो आपने कम कर दी, और नाइट्रोजन की मात्रा जब आपने कम करी और वो सीधे सीधे पत्तियों के माध्यम से अंदर चली गई तो इतनी कम मात्रा थी जो सीधे उपयोग में आई, और उससे ये हुआ कि जो एक्स्ट्रा नाइट्रोजन पड़ रही थी उसकी वजह से पत्तियां सामान्यतः यूरिया डालते ही मोटी हरी और रसदार हो जाती हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे कीट पतंगे उन पर आते हैं और कीटनाशकों का भरपूर उपयोग करना पड़ता है। हमारे उत्पाद विदेशों से रिजेक्ट होके आ रहे हैं क्योंकि वो उतना स्प्रे वाली मिर्च कोई विदेश हमारा स्वीकार नहीं कर रहा है हमारे सब्जियों में हमारे फलों पे
1: जी।
0: तो इससे जो विशेष लाभ होगा, जो कम नाइट्रोजन मिलेगा पौधे को, उससे हमारे कीट पतंगों का भी प्रकोप कम होगा और किसान भाइयों का जो व्यय व्यर्थ होता है अधिक कीटनाशकों के स्प्रे करने में वो भी हमारा कम होगा।
1: और जो किसान भाई उत्पादन कर रहे हैं उसकी विश्व में भी मांग लगातार बढ़ी रहेगी।
0: दूसरी सबसे बड़ी बात, जितने भी आप ये इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट इससे एकीकृत पोषक तत्वों का प्रबंधन करेंगे, इससे सभी तरह के जब पोषक तत्व होंगे तो हमारा उत्पाद की गुणवत्ता भी बहुत
1: बिल्कुल
0: अलग दिशा में जाएगी। किसान भाइयों का केवल एक ही विषय है जिसपे आज मैं अलग से बोलना चाहता हूँ आपसे कि आप सबके मन में ये है कि यूरिया डालते ही 7 दिन में फसल एकदम हरी हो जाती है, पर हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि उसको आप 20वें दिन देखिए और उसी के बगल के किसी खेत में नैनो यूरिया डाला हुआ खेत देखिए कि 20वें दिन क्या होता है। क्योंकि किसान गेहूं वाला है धान वाला है वो प्रतिदिन अपने खेत में नहीं जाता, पर जो सब्जी उगाता है जो कैश क्रॉप करता है जो कमर्शियल क्रॉप करता है वो रोज जाता है उसको परिवर्तन दिखता है। मैं आज विशेष बातें बता दूं कि यूरिया डालने से पहले 7 दिन में 6 दिन में फसल हरी तो ज्यादा हो सकती है, पर वो उस जगह जाता है जिसका कि फूल पे या फल पर लाभ नहीं होता
1: जी।
0: नैनो यूरिया जैसे उत्पाद, नैनो डीएपी जैसे उत्पाद हैं, ये 20 दिन तक धीरे धीरे रिलीज होते रहते हैं और उसी मात्रा में जमीन से भी अन्य उर्वरक के पोषक तत्व तो आते रहते हैं, यानी ये एक तरह का हर रूप में बैलेंस न्यूट्रिशन की बात होती है, बैलेंस फर्टिलाइजर यूज की बात होती है, और इसीलिए जो उत्पाद की गुणवत्ता है वो हमारी अति उत्कृष्ट होती है सामान्यतः जो हमारी सामान्य यूरिया के मुकाबले। और हम दोबारा ये कहना चाहते हैं कि इफको ने जो इस साल अपना एक विशेष उद्देश्य बनाया कि हम भू स्वास्थ्य पर काम करें और किसान की समृद्धि के लिए समर्पित करें, इसी उद्देश्य से हम अलग अलग तरह के कार्यक्रम अपने क्षेत्रों में गांवों में ब्लॉक स्तर पर और तहसील स्तर पर कर रहे हैं इस वर्ष।
1: संजय जी आपने बिल्कुल हमारे किसान भाइयों को सही बताया किस तरह अपनी जमीन को बचाना है और भाई कम लागत भी आपको कम करनी है जिससे कि आपका उत्पादन बढ़े और पैसा भी अच्छा मिले। तो संजय कुलश्रेष्ठ जी आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, इन सब बातों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो भाई अभी आप सुन रहे थे ये बहुत ही काम की जानकारी और विषय था फसलों में एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन। जानकारी दे रहे थे संजय कुलश्रेष्ठ से और इनसे बातचीत कर रहे थे पीएस भाटी।
3: और भाई उन्होंने भी विशेष रूप से कहा है कि हमें रासायनिक खाद को छोड़कर नैनो फर्टिलाइजर और जैव उर्वरकों की तरफ बढ़ना चाहिए और अपनी खेती को अपनी जमीन को अपनी मिट्टी को उसमें सुधार करने के लिए अधिक से अधिक जैविक खेती की ओर हमें अग्रसर होना चाहिए। और अगर कृषि की बात करें इस समय खेतों में धान की नर्सरी यदि आपकी 20 से 25 दिन की हो गई है तो तैयार खेत में धान की रोपाई शुरू करें। पंक्ति से पंक्ति की दूरी 20 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। उर्वरकों में 100 ग्राम नाइट्रोजन 60 किलोग्राम फॉस्फोरस 40 किलोग्राम पोटाश और 20 किलोग्राम जिंक सल्फेट हेक्टर की दर से डालें तथा नील हरित शैवाल 1 पैकेट एकड़ का प्रयोग उन्हीं खेतों में करें जहां पानी खड़ा होता है ताकि मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाई जा सके। इस तरीके से अगर और आपको कोई बीमारी दिख रही है तो उसका भी विशेष ध्यान रखें। और इसके साथ साथ आपको याद दिला दें कि कल शनिवार है और शनिवार को आपका पसंदीदार कार्यक्रम हेलो ग्राम संसार प्रसारित किया जाता है 6:30 पर, जो कि लोक संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम होता है जिसमें आप फोन के जरिए अपनी फरमाइश हम तक पहुँचाते हैं। तो हेलो ग्राम संसार कार्यक्रम सुनना बिल्कुल न भूलें। कार्यक्रम के दौरान आपको कार्यक्रम से जुड़ने की फोन नंबरों की और समय की सही जानकारी दी जाएगी। और अब करवाते हैं मनोरंजन और सुनवाते हैं उदयपाल की आवाज में ये उपदेश।

तो भाइयों, उदयपाल के गाए हुए इस उपदेश के साथ ही आज का कृषि जगत कार्यक्रम हम यही समाप्त करते हैं। सुनने वाले सभी भाई बहनों को राम राम जी। और कार्यक्रम को आप कैसा पसंद करते हैं, किस तरीके के आपके सुझाव हैं, वो आप हमें प्रतिक्रियाएं और सुझाव भेज सकते हैं। हमारा पता है कृषि एवं गृह कांश द्वारा केंद्र निदेशक कमरा नंबर 610 नव प्रसारण भवन आकाशवाणी दिल्ली। और आप हमें मेल भी कर सकते हैं feedback@gmail.com। और कार्यक्रम के प्रस्तुत

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। 7:30 होने को है। अब सुनिए गजल कव्वाली।

अभी आप सुन रहे थे गजल कव्वाली कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर।

अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। 7:45 होने को है। अब कुछ ही पलों में सुनिए प्रादेशिक समाचार।

0: बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली सचिवालय में दिल्ली ईवी सब्सिडी पोर्टल का शुभारंभ किया। दिल्ली सरकार राजधानी में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए स्वच्छ हवा स्वस्थ दिल्ली नामक 7 वर्षीय परियोजना शुरू करेगी। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने डीडीए सलाहकार परिषद की बैठक में राष्ट्रीय राजधानी में सतत शहरी विकास रोडमैप की समीक्षा की। दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह की लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए नियुक्ति और श्री अमरनाथ यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू। समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली सचिवालय में आयोजित कार्यक्रम में दिल्ली ईवी सब्सिडी पोर्टल का शुभारंभ किया। उन्होंने दिल्ली इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी 2026 की आधिकारिक पुस्तिका का भी विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार स्वच्छ आधुनिक और सतत परिवहन व्यवस्था को विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
3: मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2026 स्वच्छ वायु प्रदूषण नियंत्रण ऊर्जा सुरक्षा और हरित अर्थव्यवस्था की दिशा में दिल्ली सरकार का एक दूरदर्शी और परिवर्तनकारी कदम है। मुख्यमंत्री ने बताया कि ईवी पोर्टल के माध्यम से पात्र लाभार्थी वाहन खरीदने और RC प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर आवेदन कर सकेंगे। इसके बाद 60 दिनों के भीतर डीबीटी के माध्यम से सब्सिडी उनके बैंक खातों में उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार अगले 4 वर्षों में नई ईवी नीति के क्रियान्वयन पर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करेगी। इस नई नीति के तहत इलेक्ट्रिक दो पहिया वाहनों पर 30,000 रुपए तक, इलेक्ट्रिक तीन पहिया वाहनों पर 50,000 रुपए तक और N1 श्रेणी के इलेक्ट्रिक ट्रकों पर 1,00,000 रुपए तक का प्रोत्साहन दिया जाएगा, जबकि पुरानी प्रदूषणकारी गाड़ियों की स्क्रैपिंग पर भी विभिन्न श्रेणियों के अनुसार विशेष प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली ईवी सब्सिडी पोर्टल को नागरिकों के लिए सरल, तेज, पारदर्शी और पूरी तरह डिजिटल बनाया गया है, ताकि पात्र लाभार्थी घर बैठे ही सभी सेवाओं का लाभ उठा सके और पूरी प्रक्रिया पेपरलेस, पारदर्शी और सिटीजन सेंट्रिक बनाई गई है। प्रादेशिक समाचार के लिए नीतिका गुप्ता।
2: दिल्ली सरकार राजधानी में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए स्वच्छ हवा स्वस्थ दिल्ली नामक 7 वर्षीय परियोजना शुरू करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि विश्व बैंक के सहयोग से सितंबर 2026 से अगस्त 2033 तक लागू होने वाली इस परियोजना की अनुमानित लागत 8,300 करोड़ रुपए है। उन्होंने बताया कि 10 जुलाई को इस कार्यक्रम की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए कार्यशाला आयोजित की जाएगी। परियोजना के तहत वायु गुणवत्ता प्रबंधन को सुदृढ़ करने, प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों से उत्सर्जन कम करने, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने, सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने और आधुनिक निगरानी प्रणाली विकसित करने पर विशेष जोर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस पर सभी से संकल्प लेने को कहा। उन्होंने कहा कि ये केवल विशेष दिन तक सीमित न रहे, बल्कि सभी की रोजमर्रा की आदत बनना चाहिए। सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि घर से निकलते समय कपड़े या जूट का थैला साथ रखें, सिंगल यूज प्लास्टिक थैलों का बिल्कुल इस्तेमाल न करें और अपने छोटे छोटे प्रयासों से स्वच्छ, हरित और प्लास्टिक मुक्त दिल्ली के निर्माण में सहभागी बने। दिल्ली के भागीरथी जल शोधन संयंत्र में आज स्कूली बच्चों ने वाटर ट्रीटमेंट की पूरी प्रक्रिया को

0: करीब से समझा। साथ ही एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत बड़ी संख्या में पौधारोपण भी किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने आज दिल्ली विकास प्राधिकरण DDA की सलाहकार परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में राष्ट्रीय राजधानी में सतत शहरी विकास के रोडमैप की समीक्षा की गई।
1: बैठक के दौरान आगामी मास्टर प्लान, नागरिक और संस्थागत ढांचे को मजबूत करने तथा शहर के लिए नियोजित समावेशी विकास सुनिश्चित करने पर व्यापक चर्चा हुई। उपराज्यपाल ने DDA को निर्देश दिए कि वे जमीन के टुकड़ों और इमारतों की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए तकनीक का इस्तेमाल करके अवैध कब्जों और अनाधिकृत निर्माणों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएं। उपराज्यपाल ने कहा कि दिल्ली की बदलती शहरी चुनौतियों से निपटने के लिए मिलजुलकर काम करने पारदर्शी और तकनीक पर आधारित तरीका ही से जरूरी है। नीतिका की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: दिल्ली के लाजपत नगर कॉलोनी अस्पताल में आज नव निर्मित फ्रंट ब्लॉक और आधुनिक फिजियोथेरेपी केंद्र का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस फ्रंट ब्लॉक में 6 बेड का डे केयर सेंटर, 12 कंसल्टिंग रूम, एक डे केयर रूम और एक कॉन्फ्रेंस रूम विकसित किए गए हैं। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया गया है जिसके तहत सभी अस्पताल, चाहे वो प्राइवेट हों या सरकारी हों, ऑनलाइन जुड़े होंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि नई सुविधाओं से देश के हजारों नागरिकों को बेहतर और त्वरित उपचार का लाभ मिलेगा।
2: हमने एक नया सिस्टम बनाने की दिशा में कदम आगे बढ़ाया है जिसमें प्राइवेट हो या गवर्नमेंट का हॉस्पिटल, हर हॉस्पिटल को ऑनलाइन जोड़ा जाएगा ताकि आपको एक क्लिक में पता चले कि कहाँ ICU बेड खाली है, आप सीधा अपने पेशेंट को वहाँ लेके जा सके। हमने दिल्ली राज्य में सोटो ऑर्गन डोनेशन का ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ दानदाता और रिसीवर दोनों को कनेक्ट कर सके और ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग ऑर्गन डोनेशन का काम कर सके, इसके लिए प्लेटफॉर्म शुरू किया है।
0: दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा की अध्यक्षता में आज चुनाव आयोग द्वारा दिल्ली में प्रारंभ की गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण SRIR प्रक्रिया को लेकर प्रथम समीक्षा बैठक की गई। दिल्ली भाजपा महामंत्री और SIR प्रक्रिया प्रमुख योगेंद्र चंदोलिया ने कहा कि दिल्ली में अन्य दलों की तरह ही भाजपा के भी बूथ लेवल एजेंट चुनाव आयोग में पंजीकृत हैं। उन्होंने बताया कि दिल्ली में कुल 13,033 पोलिंग बूथ हैं और इनमें 12,000 से अधिक पर भाजपा के BLA2 चुनाव आयोग में पंजीकृत हैं। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों के 21 छात्रों को HCL टेक बी नामक निजी कंपनी में अर्न वाइल यू लर्न, सीखते हुए कमाएं प्रोग्राम के जरिए रोजगार मिलने पर शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सूद ने कहा कि यह उपलब्धि सभी छात्रों की क्षमता को दर्शाती है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने आज कहा कि भारत की समग्र शासन की अवधारणा के अंतर्गत विभिन्न व्यक्तिगत और संस्थागत क्षमताओं के समन्वय की आवश्यकता है। श्री सिंह ने नई दिल्ली में दक्ष के तीसरे बैच के उद्घाटन के अवसर पर ये बात कही। एक रिपोर्ट।
3: दक्ष केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए एक वर्षीय नेतृत्व विकास कार्यक्रम है जिसका आयोजन क्षमता निर्माण आयोग और लोक उद्यम स्थायी सम्मेलन द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि क्षमता निर्माण से संस्थानों में तालमेल स्थापित होना चाहिए ताकि 2047 तक विकसित भारत की आकांक्षाओं को पूरा करने में सक्षम शासन प्रणाली तैयार की जा सके। उन्होंने वर्तमान बैच में महिला अधिकारियों के बढ़ते प्रतिनिधित्व की सराहना करते हुए इसे भारत के बदलते नेतृत्व परिदृश्य का सकारात्मक प्रतिबिंब बताया। क्षमता निर्माण आयोग के अध्यक्ष S. राधा चौहान ने कहा कि आज नेतृत्व विकास का दायरा व्यक्तिगत क्षमताओं को बढ़ाने से कहीं अधिक है जिसमें तेजी से विकसित हो रहे प्रौद्योगिकियों और शासन मॉडल के अनुकूल होने में सक्षम संगठनात्मक और संस्थागत क्षमताओं को मजबूत करना शामिल है। उन्होंने कहा कि आयोग AI, उभरती प्रौद्योगिकियों और संस्थागत अनुकूल क्षमता जैसे भविष्योन्मुखी विषयों को अपने क्षमता निर्माण ढांचे में एकीकृत कर रहा है। प्रादेशिक समाचार के लिए करिश्मा राय।
0: दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति

0: प्रोफेसर योगेश सिंह को लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रोफेसर योगेश सिंह की दोबारा नियुक्ति को मंजूरी दी है। उनका नया कार्यकाल इस साल 8 अक्टूबर से अगले 5 वर्षों तक रहेगा। प्रोफेसर सिंह ने वर्ष 2021 में कुलपति का पद संभाला था। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रसारण श्रोता अनुसंधान परिषद BARC को समाचार और गैर समाचार दोनों ही श्रेणियों में टेलीविजन रेटिंग जारी करने पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। मंत्रालय ने कहा है कि यह व्यवस्था तब तक लागू रहेगी जब तक परिषद को टेलीविजन रेटिंग नीति 2026 के अंतर्गत लाइसेंस नवीकरण नहीं मिल जाता। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की इस तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे।
1: हजारों की तादाद में यात्री इस समय धार्मिक उत्साह के साथ पवित्र गुफा में भगवान शिव के आशीर्वाद लेने और शिवलिंग के दर्शन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यात्रा के दोनों रास्तों पर यात्रियों को पानी, भोजन और विश्राम स्थल उपलब्ध कराए गए हैं ताकि इस कठिन यात्रा के दौरान उनकी सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। उत्साहित यात्रियों ने सुविधाओं और व्यवस्थाओं की सकारात्मक प्रशंसा की है। इस बीच आज सुबह जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक एडवाइजरी जारी करके यात्रियों से निवेदन किया है कि वो केवल अपनी पंजीकृत तिथि पर ही यात्रा का आरंभ करें। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं रेश बाक्षा।
0: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अमरनाथ यात्रा के सभी श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं देते हुए एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि ये यात्रा सनातन संस्कृति की अटूट आस्था और आध्यात्मिक चेतना का जीवंत प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा बर्फानी की असीम कृपा से सभी तीर्थयात्रियों की यात्रा मंगलमय और सफल हो। सरकार ने बैट BMS, इपोक आई आयन और लॉसिगी एप्स को गूगल प्ले स्टोर, एप्पल एप स्टोर से भी हटाने का आदेश दिया है। ये कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन एप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से ही बंद करने के लिए किया जा रहा था। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से जुड़े सूत्रों ने बताया कि इन्हें ऐप स्टोर से हटाने का निर्देश दिया गया है। सरकार का कहना है कि यह फैसला संभावित गलत इस्तेमाल और सुरक्षा जोखिम को देखते हुए लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने आज मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 3 नेपाली नागरिकों को गिरफ्तार करके एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश किया। पुलिस ने बताया कि आरोपियों के पास से लगभग 8 किलोग्राम का मादक पदार्थ बरामद किया गया जिसका अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्य लगभग 9 करोड़ रुपए है। पुलिस के अनुसार ये आरोपी भारत नेपाल बॉर्डर से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल थे। युवा कार्यक्रम विभाग ने आज नई दिल्ली में माय भारत के लिए उद्योग संघ सम्मेलन का आयोजन किया। कार्यक्रम का उद्देश्य उद्योग जगत के हितधारकों को माय भारत पारिस्थितिकी तंत्र से परिचित करवाना और उद्योग संघों, कॉरपोरेट और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को इस पहल में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना था। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार ऐप के जरिए आधार में मुफ्त ईमेल अपडेट की सुविधा शुरू कर दी है। ये सुविधा 1 जुलाई से 6 महीने की अवधि के लिए लागू है। राजधानी दिल्ली में आज बादल छाए रहने के बावजूद लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ा। आज का अधिकतम तापमान 35.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 28.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार कल बादल छाए रहने और कुछ जगहों पर शाम के समय हल्की बारिश की संभावना है। विभाग के अनुसार कल का अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रह सकता है 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास। और अंत में लीजिए सुने इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली सचिवालय में दिल्ली ईवी सब्सिडी पोर्टल का शुभारंभ किया। दिल्ली सरकार राजधानी में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए स्वच्छ हवा स्वस्थ दिल्ली नामक 7 वर्षीय परियोजना शुरू करेगी। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने DDA सलाहकार परिषद की बैठक में राष्ट्रीय राजधानी में सतत शहरी विकास रोडमैप

0: की समीक्षा की। दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह की लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए नियुक्ति हुई और श्री अमरनाथ यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 8 बज चुके हैं। अब सुनिए कार्यक्रम गीत मालिका। फिल्म संगीत पर आधारित ये कार्यक्रम गीत मालिका में आज मैं हूं आपके साथ पूजा भारती।

अब इस सवाल का क्या जवाब होगा कि कोई मोहब्बत क्यों करता है, और फिर इसके जवाब में जिसने जवाब दिया वो भी बेमिसाल था। फिल्म दिल चाहता है, इसे आपने सुना, इस गीत को अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज में। सुन रहे हैं आप फिल्म संगीत कार्यक्रम गीत मालिका मेरे यानी कि पूजा भारती के साथ। और फिर जब मोहब्बत की बातें होती हैं तो दिन कुछ खास हो जाता है, और फिर हम सोचते हैं कि इन दिनों आखिर क्या हो रहा है, कुछ अलग लग रहा है। सुनते हैं गीत में भी कुछ ऐसा ही कहा गया है।

लाइफ इन मेट्रो फिल्म से आपने सुना इस गीत को, आवाज सोहम की। सुन रहे हैं आप गीत मालिका मेरे यानी कि पूजा भारती के साथ। और गीतों में कुछ गीत ऐसे भी होते हैं जहां वादा बहुत सारा किया जाता है और उसे निभाया भी जाता है। ये गीतों में ही तो बताया जा रहा है और ये गीत ही तो है जो हमें भी बहुत कुछ सिखा देते हैं। वाकई में वादा करना और फिर उसे निभाना बहुत मुश्किल है, लेकिन कुछ लोग ऐसा भी करते हैं और गीतों में जब ये बोल आ जाते हैं तो शब्द पे ज्यादा जोर आता है, यानी कि मन में वही बात चलती है जो गीतों के बोल में होते हैं। और कुछ गीत ऐसे होते हैं जो मन को झकझोर देते हैं, उन्हीं गीतों में से एक गीत ये भी है।

वाकई में जब वादा कर लेते हैं तब लगता है कि उस वादे पर चलते रहे, लेकिन कई बार ऐसे मुकाम आते हैं जहां वादा कहीं ना कहीं टूटने लग जाता है। लेकिन उससे क्या होता है, कई बार वादे तोड़ने से हम बच भी जाते हैं क्योंकि इशारों में ही कुछ बातें हो जाती हैं।

और जब गानों का सिलसिला चलता है या बातों का सिलसिला चलता है तो कोई एक कहता है और एक सुनता है। कभी कभी ऐसा होता है दोनों ही अपने जज्बात एक साथ ही बोलने लग जाते हैं, तो क्या होता है? फिर तो यही होता है कि कौन कहेगा और कौन सुनेगा। तब ये कह सकते हैं कि कभी मैं कहूं और कभी तुम कहो।

कहने सुनने की बात जब आती है तो एक दूसरे को मना लेते हैं, लेकिन जब कोई सिर्फ सुनना चाहता हो वो भी तारीफ, तो गीत में इन शब्दों को कैसे पिरोया गया ये गीत बताता है। और तारीफ सुनना किसे अच्छा नहीं लगता, और जब कोई खुद से कहे कि बता दो ऐसा क्या खास है, ऐसा क्या खूबी है, तो फिर गीत कुछ इस तरीके से बन गए। आइए सुनते हैं इस गीत को।

और वाकई में जब तारीफ का वक्त चलता है तो लगता है ये चलता ही रहे, क्योंकि तारीफ सुनने वालों को सबसे ज्यादा इस बात का पता होता है कि जो तारीफ कर रहा है वो तो अपना ही है, और जब अपने तारीफ करते हैं तो सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। वैसे तो अगर देखा जाए तो मोहब्बत में कई ऐसे मुकाम आते हैं जहां पर इंसान अपने आप को सबसे महफूज समझता है, और फिर ये दुनिया मोहब्बत पर ही टिकी है। यानी कि अगर इस दुनिया में प्यार मोहब्बत ना हो तो जीवन कैसा ही होगा। तो फिर ऐसे ही प्यार मोहब्बत के साथ जिंदगी चलती रहे, यही कामना है। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम गीत मालिका मेरे यानी कि पूजा भारती के साथ, और गीत मालिका का आखिरी मुकाम आ गया है, यानी कि अब ये कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। आखिरी नगमा आपके लिए, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: आप सुन रहे थे फिल्म संगीत कार्यक्रम गीत मालिका, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। 8:45 होने को है, अब सुनिए समाचार संध्या।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। सरकार ने कहा सिंधु जल संधि अभी भी स्थगित, पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद करना होगा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की राह पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। रक्षा खरीद परिषद ने युद्ध की तैयारी मजबूत करने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। फ्रांस में पिछले सप्ताह रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के कारण लगभग 9,000 लोगों की मौत। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 32 के मैच में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने स्पष्ट किया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करेगा तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में ये जानकारी दी।
2: India's position on the Indus Waters Treaty.
3: सिंधु जल संधि पर भारत का रुख पहले की तरह स्पष्ट है। पाकिस्तान के लगातार सीमा पार आतंकवाद को मदद देने के जवाब में सिंधु जल संधि को रोक दिया गया था। पाकिस्तान को विश्वसनीय तरीके से सीमा पार आतंकवाद को मदद देना बंद करना पड़ेगा।
1: तीस्ता नदी के समग्र प्रबंधन और पुनरुद्धार परियोजना पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में भारत की विकास परियोजनाएं दोनों देशों के बीच तय सहमति के आधार पर चलती हैं।
2: India's development assistance.
3: बांग्लादेश में परियोजनाओं के लिए भारत की विकास सहायता आपसी सहमति से तय किए गए रोड मैप पर आधारित है। इसकी नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। तीस्ता नदी प्रोजेक्ट पर हमारे विचार पहले ही बांग्लादेश को बता दिए गए हैं। तीस्ता मुद्दे पर अपने समग्र दृष्टिकोण में हम इससे जुड़े सभी घटनाक्रमों को ध्यान में रखेंगे।
1: वेनेजुएला से भारत लाए गए एक भारतीय नाविक के शव से अंग निकालने की खबरों पर उन्होंने कहा कि भारत ने इस मामले को वेनेजुएला सरकार के सामने उठाया है। भारत ने इस मामले की जल्द और निष्पक्ष जांच करने को कहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की ओर बढ़ रहा है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में वार्षिक निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% हासिल किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तु निर्यात में लगभग 15% और सेवा निर्यात में 10-11% की वृद्धि का अनुमान है। श्री गोयल ने कहा कि सरकार की निर्यात रणनीति में प्रत्येक राज्य, जिले और उद्योग क्षेत्र को समान महत्व दिया जा रहा है। श्री गोयल ने कहा कि 38 विकसित देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों ने भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खोले हैं। उन्होंने कहा कि भारत के साथ व्यापार और आर्थिक साझेदारी को बढ़ाने में दुनिया भर में रुचि बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
2: Prime Minister will also be visiting.
4: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्यकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
1: प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। इस दौरान महत्वपूर्ण खनिज, साइबर सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला, उभरती प्रौद्योगिकी और अन्य द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत होगी। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। श्री मोदी न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पिछले 40 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड की यह पहली यात्रा। यात्रा होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों की क्षमता बढ़ाने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में मिले इन रक्षा खरीद प्रस्तावों से सेना, नौसेना और वायुसेना की लड़ाकू क्षमता बढ़ेगी। इसके अलावा आज के दौर में बदलते सुरक्षा

0: सुरक्षा चुनौतियों को बेहतर ढंग से सामना करने में भी मदद मिलेगी। भारतीय सेना के लिए एंटी ड्रोन इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली आकाश तरंग खरीद को मंजूरी दी गई है, जो भारतीय सेना को दुश्मन के ड्रोन से प्रभावी सुरक्षा देगी। इसके अलावा मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली, बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली और जेट आधारित कामिकाजे ड्रोन प्रणाली की खरीद को मंजूरी दी गई है। वहीं भारतीय नौसेना के लिए मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन, जहाज से संचालित मानव रहित हवाई प्रणाली और इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टम के लिए भूमि आधारित परीक्षण केंद्र शामिल है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना के लिए अधिक ऊंचाई पर लंबे समय तक उड़ान भरने वाले फिक्स्ड विंग प्लेटफॉर्म और अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद को भी मंजूरी दी गई है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: गृह मंत्री अमित शाह तथा कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की समीक्षा बैठक की। श्री शाह ने कहा कि सरकार अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और संभावित सूखे की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को सतर्क रहने और किसानों को उपयुक्त फसलों की बुवाई के बारे में सलाह देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। पंचायती राज मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया गया। पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि 16वें वित्त आयोग ने पंचायतों के लिए 80% मूल अनुदान और 20% प्रदर्शन आधारित अनुदान प्रस्तावित किए हैं।
2: 16वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक राज्यों में कैसे तैयारी करें, कैसे परफॉर्मेंस ग्रांट का पूरा लाभ उठा सकें, सभी बिंदुओं पर चर्चा करके सभी राज्यों को उसके लिए तैयार करने के लिए आज की यह कार्यशाला थी। 73वें संविधान संशोधन के तहत ये राज्यों का विषय है और राज्यों के सहयोग से ही हम पंचायतों को आत्मनिर्भर बना सकते हैं।
1: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश में तोतापुरी आम उत्पादक किसानों की समस्याओं के आकलन के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति के गठन का निर्देश दिया है। श्री चौहान ने कहा कि तोतापुरी आम उत्पादकों की आय और आजीविका की रक्षा करना सरकार की प्राथमिकता है। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। सूत्रों ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को इस मामले में मेटा को तलब करने का निर्देश दिया है। इस बीच मंत्रालय के अधिकारियों ने व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर शुरू किए जाने के नोटिस के बाद आज मेटा के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। मेटा को इस संबंध में विस्तृत स्पष्टीकरण देने के लिए 3 दिन का समय दिया गया है। सरकार ने बैट, बीएमएस, इपोक आई आयन और लॉसिगी एप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल एप स्टोर से हटाने का निर्देश दिया है। ये कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन एप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि पत्रकारिता को हमेशा सत्य, ईमानदारी और उच्च पेशेवर मानकों के प्रति समर्पित रहना चाहिए। नई दिल्ली में ऑर्गेनाइजर साप्ताहिक पत्रिका के 80वें स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान ऑर्गेनाइजर साप्ताहिक और उसकी सहयोगी पत्रिका द मदरलैंड संविधान और लोकतंत्र की आवाज थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अयोध्या में श्री रामलला मंदिर में चढ़ावा चोरी की घटना की निंदा की है। संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने कहा कि ये घटना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे पूरे समाज तथा भगवान राम के भक्तों की आस्था को गहरी ठेस पहुंची है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। कश्मीर घाटी में अमरनाथ यात्रा के पहले दिन कुल 12,168 श्रद्धालुओं ने अमरनाथ जी गुफा में शिव की पूजा अर्चना की। कड़ी सुरक्षा और व्यवस्थाओं के बीच तीर्थयात्रियों ने गुफा के दर्शन किए। इससे पहले अधिकारियों ने तीर्थयात्रियों को सलाह जारी कर कहा था कि वे केवल अपनी पंजीकृत तिथियों पर ही यात्रा करें। इस बीच तीर्थयात्रियों का दूसरा जत्था बालतल और नुनवान बेस कैंप पहुंच चुका है और कल सुबह तड़के पवित्र गुफा की ओर रवाना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी बालूतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। प्रधानमंत्री बालूतरा के पचपदरा में देश की पहली हरित क्षेत्र आधारित एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। श्री मोदी जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री गुजरात के सांणंद में भारत सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत सीजी सेमी के सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। निर्वाचन आयोग ने आज 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न जिलों के मीडिया और संचार अधिकारियों का दूसरा सम्मेलन आयोजित किया। इसमें 260 से अधिक अधिकारी शामिल हुए। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निर्वाचन आयोग का हर निर्णय संविधान, चुनाव कानूनों और समय समय पर जारी लिखित निर्देशों के आधार पर पूरी पारदर्शिता के साथ लिया जाता है। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 262 अंक बढ़कर 77,764 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 95 अंक की बढ़त के साथ 24,271 दर्ज हुआ। दक्षिण पश्चिम मानसून आज गुजरात, राजस्थान और हरियाणा के कुछ और हिस्सों तथा मध्य प्रदेश के शेष भागों में आगे बढ़ गया। मौसम विभाग ने कल गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में अगले दो दिन तेज बारिश हो सकती है। अगले दो से तीन दिनों के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और सिक्किम में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। इस बीच महाराष्ट्र के कई हिस्सों में आज भी बारिश हुई। हमारे मुंबई संवाददाता से और जानकारी।
3: आज महाराष्ट्र के कई हिस्सों में बारिश हुई, जिसमें तटीय इलाकों में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई। रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और कोल्हापुर जिलों की नदियों में जलस्तर बढ़ गया है। आईएमडी के अनुसार कल से 7 जुलाई तक राज्य में बारिश और तेज होने की संभावना है। कई जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है, जबकि कोंकण और नजदीक के घाट इलाकों में कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा बारिश होने की संभावना है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ के कुछ हिस्सों में आंधी तूफान की भी संभावना है। आईएमडी ने मछुआरों को 7 जुलाई तक समुद्र में न जाने की सलाह दी है। इस बीच एहतियात के तौर पर एनडीआरएफ की 5वीं बटालियन ने महाराष्ट्र और गोवा के संवेदनशील जिलों में बचाव दल तैनात कर दिए हैं। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: फ्रांस में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के दौरान पिछले सप्ताह मरने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी है। 22 से 28 जून के बीच लगभग 9,000 लोगों की मौत हुई है। ये पिछले सप्ताह की तुलना में 29% अधिक है। पेरिस में सबसे अधिक मौतें हुई। अस्पतालों में निर्जलीकरण, दिल का दौरा, गुर्दे की जटिलताओं और अन्य लू से संबंधित बीमारियों से पीड़ित मरीजों की संख्या में भारी वृद्धि देखी गई। कांगो में इबोला वायरस के इलाज के लिए दो संभावित दवाओं का क्लिनिकल परीक्षण शुरू हो गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने बताया कि इस परीक्षण में पहले मरीज को शामिल कर लिया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मौजूदा प्रकोप में अब तक 438 लोगों की मौत हो चुकी है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में रात 11:30 बजे ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। एक अन्य मैच में तड़के 3:30 बजे अर्जेंटीना का मुकाबला केप वर्डे से होगा। राउंड ऑफ 32 का अंतिम मैच कल सुबह 7 बजे घाना और कोलंबिया के बीच खेला जाएगा। इससे पहले स्पेन, पुर्तगाल और स्विट्जरलैंड ने अंतिम 16 में प्रवेश किया। स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराया। पुर्तगाल ने क्रोएशिया को 2-1 से, जबकि स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर अगले दौर में जगह बनाई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने कहा सिंधु जल संधि अभी भी स्थगित। पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद करना होगा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की राह पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। रक्षा खरीद परिषद ने युद्ध की तैयारी मजबूत करने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। फ्रांस में पिछले सप्ताह रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के कारण लगभग 9,000 लोगों की मौत। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 32 के मैच में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

है खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। हुकूमत ने कहा है कि सिंध आबी मुआहिदा मुअत्तल रहेगा। पाकिस्तान को सरहद पार की दहशतगर्दी की हिमायत खत्म करना होगी। कॉमर्स के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस साल $1 खरब मालियत की बरामदात के हदफ को हासिल करने की राह पर गामजन है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी पीर के रोज से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का 6 रोजा दौरा करेंगे। दिफाई साजो सामान की हुसूलियाबी की कौंसिल ने जंगी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए 52,000 करोड़ रुपए मालियत की खरीदारी की तजावीज को मंजूरी दी है। हुकूमत ने बच्चों के जिंसी इस्तेहसाल को फरोग देने वाले इंस्टाग्राम एड से मुतालिक मेटा से वजाहत तलब की है। फ्रांस ने गुज़श्ता हफ्ते रिकॉर्ड तोड़ने वाली गर्म लहर के दौरान तकरीबन 9,000 अमवात की खबर दी है। और फीफा आलमी कप में आज रात अमरीका के आर्लिंगटन में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला राउंड ऑफ 32 के एक मैच में मिस्र से होगा। अब खबरें तफसील से। सरकार ने एक बार फिर इस बात का इरादा किया है कि पाकिस्तान की जानिब से सरहद पार दहशतगर्दी की मुसलसल सरपरस्ती के सबब सिंध आबी मुआहिदा मुअत्तल रहेगा। आज शाम नई दिल्ली में मीडिया को तफसीलात बताते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि सिंध आबी मुआहिदे पर भारत का मौकफ अटल है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को हमेशा के लिए और मोतबर तौर पर सरहद पार दहशतगर्दी की हिमायत तर्क कर देनी चाहिए। तीस्ता नदी के जामे बंदोबस्त और बहाली के मंसूबे पर जनाब जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में मंसूबों के लिए भारत की तरक्याती इमदाद बाहमी तौर पर मुत्तफिका रोडमैप पर मबनी है, जिसका बाकायदगी के साथ जायजा लिया जाता है। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा कि भारत इस साल $1 ट्रिलियन की बरामदात के हदफ को हासिल करने की तरफ गामजन है। सालाना बरामदात की 15% बरामदात पहली सहमाही में ही दर्ज की जा चुकी है। आज नई दिल्ली में तिजारती बोर्ड की मीटिंग में खिताब करते हुए जनाब गोयल ने कहा कि इसके लिए अशिया की बरामदात को $440 बिलियन से तकरीबन $530 बिलियन जबकि खिदमात की बरामदात को तकरीबन $421 बिलियन से तकरीबन $470 बिलियन तक बढ़ाने की जरूरत है। वजीर मौसूफ ने कहा कि भारत की बरामदात से मुतालिक हिकमत अमली मजबूत ज्यादा जामिया नुक्ता नजर पर मबनी है, जिसमें हर रियासत, जिला और तिजारती हलका को यकसा तौर पर अहमियत हासिल है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी पीर के रोज से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 रोजा दौरे पर होंगे। आज शाम नई दिल्ली में मीडिया को तफसीलात बताते हुए वजारत खारजा में मशरकी उमूर के सेक्रेटरी रुदेंद्र टंडन ने बताया कि जनाब मोदी इस महीने की 6 से 8 तारीख तक इंडोनेशिया का दौरा करेंगे और उनकी असल मसरूफियात जकार्ता में होंगी। अलबत्ता जनाब मोदी वहां के एक सकाफती और तारीखी शहर योग्यकार्ता का भी दौरा करेंगे। जनाब टंडन ने कहा कि दौरे के दूसरे मरहले में वो इस महीने की 8 से 10 तारीख तक ऑस्ट्रेलिया में होंगे। उन्होंने कहा कि वजीर आजम मेलबर्न पहुंचेंगे, जहां वो तीसरी भारत ऑस्ट्रेलिया सालाना चोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। तीन मुल्कों के अपने दौरे के तीसरे और आखिरी मरहले में जनाब मोदी इस महीने की 10 से 11 तारीख तक न्यूजीलैंड का दौरा करेंगे। मशरकी उमूर के सेक्रेटरी ने कहा कि न्यूजीलैंड का उनका दौरा 40 वर्षों में किसी भारतीय वजीर आजम का पहला दौरा होगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल राजस्थान और गुजरात का दौरा करेंगे। राजस्थान के दौरे में वजीर आजम जोधपुर हवाई अड्डे की नई टर्मिनल इमारत का इफ्तिताह करेंगे और नजर सानी शुदा उड़ान स्कीम का भी आगाज करेंगे। इसके बाद वो राजस्थान के बालोतरा जाएंगे, जहां वो तकरीबन 1.06 लाख करोड़ रुपए की मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे और कई प्रोजेक्टों का इफ्तिताह भी करेंगे। कल गुजरात के दौरे के दौरान भारत के सेमीकंडक्टर मिशन के जिम्न में एक अहम इकदाम में वजीर आजम सनांद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर के कल पुर्जों की तरतीब और तजुर्बाती मरकज ओएसएटी का इफ्तिताह करेंगे। ये प्रोजेक्ट इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत मंजूर शुदा इब्तदाई 4 प्रोजेक्टों में शामिल हैं, जिन पर 7,500 करोड़ रूपये से ज्यादा की सरमायाकारी की गई है। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि सहाफत को सच्चाई, दयानतदारी और आलातरीन पेशावराना मेयारात के मुताबिक काम करना चाहिए। नई दिल्ली में ऑर्गेनाइजर्स वीकली के
80ویں یوم تاسیس کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے نائب صدر جمہوریہ نے کہا

ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة

بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء

وَإِذَا

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे और संशोधित उड़ान योजना की शुरुआत करेंगे। इसके बाद वे बालोतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे। वे चुरू सादुलपुर और चुरू रतनगढ़ रेल लाइन दोहरीकरण परियोजनाओं तथा राष्ट्रीय राजमार्ग 125A के 4 लेन वाले हिस्से को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री राजस्थान सरकार के विभिन्न भागों में चयनित लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री गुजरात के साड़न जाएंगे। वहां वे भारत सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत सीजी सेमी के सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। ये देश की शुरुआती आधुनिक सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण इकाइयों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
1: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्यकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे, जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
0: प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। भारत ने स्पष्ट किया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना नहीं बंद करेगा, तब तक सिंधु जल स्थगित रहेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में यह जानकारी दी। तीस्ता नदी के समग्र प्रबंधन और

0: पुनरुद्धार परियोजना पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में भारत की विकास परियोजनाएं दोनों देशों के बीच तय सहमति के आधार पर चलती हैं।
1: India's development assistance.
2: बांग्लादेश में परियोजनाओं के लिए भारत की विकास सहायता आपसी सहमति से तय किए गए रोड मैप पर आधारित है। इसकी नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। तीस्ता नदी प्रोजेक्ट पर हमारे विचार पहले ही बांग्लादेश को बता दिए गए हैं। तीस्ता मुद्दे पर अपने समग्र दृष्टिकोण में हम इससे जुड़े सभी घटनाक्रमों को ध्यान में रखेंगे।
0: वेनेजुएला से भारत लाए गए एक भारतीय नाविक के शव से अंग निकालने की खबरों पर उन्होंने कहा कि भारत ने इस मामले को वेनेजुएला सरकार के सामने उठाया है। भारत ने इस मामले की जल्द और निष्पक्ष जांच करने को कहा है। विधि और न्याय मंत्रालय के विधि मामलों के विभाग और विधायी विभाग द्वारा संयुक्त रूप से आज से राजस्थान के माउंट आबू में सुधार उत्सव और चिंतन शिविर 2026 का आयोजन किया जाएगा। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की ओर बढ़ रहा है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में वार्षिक निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% हासिल किया जा चुका है। सरकार ने बैट BMS इपोक IIN और लॉसिंगी एप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से हटाने का आदेश दिया है। ये कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन ऐप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। मामले की जांच जारी है और सरकार इस पर लगातार नजर बनाए हुए है। विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स में अमेरिका की जेसिका पेगुला और जापान की नाओमी ओसाका राउंड ऑफ 16 में पहुंच गई हैं। राउंड ऑफ 32 के मैच में ओसाका ने डारिया कसात्स्किना को 65 मिनट तक चले मुकाबले में 6-1-6-3 से हराया। वहीं जेसिका पेगुला ने स्पेन की बोजास मानेरो को 6-1-6-3 से मात दी। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashwani, the news read by Tanvi Gupta. The government has reiterated that the Indus Waters Treaty, IWT, remains in abeyance in response to Pakistan's continued sponsorship of cross-border terrorism. Briefing media in New Delhi last evening, spokesperson of the Ministry of External Affairs, Randeep Jaiswal, said, India's position on the Indus Waters Treaty is consistent. He said Pakistan must credibly and irrevocably renounce its support for cross-border terrorism. On Teesta River Comprehensive Management and Restoration Project, Mr. Jaiswal outlined India's approach to development assistance to Bangladesh. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said that India is on track to achieve $1 trillion export targets for the year, with nearly 15% of the annual exports already recorded in the first quarter. Addressing the Board of Trade meeting in New Delhi, Mr. Goyal noted that this will require goods exports to rise from about $440 billion to around $530 billion and services exports to increase from roughly $421 billion to about $470 billion. He further said that it expected that merchandise exports growth will show 15% growth and services exports is about 10 to 11% in the first quarter. Mr. Goyal also highlighted that India had concluded financial year 2025-26 with its highest ever exports of $863 billion, registering growth of 4.6% despite tariff realignments, freight disruption and slowing global demand. He also announced a time-bound 90-day drive under the Districts as Export Hubs initiative, covering 120 priority districts across 27 states and union territories. Prime Minister Narendra Modi will visit Rajasthan and Gujarat today. In Rajasthan, the Prime Minister will inaugurate the terminal building of Jodhpur Airport and launch the modified Budan scheme in Jodhpur. Thereafter, he will travel to Balotra to dedicate, inaugurate and lay the foundation stone for development projects worth approximately 1.6 lakh crore rupees in petrochemicals, urban transport, renewable energy and power transmission. During Gujarat visit today, in a major boost to the India Semiconductor Mission, the Prime Minister will inaugurate the CG Semi Outsourced Semiconductor Assembly and Test Facility.

पुराने गीत सुन रहे हैं गोल्डन एरा की फिल्म संगीत आप मेरे यानी कि पूजा भारती के साथ आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 से आप जुड़े हैं। अभी आपने जिस गीत को सुना फिल्म दास्तान म्यूजिक से सुरैया के स्वर में, गीतों का एक पिटारा, पुराने जमानों के गीतों के एक पिटारा जो कभी भी धूमिल नहीं हो सकता, उन गीतों को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। आइए सुनते हैं उन्हीं में से एक ये गीत।

गीता दत्त के स्वर में आपने फिल्म बाजी से सुना इस गीत को, बहुत ही खूबसूरत सा गीत है और इसे अगर सही से सुना जाए तो इसके बीच के बोल भी बहुत खूबसूरत हैं। फिलहाल अग्नि गाने की ओर चलते हैं।

शमशाद बेगम की स्वर में आपने इस गीत को सुना, फिल्म भाई बहन से। गीतों का सिलसिला जारी है, आप सुन रहे हैं और जुड़े हैं AIR यानी कि आकाशवाणी दिल्ली के AIR लाइव न्यूज 24x7।

0: फोन से।
1: मैं हूं आपके साथ पूजा भारती। श्रोताओं, पुराने गीतों का सफर चल रहा है, यह सुरों का सफरनामा, सुनहरे गीत, गोल्डन एरा के गीत हैं। तो गोल्डन एरा के गीत में अगर हम शमशाद बेगम को सुनते हैं तो फिर हम गीता दत्त को भी सुनते हैं और साथ ही साथ लता मंगेशकर को कैसे भूल सकते हैं। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर के स्वर में ये गीत।

लता मंगेशकर की आवाज में आपने बाबुल फिल्म से ये गीत सुना। गीतों का सिलसिला चला जा रहा है अनवरत लगातार, और गीत जब सुनहरे हो तो उसका आनंद ही कुछ और हो जाता है। जी हाँ, पुराने गीतों के शब्द और उसके जो लिरिक्स हैं और गाने का जो तरीका है और जो धुन है, क्या क्या गिनवाए, सब कुछ अत्यधिक खूबसूरत सुनहरे। शायद यही कारण है वो सुनहरे गीत आज भी हमारे मनों में, हमारे दिलों में यूं ही ताज़ा और सुनहरे हैं।

लता मंगेशकर की आवाज़ में आपने सुना बेकसूर फिल्म से ये गीत। लता मंगेशकर हो या शमशाद बेगम हो या गीता दत्त हो या फिर मुकेश हो या फिर मोहम्मद रफ़ी, उस ज़माने के ये सारे हिट सिंगर हैं जो आज भी हिट हैं हमारे दिलों में। आज भी राज इनका ही चलता है गीतों के मामले में। कितना भी गीत आप क्यों ना सुन लें, लेकिन सुनहरे गीत, पुराने गीत जब तक कानों में नहीं पहुंचते, कान अधूरा सा फील करता है, अधूरा सा महसूस करता है। तो आइए सुनहरे गीतों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं अगला गीत।

अरुण कुमार के स्वर में आपने सुना इस गीत को फिल्म मशाल से। श्रोताओं, अरुण कुमार नाम हमने या आपने कभी ही शायद सुना होगा, लेकिन गीतों को जब उन्होंने गुनगुनाया तो गीत खूबसूरत लगे। तभी तो उसे कहते हैं कि गोल्डन एरा के गीत गाना बहुत कम समय में उसे सीखना या उसके सुर अलापना सबके बस का नहीं है। गीतों के सफर को चलिए जारी रखते हैं और अगला गीत सुनते हैं।

फिल्म दीवाना से मुकेश की आवाज़ में आपने इस गीत को सुना। गीतों का सिलसिला चलिए आगे बढ़ाते हैं। और सुनहरे गीतों में कुछ गायक ऐसे थे जो लगातार छाए थे उस जमाने में, उनमें से सबसे पहला नाम आता है लता मंगेशकर का।

लता मंगेशकर की आवाज़ में आपने फिल्म मल्हार से इस गीत को सुना। सुन रहे हैं आप सुनहरे गीत गोल्डन एरा के फिल्म संगीत कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ पूजा भारती।

फिल्म आवारा से आपने लता मंगेशकर की आवाज में इस गीत को सुना। आ जाओ तड़पते हैं और वाकई में कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जो कला की परख रखते हैं और दूसरे कलाकार को बता देते हैं कि कौन सा गीत कैसे साजेगा, कैसे खूबसूरत बन सकेगा। उन्हीं कलाकारों में से एक लता मंगेशकर और दूसरे मोहम्मद रफ़ी। आइए सुनते हैं इनके स्वर में ये गीत।

लता मंगेशकर और चितालकर और साथियों की आवाज़ में आपने सुना इस गीत को फिल्म अलबेला से। भोली सूरत दिल के खूटे, वक्त के गीत लाजवाब होते थे। हर एक शब्दों के बारे में, हर एक सिचुएशन के बारे में बताया गया पुराने गीतों में, तभी सुनहरे गीत आज भी हम पसंद करते हैं। गीतों का सिलसिला जब चलता है तो उसे रोकना थामना उससे बढ़िया है कि उसे आगे बढ़ाना। जी हाँ, गीतों का सिलसिला कुछ यूं ही लेकर आता है मनों को, आपके दिलों को तरोताज़ा करने। सुनते हैं अगला गीत, सुनहरे गीत।

0: लता मंगेशकर के स्वर में आपने सुना इस गीत को, सदाबहार स्वर, हर एक गीतों में ढलने वाला स्वर, चाहे वो पुराने गीत हो या नए गीत हो, हर गीतों में लता मंगेशकर ने अपना जादू, अपने सुरों का जादू बिखेरा। आइए सुनते हैं गीत सुनारे का अगला गीत।
1: तुम्हारे हाथों में मेहंदी रचेगी, तुम्हारी मुरादें भर आएंगी, तुम्हारे सपने सच्चे हो जाएंगे। उस दिन दीदी,

0: फिल्म आह से आपने सुने इस गीत को लता मंगेशकर की आवाज में। इस फिल्म में म्यूजिक दिया था शंकर जयकिशन ने। धुन से भी समझ में आ जाता है कि किसने धुन दी। जैसे गीतों के हर एक गीत में जब हम म्यूजिक डायरेक्टर की बात करते हैं तो यही कहते हैं कि इस गीत में कुछ आवाज़ अलग सी हटकर है, जो हर एक म्यूजिक डायरेक्टर का काम होता था, अपने गीतों को अपने हिसाब से संवारना। फिलहाल आज का कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। सुनहरे गीत से मुझे पूजा भारती को दीजिए अनुमति। नमस्कार, आप सुन रहे हैं AIR लाइव न्यूज 24x7। 2 बजने को आप सुनिए समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे और संशोधित उड़ान योजना की शुरुआत करेंगे। इसके बाद वे बालोतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री बालोतरा के पचपदरा में देश की पहली हरित क्षेत्र आधारित एकीकृत रिफाइनरी और केमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। लगभग 79,450 करोड़ रुपए की लागत से बनी इस परियोजना को हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और राजस्थान सरकार ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। प्रधानमंत्री जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। उन्होंने कहा कि यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
2: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्यकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे, जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने तेहरान में ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मार्गरेटा ने कहा कि उन्होंने भारत सरकार और भारत के लोगों की ओर से सम्मान व्यक्त किया। उन्होंने हाल के संघर्ष में जान गंवाने वालों के परिवारों के प्रति भी संवेदना व्यक्त की। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा कि पत्रकारिता को सच्चाई, ईमानदारी और सबसे ऊंचे पेशेवर मानकों के प्रति प्रतिबद्ध रहना चाहिए। नई दिल्ली में साप्ताहिक ऑर्गेनाइजर के 80वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्री राधाकृष्णन ने कहा कि लोकतंत्र

तब फलता फूलता है जब प्रेस अपनी विश्वसनीयता बनाए रखते हुए लोगों को जानकारी देता है, सवाल पूछता है और जानकारी पूर्ण सार्वजनिक बहस को बढ़ावा देता है। विधि और न्याय मंत्रालय के विधि मामलों के विभाग और विधायी विभाग द्वारा संयुक्त रूप से आज से राजस्थान के माउंट आबू में सुधार उत्सव और चिंतन शिविर 2026 का आयोजन किया जाएगा। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। सरकार ने बैट बीएमएस इपोक आईआईएन और लॉसिगी एप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से हटाने का आदेश दिया है। ये कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन ऐप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। मामले की जांच जारी है और सरकार इस पर लगातार नजर बनाए हुए है। विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स में अमेरिका की जेसिका पेगुला और जापान की नाओमी ओसाका राउंड ऑफ 16 में पहुंच गई हैं। राउंड ऑफ 32 के मैच में ओसाका ने डारिया कसात्किना को 65 मिनट तक चले मुकाबले में 6-1 6-3 से हराया। वहीं जेसिका पेगुला ने स्पेन की बोजास मानेरो को 6-1 6-3 से मात दी। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत बहार, नॉन स्टॉप फिल्म संगीत पर आधारित ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। 3 बजने को है, अब कुछ ही पलों में हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे और संशोधित उड़ान योजना की शुरुआत करेंगे। इसके बाद वे बालोतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे। वे चूर सादुलपुर और चूर रतनगढ़ रेल लाइन दोहरीकरण परियोजनाओं तथा राष्ट्रीय राजमार्ग 125A के 4 लेन वाले हिस्से को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में चयनित लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री गुजरात के साड़न जाएंगे, जहां वे भारत सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत सीजी सेमी के सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। करीब 7,500 करोड़ रुपए की लागत से बने इस संयंत्र में व्यावसायिक उत्पादन शुरू होगा। ये देश की शुरुआती आधुनिक सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण इकाइयों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
2: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्यकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे, जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
1: प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने तेहरान में ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मार्गरेटा ने कहा कि उन्होंने भारत सरकार और भारत के लोगों की ओर से सम्मान व्यक्त किया। उन्होंने हाल के संघर्ष में जान गंवाने वालों के परिवारों के प्रति भी संवेदना व्यक्त की। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वॉल्कर तुर्क ने सूडान के रणनीतिक शहर अल ओबेद और उसके आसपास संभावित अत्याचारों के खतरे को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद को संबोधित करते हुए उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आगे रक्तपात को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने का आग्रह किया। विधि और न्याय मंत्रालय के विधि मामलों के विभाग और विधायी विभाग द्वारा संयुक्त रूप से आज से राजस्थान के माउंट आबू में सुधार उत्सव और चिंतन शिविर 2026 का आयोजन किया जाएगा। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। सरकार ने बैट BMS इपॉक IIN और लॉसिगी एप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से हटाने का आदेश दिया है। ये कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन ऐप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। मामले की जांच जारी है और सरकार

इस पर लगातार नजर बनाए हुए है। फीफा विश्व कप में अमेरिका के आर्लिंगटन में खेले जा रहे राउंड ऑफ 32 के मैच में मिस्र ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बढ़त बना ली है। मैच के पहले हाफ में मिस्र ऑस्ट्रेलिया से 1-0 से आगे है। इमाम अशुर ने 13वें मिनट में एकमात्र गोल किया। राउंड ऑफ 32 के अन्य मैचों में अर्जेंटीना का मुकाबला मियामी गार्डन्स में काबो वर्डे से होगा, जबकि कोलंबिया आज सुबह कैंसस सिटी स्टेडियम में घाना से भिड़ेगा। स्विट्जरलैंड, स्पेन, पुर्तगाल, बेल्जियम, यूनाइटेड स्टेट्स, इंग्लैंड, मैक्सिको, फ्रांस, नॉर्वे, कनाडा, मोरक्को, ब्राजील और पैराग्वे पहले ही राउंड ऑफ 16 में पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त।

0: आकाशवाणी दिल्ली के AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल पर अभी आप सुन रहे थे गजल और गीत का कार्यक्रम। स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक सुबह के 4 बजने को हैं और ये वक्त है भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम।
1: प्रस्तुत है अर्चना।

आज के इस कार्यक्रम में हम आपको श्री कृष्ण भक्ति रचनाएं सुनवा रहे हैं। पहले प्रस्तुत है त्यागराजा की एक तेलुगु रचना, सुनिए सहगान रूप में।

अब हम आपको श्री स्वाति तिरुनाल की एक भक्ति रचना सुनवा रहे हैं, जिसे स्वर दिया है महाराजापुरम संतानम में।

0: अब आज का अर्चना कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम नाद ब्रह्म, जिसमें आप सुनेंगे उषा विजय कुमार की प्रस्तुति, राग है चारुकेशी।

आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल पर अभी आप सुन रहे थे नाद ब्रह्म का कार्यक्रम। इसके अंतर्गत अभी आपने उषा विजय कुमार द्वारा घोटू वाद्यम पर बजाया राग चारू केशी सुना।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 13वीं तिथि, तदनुसार 4 जुलाई 2026। सुबह के 4:53 और 41 सेकंड हुए हैं। अब हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, आइए आपको आगे प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। पांच बजकर 10 मिनट पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आओ योग करें। इसके अंतर्गत आज आप जानेंगे बद्ध पद्मनासन के बारे में। 5:20 का वक्त होगा देशभक्ति गीत का। पांच बजकर 30 मिनट पर आप हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत पर आधारित कार्यक्रम स्वर रंजनी का आनंद लेंगे, जिसमें आज के कलाकार हैं राधिका मोहन मोइत्रा, जो सरोद पर हमीरी बिलावल राग बजाएंगे। सुबह 6 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जबकि अंग्रेजी में समाचार का समय होगा 6:05। 6:10 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम वंदना।

0: 6:40 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम चिंतन, जबकि 6:45 का वक्त होगा कार्यक्रम रामचरित मानस का। 6:55 पर संस्कृत में समाचार प्रसारित किए जाएंगे, जबकि 7 बजे आप सुन सकते हैं हिंदी में समाचार, और 7:05 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार। अब सुबह के 5 बजने को हैं, आइए सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत।

0: Nice. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री जोधपुर में उन्नत उड़ान योजना का भी शुभारंभ करेंगे। इसके बाद श्री मोदी बालोतरा जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में भर्ती किए गए लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम गुजरात के रवाना होंगे, जहां वे सानंद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
1: Prime Minister will also be visiting.
2: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्याकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे, जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
0: प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड में होंगे। विधि और न्याय मंत्रालय के विधि मामलों के विभाग और विधायी विभाग द्वारा संयुक्त रूप से आज से राजस्थान के माउंट आबू में सुधार उत्सव और चिंतन शिविर 2026 का आयोजन किया जाएगा। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब तक 1,02,000 से ज्यादा गणना प्रपत्र डिजिटाइज किए जा चुके हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के अनुसार दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत लगभग 33,14,000 फॉर्म बांटे गए हैं। दिल्ली में घर घर जाकर मतदाता सूची के लिए गणना प्रपत्र बांटने का काम अभी चल रहा है। इस प्रक्रिया के तहत 13,000 से ज्यादा बूथ स्तरीय अधिकारी इस महीने की 29 तारीख तक घर घर जाएंगे और मौजूदा मतदाताओं का सत्यापन और अपडेट करने के लिए पहले से छपे हुए गणना प्रपत्र की 2 प्रतियां देंगे। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर के बीच दर्ज की जा सकती हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को जारी की जाएगी। मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भी भर सकते हैं। सरकार ने बैट बीएमएस ईपोक आईआईएन और लॉसिगी एप्स को गूगल प्ले स्टोर और गूगल ऐप स्टोर से हटाने का आदेश दिया है। ये कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इस ऐप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। मामले की जांच जारी है और सरकार इस पर लगातार नजर बनाए हुए है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने एमएसटीसी अनलिमिटेड के माध्यम से हॉकर 800A विमान की नीलामी की है। विमान को 3 करोड़ रुपए में नीलाम किया गया है। निदेशालय ने एक बयान में बताया कि इस विमान को पिछले वर्ष 7 मार्च को तलाशी अभियान में जब्त किया गया था। ईडी की हैदराबाद क्षेत्रीय इकाई ने अमरदीप कुमार, कैपिटल प्रोटेक्शन फोर्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम मामले में राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से विमान को जब्त किया था। जांच में 792 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की सूचना मिली है। नीलामी से प्राप्त होने वाली राशि का इस्तेमाल वास्तविक निवेशकों को मुआवजा देने के लिए किया जाएगा। मामले की जांच जारी है। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने तेहरान में ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्ला सैयद अली खामनेई के अंतिम संस्कार समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मार्गरेटा ने कहा कि उन्होंने भारत सरकार और भारत के लोगों की ओर से सम्मान व्यक्त किया। मौसम विभाग ने आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना, विदर्भ में तेज बारिश हो सकती है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के गांगे क्षेत्र, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मराठवाड़ा, पश्चिमी राजस्थान और दक्षिण भारत के विभिन्न हिस्सों में भी आज तेज बारिश का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Harpreet.

अनि दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक वक्त हो चला है 5:10 और 18 सेकेंड। श्रोताओं, यह वक्त है हमारे कार्यक्रम आओ योग करे का। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप जानेंगे बद्ध पद्मनासन के बारे में।

योग सिर्फ एक शारीरिक अभ्यास नहीं है, यह गुणतापूर्ण भावनात्मक एकीकरण एवं आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग है, जिससे हमें सभी कल्पनाओं से परे स्थित आयाम की एक झलक मिलती है। योग एक पूर्ण विज्ञान है। यह शरीर, मन, आत्मा और ब्रह्मांड को एकजुट करता है। यह व्यक्ति को शांति और आनंद प्रदान करता है। व्यक्ति के व्यवहार, विचारों और रवैये में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन लाता है। योग के दैनिक अभ्यास से हमारी अंतः शांति, संवेदनशीलता, अंतर्ज्ञान और जागरूकता बढ़ती है। योगासन करते समय कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। योगासन खुले एवं ताजा हवा में करना सबसे अच्छा माना गया है। फिर भी अगर ऐसा करना संभव ना हो तो किसी भी खाली जगह पर आसन किया जा सकता है। योग सीधे जमीन या फर्श पर बैठकर न करें। इसके लिए दरी या कालीन जमीन पर बिछाकर योगासन करें। किसी भी योगासन को झटके से न करें। योग उतना ही करें जितना आप आसानी से कर पाए। योगासन करने के तुरंत बाद स्नान ना करें, क्योंकि व्यायाम करने के बाद शरीर गर्म हो जाता है, और अगर आप गर्म शरीर में ही स्नान करेंगे तो सर्दी, जुकाम, बदन दर्द जैसी तकलीफ हो सकती है। इसलिए योग करने के एक घंटे बाद ही स्नान करना चाहिए। योग का महत्व योगाचार्य महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में सूत्रों के रूप में प्रस्तुत किया है। आज वही योग दुनिया भर में प्रसिद्धि पा रहा है। योग का अर्थ है जोड़ना, जीवात्मा का परमात्मा से पूरी तरह से एक हो जाना ही योग है। योगाचार्य महर्षि पतंजलि के अनुसार अपने चित्त को एक ही जगह स्थापित करना योग है। आज के कार्यक्रम में बद्ध पद्मासन। बद्ध पद्मासन को अंग्रेजी भाषा में लॉक्ड लोटस पोज या फिर क्लोज्ड लोटस पोज भी कहा जाता है। बद्ध पद्मासन दो शब्दों से मिलकर बना है, बद्ध और पद्म, जिसमें बद्ध का अर्थ होता है बांधा हुआ और पद्म का अर्थ होता है कमल का फूल। इस आसन को करने का तरीका मेरे साथ कीजिए। सबसे पहले दंडासन में बैठ जाएं। हल्का सा हाथों से जमीन को दबाते हुए और सांस अंदर लेते हुए रीढ़ की हड्डी को सीधा करें। श्वास अंदर लें और अपनी दाईं टांग को उठाकर दाएं पैर को बाईं जांग पर ले आएं और फिर दूसरे पैर के साथ भी ऐसा ही करें। अब आप पद्मासन में हैं। इस मुद्रा में आपके दाएं कूल्हे और घुटने पर खिंचाव आएगा। अब अपना बायां हाथ पीठ के पीछे